0: ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप मिल जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या
1: मेरी

का तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे, दिल वाला ना दिल है कोई सब तो मानोगे, हो क्या तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे।

सुनते कल भी सामना कर तो जानोगे, दिल वाला ना दिल है कोई तब तो मानोगे, होगा तुमसे कल भी सामना कर तो जानोगे, दिल वाला ना

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी हां, हमारे पास बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन सेल्फ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात की तो सामने आई बात कि हमारी अपनी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है। हमें अपनी जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। और उसमें एक बात जो सामने आई थी वो कि जो कुछ भी फीलिंग या थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, ना कोई और मेरे अंदर आके क्रिएट कर सकता है, ना मुझे वो फील करवा सकता है। तो जहां मैं दुख के बारे में अगर सोचती हूं कि जितनी भी परेशानी मेरी जिंदगी में आ रही है वो भी मैंने क्रिएट की है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि जहां पर भी खुशी की बात है, जहां पर भी प्यार की बात है, वो भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है। सो अगेन यू नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक एम्पावरिंग फैक्टर आ जाता है कि मैं खुद क्रिएट कर सकती हूं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मुझे, कैसे मैं हो सकती हूं अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, अभी तक सारी जिम्मेवारियां उठा रही थी, अब मतलब एक और जिम्मेवारी उठा रही थी वो ये कि मुझे मेरी जिम्मेवारी भी उठानी है। नहीं तो अभी तक तो मैं सोच रही थी कि चलो मेरी माँ उठाएगी, मेरे बच्चे उठाएंगे, मेरे हस्बैंड उठाएंगे, कोई ना कोई तो होगा। या फिर अल्टीमेटली
2: जो वो जिम्मेवारियां जो आप बोल रहे हो, दोज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक वी से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कोई और उठाएगा, वो फिर हम आउटर ही बात कर रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बीइंग, जो मैं हूं, जो कुछ मेरा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जैसे हम कहेंगे एक बच्चा है, आपने कहा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स उठाएंगे, दैट इज बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का भोजन, बच्चे का रहना, तो आउटर, तो उसका जो कुछ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और उठा सकता है।
1: पत्नी तो कितनी बार कहती है कि मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, स्पेशली वी ऑलवेज से दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रीफ,
2: यस, फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स। तो इसलिए हमने देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल माई थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। तो जब भी हम रिएक्ट करें हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा।

0: So I'm saying you are responsible for what. Let's say mujhe bahut garmi lag rahi hai, ye mausam aisa kyun hai? Mausam responsible hai meri takleef ke liye. Mausam jaisa hai waisa hai, meri takleef ka zimmedar main hu aur main jitna easily chahu usko main halka kar sakta hu. So jab bhi react kare turant stop kare, apna wo 1 minute break wahi par le le aur apne aap ko yaad dilaye ki ye jo maine response abhi abhi create kiya, I am responsible. So let me be careful with what I am choosing as my response. Ab dusri cheez hame ye yaad rakhna padega ki even wo jo beliefs, wo jo perceptions jo mere andar pehle se hi deep rooted hain, uske liye bhi main hi responsible hu. Kyunki which means that I cannot even blame the past.
1: Ye subconscious. Oh ho, aajkal to itna zyada baar baat hi karte hai ki how I, my subconscious reacts. Main uske liye responsible nahi ho sakta, mujhe pata hi nahi chalta how I react.
0: Yes, kyunki hamara jo action aur reaction hai wo bahut zyada us par based hota hai ki jo maine pehle apne andar bhara hua hai, kal ki information jo bhari hai, 10 saal pehle jo hua tha, बचपन में जो हुआ था. हमारी आज जो पर्सनालिटी है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ जो यू नो इन माय चाइल्डहुड क्या मेरे अंदर फीड हुआ, कौन से मेरे बिलीव्स मेरे परसेप्शंस बचपन से जो बने हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर आज मेरी पर्सनालिटी पर वर्क करते हैं. तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं. यू नो फॉर एग्जाम्पल आपका चाइल्डहुड किस वातावरण में था, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रिंग अप किया, तो वो सब चीजें आपके बिलीव्स और परसेप्शंस को बनाता है. लेकिन इसका मतलब भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं और कुछ नहीं तो अपने ही पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं. लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि टू बी अवेयर कि ये सारी चीजें मेरे अंदर पास्ट में अक्यूमुलेट हुई हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है. वो जो आपने कहा ना सबकॉन्शियस, मतलब जो अनकॉन्शियस लेवल पर भरा हुआ है उसको मुझे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिलीफ है, और फिर उसको चैलेंज करके उसको चेंज भी करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अगर मेरी जो आज व्यवहार है इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो भी तो बाय ब्लेमिंग द पास्ट देन आई एम कंटिन्यूइंग टू लिव इन द पेन. कि आज मैं दर्द में इसलिए जी रही हूं क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ. आई मेट अ लेडी हु वॉज physically abused in her childhood and lagbhag I think 25 ya 30 saal usne wo baat ko pakad kar rakha hua tha, and whatever she is today she feels it's because of her past. And wo kahin na kahin usme se nikalne ka to prayas hi nahi kiya kyunki socha ki isme meri to koi galti hi nahi hai. To jo bitterness hai andar, jo dard hai, har ek ko kis par blame kar diya कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ. तो मेरे अंदर ये बिटरनेस है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं, रिश्ते जो है ये अच्छे नहीं. सो नाउ माय प्रेजेंट एंड माय फ्यूचर वो भी तो दर्द में ही चल रहा है. लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसने मेरा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नाउ टू चेंज. एंड रियली वाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली, बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को देखकर, और जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा जो दर्द है वो मैं क्रिएट करता हूँ, नो वन एल्स कैन हर्ट मी, शी जस्ट लेट इट गो लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट. एंड आफ्टर द प्रोग्राम शी गॉट अप एंड शी सेड आफ्टर 25 years टुडे आई एम फ्री. अब जो वो पास्ट में इंसिडेंट हुआ था वो तो 25 साल पहले की बात है, लेकिन आज एक मिनट में आपने अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दिया जब आपने रियलाइज किया कि ये क्रिएट कौन कर रहा है.
1: मैंने किया क्रिएट. लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं ऐसा सचिवानी, अगर ये इतना आसान है तो हम उसको पकड़े, और हम में से हर कोई पकड़े रहता है पास्ट का नहीं तो आने वाले का डर, या पास्ट का कोई ना कोई चीज को, और अगर हम टटोले तो हमने अभी भी पकड़ी हुई होंगे वो. हम क्यों नहीं छोड़ते,
0: कहीं ना कहीं हमें ये भी तो नहीं पता कि हमने पकड़ा हुआ है. हमने सोच रहे हैं कि ये जो मैं दर्द, दैट इज वाई हम वो बात, मतलब भले वो बहुत रेपिटेटिव हो रही है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड फीलिंग, ये आप दिन में जितनी बार भी अपने आप को बोलोगे वो कम है. क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी हम रिएक्ट करते हैं. तो अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है लेकिन आज जो मैं दर्द क्रिएट कर रही हूं वो तो फिर भी मेरी क्रिएशन है. अभी क्या हो रहा है जो आपने कहा हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं नहीं क्रिएट कर रही. आपने किया ही ऐसा
1: कि मेरे को दर्द हो ही रहा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती.

0: is that it has to hit कि ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है. मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ लेट गो.
1: और मैं क्रिएट कैसे कर रही हूँ, उस थॉट को बार बार याद करके, उस इंसिडेंस को याद करके.
0: एब्सोल्युटली.
1: एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, अगर हम देखें अपने साथ, तो बार बार बार बार उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, फिर वो सब कुछ जो हुआ उस टाइम पे वो सब,
0: तो हम बार बार उस दर्द से गुजरते हैं एंड कहीं ना कहीं फिर हमारे वो यू नो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो दर्द का पैटर्न, और वो एक होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे लाइन आपने बनाई, फिर उसके ऊपर बनाते गए बनाते गए बनाते गए, तो फिर वो कितना डीप हो जाता है वो, तो फिर वो लगता है कि अब ये हील नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसी थॉट को फिर क्रिएट किया, फिर क्रिएट किया, फिर क्रिएट किया. अब वो जो एक मिनट हमें स्टॉप करके पॉजिटिव करना है, तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, और उसको तो आप कितनी बार भी क्रिएट करते रहो, इट इज हेल्दी फॉर यू. लेकिन वो बार बार पास्ट का इंसिडेंट जो हम पकड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को भी कि नहीं मेरा बचपन ही ऐसा था, या मुझे तो कई बार कहते हैं मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है ना. See, so whatever I am today, it is because मुझे बचपन में यही सिखाया गया है. Self responsibility, कि जो भी वो beliefs हैं जो बचपन से बने हैं, आज उनको check करें. अगर उनमें से कोई ऐसा belief है जो दर्द के लिए जिम्मेवार है, stop, check, change. Even as simple as tension तो normal ही है ना. Now we have understood कि वो normal नहीं है. भले मुझे बचपन से सिखाया गया था कि exam से पहले tension तो होती ही है, result से पहले, तो ये मैंने सोचा normal है, normal है, normal है, but actually no.
1: लेकिन self-responsibility things which people say that no pain no gain.
0: Yeah, many people say this, no pain no gain, because they feel कि जब तक वो दर्द का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनको खुशी का महत्व नहीं पता चलेगा. But it's a choice. I always ask those people कि क्या आपको स्वास्थ्य का महत्व तब पता चलता है जब आप बीमार पड़ते हैं. So do you want to say कि मैं हेल्दी भी रहूं लेकिन मैं बीमार भी पड़ती रहूं बीच बीच में, तभी मुझे पता चले. डज एनीबडी एवर से दैट? तो फिर तो आप अपने शरीर का मत ध्यान रखो उतना, ताकि बीच बीच में बीमार पड़ते रहो. डू यू एवर वर्क इन लाइफ विद दिस फोकस कि नहीं कभी कभी तो बीमार पड़ना चाहिए? हु एवर वर्क्स लाइक दैट, वी ऑलवेज से कि नहीं हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. तो अगर शरीर हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, ये भी तो हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. हाउ कैन वी से जब तक दर्द नहीं होगा
1: पता ही चलेगा. अच्छा, अनदर थिंग विच सम पीपल से, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द में रहना अच्छा लगता है, बट आई डोंट माइंड पेन.
0: या दैट्स बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे टू कम आउट ऑफ इट. से वही बात होती है ना, जब कोई चीज से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप को उसी के अंदर फिट कर लिया है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, और उस दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. एंड इट्स नॉट सम, आई थिंक लॉट ऑफ अस, हम में से मेजोरिटी ने दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है. और कहीं ना कहीं आई फील विद अ प्रोग्राम लाइक दिस, दिस कम्स एंड हिट्स कि रियली इज देयर अ वे कि हम दर्द से भी बाहर निकल सकते. हमने तो सोचा था ये बीमारी हमारे साथ एंड तक चलने वाली है, यू नो, हमने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया था. अब क्या होता है, जैसे हम ऐसे कोई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओ यस, बट देन द अदर थिंग दैट हिट्स इज कि वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा.
1: वो चेंज मुझे होना पड़ेगा. आई मेट समबडी एंड शी सेड मुझे पता है मैं बहुत दर्द में हूं, लेकिन मैं इस थॉट को भेज जान नहीं दे सकती. तो what we can do is maybe create a positive thought.
0: That's all that we have to do.
1: Let that thought also stay. जो thought आपके पास है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है उसको भी रहने दें, लेकिन एक हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें.
0: इसलिए नेगेटिव को खत्म नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, आप पॉजिटिव क्रिएट करो. इट्स लाइक यू नो, वो कहते हैं कि एक बर्तन गंदे पानी से भरा हुआ है, आप उस बर्तन को खाली नहीं कर पा रहे, आप ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, फाइनली
1: गंदा
0: निकल जाएगा. सो यस, वी और परमात्मा आकर यही तो करते हैं. परमात्मा शिव बाबा ज्ञान की बूंद बूंद बूंद डालते जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो जाता है. अगर हम पहले वेट करें कि बुद्धि से सारे जो वाइसेस हैं, सारी जो नेगेटिविटी है वो पहले खाली हो और फिर ज्ञान उसके अंदर भरे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ज्ञान जितना भरता जाता उतना ये जो नकारात्मक और व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप खाली होते जाते. तो जैसे वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, वी कैन नॉट ब्लेम पास्ट आल्सो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है. और तीसरा जो आपने पहले ही कहा कि नो पर्सन

0: event or situation is responsible for my happiness. अपनी खुशी की जिम्मेवारी, नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा बनी हुई है जिस ये होगा तो मैं खुश रहूंगा. इवन इन यू नो व्हेन पीपल सी देयर पर्पस ऑफ लाइफ तो वो कहेंगे मुझे ये गोल अचीव करना है, ये मेरा एम्बिशन है, मुझे ये बनना है, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा. व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप इतना टाइम दर्द में रहेंगे और फिर एक साल के बाद या पांच साल के बाद जब आप उस एम्बिशन को अचीव कर लेंगे तब आप खुश होंगे. इट विल नॉट बी पॉसिबल अगर आपने पूरा प्रोसेस ही दर्द में बिताया एंड फिर आप खुश होंगे. सो परमात्मा कहते हैं खुश होंगे नहीं, खुश रहकर आप उस गोल को अचीव करेंगे. दर्द में जाके सीढ़ी नहीं चढ़नी है, सीढ़ी के एंड पर पहुंच तो जाएंगे आप अपने लैडर में जो आपने अपने लिए सेट किया, लेकिन इमेजिन अगर आपको एक एक स्टेप दर्द में चढ़ना पड़े तो हाउ विल बी द क्लाइंब.
1: ओहो, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट. इन फैक्ट जस्ट वन चेंज ऑफ थॉट, एक परसेप्शन ही तो चेंज करना है.
0: That I have to be happy and do this. अब अगर ये जो हमारा ladder है of goals and ambitions, अगर हम एक एक step दर्द में चढ़े तो शायद जब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे how will the feeling be?
1: We'll be too tired to enjoy that.
0: So we will not really enjoy. और फिर वहां पहुंचने के बाद तब तक हम अपना next goal set कर देंगे और फिर दर्द में चलेंगे. और इसीलिए हमने इस सीरीज की, इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज द जर्नी. तो खुशी को व्यक्तियों पर भी नहीं डिपेंडेंट करना है, इवेंट्स पर, सिचुएशंस पर. हम लोग आज अगर सारा दिन में चेक करें ना, हमने बहुत चीजों पर डिपेंड किया हुआ है. मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो खुशी होगी, प्रमोशन होगा तो खुशी होगी, या छोटी इवन छोटी छोटी बात. अगर बहन ने सारा दिन में खाना बनाया, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, रात को मेरे हस्बैंड आएंगे वो आकर अप्रिशिएट करेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो द होल डे व्हाइल कुकिंग द फूड शी क्रिएट्स दैट सीन, यू नो दैट माय हस्बैंड विल कम इन द नाइट, ही विल अप्रिशिएट द फूड एंड शी इज वेटिंग कि जब ये सीन होगा शी विल बी वेरी हैप्पी. अब वो आए, वो अपने किसी मूड में है या अपनी किसी टेंशन में है, चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, खुशी कहां गई?
1: और वो वेट ही चलती रहेगी फिर.
0: और अब वो दर्द हो गया. तो आपने सारा कुछ तो किया.
1: सबसे बड़ी बात है आप उनको ये तो कह नहीं पाते कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि खुद को ही नहीं पता चली है बात.
0: और वो भी कह देते हैं हम तो कई बार, आपने बोला भी नहीं, मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की, आपने ये भी नहीं बोला कि खाना अच्छा है. तो आप देखो मेरी खुशी कितनी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है कि जब तक आप नहीं ये बोलोगे कि ये खाना अच्छा बना, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन जब तक चार लोगों ने ये नहीं बोला कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तब तक वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा. सो आई कीप वेटिंग कि कौन अप्रिशिएट करेगा. कितने डिपेंडेंट. और फिर अगर चार लोगों ने बोल दिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी एक ने बोल दिया
1: कि नहीं सर खराब है, ओफो,
0: यस, हाउ मच माई स्टेट ऑफ माइंड इज एवरी टाइम डिपेंडेंट.
1: और कितनी क्षण भंगुर है, मतलब कितनी देर के लिए है. इट्स जस्ट देयर एंड देन गॉन, टच एंड गो.
0: सो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन डिपेंडेंसी, कि हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट है. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये कि जैसे हमारी मन की स्थिति का कोई भी जिम्मेवार नहीं है, औरों की मन की स्थिति के हम जिम्मेवार नहीं है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट.
1: एंड वी गेट इनटू सो मच ऑफ गिल्ट,
0: यस,
1: कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, कि मैं ये कर देता हूँ या मैं कुछ ऐसे भी. यस, सो मेनी टाइम्स इवन चिल्ड्रन, कितनी बार देखा गया है ग्रोन अप चिल्ड्रन सिर्फ ये कि मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे एक्ट करूँ, वो एक्ट करते हैं. स्पेशली लड़के और मदर के जो रिलेशनशिप में देखा है, मतलब जो कितनी बार की उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने हमारे इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, तो मैं उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ये.
0: सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि अगर कोई हमारे सामने दर्द में है, परिवार का, फैमिली, कोई मेंबर या ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो यू नो इमोशनल ब्लैकमेल जो वर्ड हम यूज करते हैं, कि वो अपने इमोशंस के साथ हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं. आपकी वजह से मैं ये दर्द में हूं, आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है. और जब मुझे कोई बार बार ये कहता है कि आपकी वजह से मैं दर्द में हूं, आपकी वजह से मैं दर्द में हूं, मैं दर्द में चले जाती हूं.
1: अरे मैं सोचने लग जाती हूं, मैं मान लेती हूं, इवन इफ आई नो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि शायद आई एम रिस्पॉन्सिबल.
0: सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन एल्स इज पेन और फॉर एनी वन एल्स इज हैप्पीनेस.

0: किया, वो तो किया, लेकिन उनका दर्द किसने क्रिएट किया? वो उन्होंने किया. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. इससे हमारी जो कहे ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत हल्की हो जाती है. दिस डज नॉट मीन कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं. अगेन देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन. लेकिन हम दर्द में ना चले जाएं ये सोचकर कि औरों का दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम दर्द में चले गए ये सोचकर फिर हम उनको क्या ट्रांसमिट करेंगे.
1: जहां हम खुद दर्द में चले जाते हैं और वो दर्द में है तो हम उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते बिल्कुल.
0: एब्सोल्युटली.
1: क्योंकि हम तो गिल्ट में चले गए.
0: तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के लिए नहीं है. अब आप देखो वी एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड सारा दिन. हमें लगता है हम अपनी मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन औरों की मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल.
1: मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसको खुशी दी, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ.
0: तो द होल फ्लो ऑफ एनर्जी गोज द अदर वे अराउंड. हम समझते मेरे मन की स्थिति के जिम्मेवार और लोग हैं और औरों की मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं हूं. वेयर एज द इक्वेशन इज टोटली द अदर वे अराउंड. अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं. आई हैव टू रिमेम्बर दैट एंड आई हैव टू रिमेम्बर कि औरों की मन की स्थिति के जिम्मेवार वो है. तो अगर वो किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी देयर जर्नी. मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूं उनके लिए, दैट इज ओके. बट फाइनली मैं किसी को दर्द से मुक्त नहीं कर सकती. दे विल हैव टू डू दैट. फॉरगेट एनीवन एल्स. आई माय पर्सनल एक्सपीरियंस वुड से कि इवन गॉड कैन नॉट फ्री मी फ्रॉम माय पेन. जस्ट बाय मैजिक आई कैन यूज हिज पावर, यूज हिज नॉलेज टू फ्री माय सेल्फ फ्रॉम माय पेन. बट इफ ही वांट्स कि ही शुड फ्री मी फ्रॉम माय पेन, नो ही कांट. नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी.
1: ओ, अगर मैं पकड़ के बैठी हुई होंगी उस थॉट को, सिस्टर शिवानी, अगर मैंने छोड़ना ही नहीं है उस पूरे थॉट प्रोसेस को, तो कोई सचमुच में भगवान भी आके नहीं कर सकता.
0: एग्जैक्टली. तभी कहा जाता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता इसमें. तो और मनुष्य आत्मा क्या करेगी? भगवान भी ना हमें दर्द से मुक्त कर सकता है और ना परमात्मा हमें खुशी दे सकता है. परमात्मा हमें शक्ति दे सकता है उसको जेनरेट करने की. परमात्मा हमें नॉलेज दे सकता है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, लेकिन परमात्मा ऐसे ही दे दे, इट डजंट हैपन. व्हाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, नॉट गॉड एंड नॉट एनी अदर ह्यूमन बींग. जिस दिन ये लाइन पूरी यहां पर अच्छी तरह से फिट हो जाए, द वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग चेंजेस. एब्सोल्युटली. एंड फिर सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाता है.
1: अच्छा, लेकिन अगर हम सिचुएशन देते हैं, अगर हम देखें कि हमें खुशी जो हमारा क्रिएट, मैंने ही क्रिएट किया, अगर अब मैं देखती हूं तो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे खुशी दी या मुझे दुख देना शुरू हुआ, मेरा ये मन करता है कि सिचुएशन बदल जाए तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी. तो यहां मैं परमात्मा से ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि वो सिचुएशन बदल देगा.
0: परमात्मा से भी जो मदद लेनी है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं लेनी.
1: तो यही करते हैं.
0: तो सारा दिन भगवान के आगे अर्जी कौन सी डालते हैं? यही तो करते हैं. मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये, उनको ठीक कर दो, ये भी अर्जी डालते हैं. मुझे शक्ति लेनी है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो परमात्मा की मदद हमेशा साथ में है. सिर्फ अर्जी डालेंगे कि सिचुएशन चेंज कर दो, इट विल नॉट हैपन.
1: और इनफैक्ट मैं तो ये कभी समझ ही नहीं पाती थी कि अपनी मदद कैसे करनी है. मदद तो हमेशा दूसरों की करनी होती है. तो ये यू नो दिस इज लाइक आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे कि अपनी मदद मैं कैसे करूं, मतलब अपनी मदद क्या करनी है. मदद तो हमेशा दूसरे के लिए करनी होती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, जिसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहली मदद तो अपनी करनी है.
0: अपनी ही, हर एक अपनी ही कर सकता है. क्यों आप कह रहे हैं कि दूसरों की करनी है? क्योंकि हमने सोचा कि हम दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. यू नो इवन सिंपल लाइक सपोज मैं किसी बात से हर्ट हूं तो मैं जाकर दो चार लोगों से बात करती हूँ. आपको पता है मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, एंड आई फील के वो जो मेरे से फॉर अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी. लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया, उन्होंने जो शेयर करना है वो किया. अब मैंने क्या किया? इफ आई हैव द पावर आई टेक दैट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड देन आई वर्क विद इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल इवन दिस प्रोग्राम या परमात्मा का हर एक महावाक्य जो हम इस पर शेयर कर रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं ना, लाखों की संख्या में सारे विश्व में आत्माएं इस ज्ञान को सुन

0: है, लेकिन हरेक के ऊपर मैजिक तो नहीं हो रहा ना कोई कि सुनने से ही वो काम हो जाएगा. अब हरेक उसको लेकर अपने साथ क्या करता है, क्रिएट तो उसी को करना है. तो ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं कि मुझे राय दो कि हाउ टू आई कम आउट ऑफ दिस, वो सिर्फ राय दे सकते हैं, बाकी काम वो तो मुझे करना होगा. हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि दे विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. नाउ नो वन कैन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. दे कैन से वट दे वॉन्ट, दे कैन शेयर वट दे वॉन्ट, दे कैन ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, बट फाइनली आई विल हैव टू कम आउट ऑफ माई पेन. तो अनलेस आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माई पेन, द होल वर्ल्ड पुट टूगेदर कैन नॉट डू एनीथिंग. ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और ये काम बहुत ईजी हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा आई एम द क्रिएटर. आई एम द क्रिएटर, सो आई एम द डिस्ट्रॉयर. ये दर्द मैंने क्रिएट किया था, तो इसको खत्म भी
1: मैं मुझे मेरे अपने ही हाथ में है. तो आप में से जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, कई बरसों से, कई सालों से, या कुछ टाइम से, अभी वक्त है कि आप अपने आप से कहें कि मैंने क्रिएट किया है तो मैं खत्म भी कर सकता हूं. और आज ही प्रयास करें कि हम उसे खत्म कर देंगे. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. जो आज हमने बात की है, जिस तरह से बातें क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी अपनी है. कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस जिम्मेवारी को उठाना है, मदद जो लेनी है मुझे वो अपनी लेनी है. और जो बहुत आपने आज जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है हमारे सभी दर्शकों के साथ, कि दूसरे के दर्द के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मुझे जिम्मेवारी अपने दर्द की उठानी है या अपनी खुशी की उठानी है. इसीलिए दूसरे की को ना मैं खुशी दे सकता हूं ना मैं उसको दर्द दे सकता हूं, उसका दर्द भी अपना क्रिएट किया हुआ है. तब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत अपने होते हैं. तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: आप सबसे भी बार बार हम यही आग्रह करते हैं, ये प्रोग्राम आपका अपना है. जहां कोई ऐसी बात लगती है कि जो नहीं समझ में आ रही, लगता है कि ये कैसे संभव हो सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं बात तो अच्छी है, सही बात है, पर मैं इसको लागू कैसे करूंगा, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप ही का जो रिस्पॉन्स आता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जरूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपको कहां लगता है कि बात समझ में नहीं आई है, या प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूं, जैसे हम कोशिश करेंगे जहां जहां रुकते जाएंगे वहां हम उसको आगे लेते जाएंगे. बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप अपना फीडबैक भेजें. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999334666 0987366555 0999974555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमार, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और सेल्फ मैनेजमेंट की पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि मैं स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूं, जिम्मेवार हो जाता हूं. ये जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं, बिल्कुल आप उठाएंगे तभी वो परिवर्तन संभव हो पाएगा. आज आपसे हम विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आनंदी रहा
1: आणि आनंद घ्या।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो, एंड असर्टिव जब हम होते हैं हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांट।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये आते हैं तो कौन क्रिएट कर रहा है। बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो सिचुएशन है जो हम याद करते हैं या हमारे सामने आ रही है और फिर हम उन थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्रिएटर हूं तो मैं चेंज भी तो कर सकता हूं, कैसे करना है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। हम डॉक्टर पटेल, इट्स क्वाइट यू नो लाइक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं। और एक और बात जो हम पिछली कड़ी में अगर जाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने आई थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं मेरी जिंदगी में, वो रिजॉल्व कोई व्यक्ति है या नहीं, वो सिचुएशन दोबारा होती है या नहीं, मैं कर सकता हूं। इट्स अ बिग एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी सजग होनी शुरू हुई अपने शरीर के बारे में भी, बॉडी के बारे में भी और थॉट्स के बारे में। आगे क्या करें?
1: मूल बात तो ये समझने की है कि थॉट्स का महत्व क्या है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि विचारों पर विचार किया है ना, थॉट्स ऑन थॉट्स। हम सब ये तो जानते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं, परंतु आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भी विचार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि विचारों में भी जीवन है, नो थॉट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ। तो इसलिए उसको कोई ऑर्डिनरी चीज हम न समझे।
0: थॉट्स हैव अ लाइफ,
1: लाइफ आई फील,
0: एनर्जी,
1: आत्मा से निकले विचार। तो सोल इज एनर्जी, तो उसकी थोड़ी तो एनर्जी उसमें भी होगी। नहीं, एक सचमुच एक सटल एनर्जी है थॉट्स भी, और वो थॉट्स जैसे है वैसे ही वातावरण भी बनता है, और थॉट्स उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे हैं, उसी प्रकार के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और फिर उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। जो आप बार बार सोचते हो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हो।
0: तो मतलब हम बार बार कई बार डर रहे होते हैं तो वो हो भी सकता है।
1: बिल्कुल हो सकता है ना,
0: क्योंकि हम बार बार अगर आप थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें डर है, फियर है, तो वो हम संभव भी करते हैं।
1: हाँ, वो सचमुच होता है। आज व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है और वैसे बीमार होता है। ये भी माना गया है कि आज लोग एक्सीडेंट्स के बारे में जो बार बार सोचते हैं वो सचमुच एक्सीडेंट से मीट करते हैं। उसी प्रकार का, क्योंकि थॉट्स आर रियल, वो वातावरण में उस चीज को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि थॉट्स हैव अ मैग्नेटिक पावर, जैसे मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे थॉट्स है वो परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है,
0: तो पाता पलट दिया। आपने तो हमारे ऊपर डाल दिया सारा कुछ।
1: सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बहुत ही जरूरी चीज है कि जो भी आपको फीलिंग्स होती है, अच्छी या बुरी, आप दुख की फीलिंग करते या सुख की फीलिंग करते, उसका फाउंडेशन आपके थॉट है। कई लोग कहते ऐसे मैं गुस्से में आ गया, ऐसे मैं डिप्रेस्ड हो गया। एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो थॉट था,
0: पर अब सब पता नहीं चलता। अगर आप मतलब बार बार हमने इस बारे में बात की है कि आप थॉट्स को देखो, थॉट्स के प्रति सजग रहो। अब जैसे अभी मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मैं सजग हो जाऊंगी कि ठीक है मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठी हूँ, इसके बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो फीलिंग आई, वो जो बिल्कुल ठीक है कि जैसे डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से हार्ट सिंक करने लगता है, दुख आ जाता है या गुस्सा चढ़ना शुरू होता है, उस वक्त ये तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था कि गुस्सा आया। गुस्सा होने के बाद हमें वो थॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि गुस्सा आया है, अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और चढ़ता जा रहा है या कम होगा, वो मेरे थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है।
1: लेकिन कम से कम ये भी कि जो आपका हार्ट जैसे सिंक होने की आपने बात कही, कई बार हो सकता है कि पता ही नहीं क्यों सिंक हो रहा है। लेकिन ये तो एक्सेप्ट करो कि भी कोई ना कोई विचार है, भले आज से 10 साल पहले जो घटना हो गई उसका कोई विचार है, एक अर्ध जागृत रूप में वो विचार आ रहा है, पर विचार जरूर है। वह जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको ढूंढ भी सकेंगे। तीसरी बात है कि विचार आपके कंट्रोल में है।

0: हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि भी हम उसको चूज करते हैं, जो आमतौर पर लोग कहते थे विचार आ गया, ऐसी बात नहीं, वो हमारे कंट्रोल में है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एक एप्पल में कितने बीज आप गिन सकते हैं। मैं आपको एक एप्पल दूं, आप उसको कट कर लो, गिनती करो तो गिनती हो जाएंगे, परंतु एक बीज में कितने एप्पल गिन सकते हो?
1: नहीं, आई कांट, आई डोंट थिंक सो, नो वे, क्योंकि एक बीज से अगर कितने सारे एप्पल्स हुए तो उन एप्पल्स के भी तो कितने सारे बीज के हो सकते हैं,
0: वो भी और बात है आगे तो, लेकिन फिर भी एक बीज से हजारों एप्पल हो सकते हैं। ऐसे एक विचार भी बीज है, एक विचार आपके जीवन में बहुत आनंद भी ला सकता है, सुख भी ला सकता है, साथ साथ वही एक विचार आपको दुखी दुखी कर सकता है, न केवल आपको और हजारों लोगों को भी वह एक ही विचार दुखी कर सकता है,
1: खुशी भी
0: दे सकता है, हजारों को दे सकता है। हाँ। तो वह सीड है, मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूं कि एक विचार है वह सीड है। और एक जिस पर मैंने गहराई से सोचा कि भी विचार क्या करते हैं, जैसे जब नदी बहती है जमीन से तो है ना, वो अपनी जगह क्रिएट करती है, ग्रूव्स क्रिएट करती है वास्तव में, तो ऐसे विचार भी कॉस्मोस में एक सटल ग्रूव्स क्रिएट करते हैं।
1: और अच्छा, विचारों की नदी बहती जा रही है।
0: हाँ, बस विचारों की नदी है, वो वातावरण के अंदर उस प्रकार से ग्रूव्स क्रिएट करते हैं, और फिर जो सारी कॉस्मोस में एनर्जी है, जैसा आपने ग्रूव क्रिएट किया उसी प्रकार की एनर्जी वहां पर फ्लो होगी।
1: अच्छा, आकर्षित हम उसको,
0: हाँ, उसको आकर्षित करेगी। तो ना, इतना महत्व, सबसे पहले अगर इस महत्व को हम समझ ले तो फिर आगे के स्टेप्स भी सहज होंगे।
1: ओके शिवानी, विचारों का ये जो एक अननोइंगली हमने क्रिएट किया, कि जो अभी बताया डॉक्टर पटेल ने कि इट्स सो पावरफुल, मतलब वो, लेकिन अभी तक तो हम पता नहीं कितना कुछ पावरफुल क्रिएट कर चुके हैं। और जैसा कि बात ये हो रही है अगर कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने भी लगता है, तो मैं तो बहुत अच्छा भी सोचती हूं, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूं, वो बहुत कुछ तो नहीं होता फिर?
2: अब इसको भी चेक करना है, मैं बहुत कुछ सोचती हूं, मैं सोचती हूं कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, वेरी गुड थॉट, फिर मैं सोचती हूं हो जाऊंगी ना, लेकिन तैयारी है ना मेरी पूरी, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है, लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मेरी फेयर चेकिंग करेगा या नहीं करेगा, ऑल दीज आर ऑल्सो थॉट्स ना, नॉट दैट ओनली वन थॉट। नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं मैंने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया है, हाँ, कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, हम वो नहीं सोचते कि उसके साथ साथ कई बार हमने बहुत सारे ऑर्डिनरी थॉट्स और कई बार तो थोड़े नेगेटिव फियर के थॉट्स भी क्रिएट कर लिए, तो वो भी तो एनर्जी है। सो दैट्स वाई समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अचीव इवन इन द आउटर वर्ल्ड जो हम अचीव करना चाहते थे, बिकॉज एनर्जी बहुत सारी फ्लो की है। अगर आप कोई एक थॉट को ले लें और उस पर ही अपनी एनर्जी को फोकस करें, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए।
1: अब एक ऐसे किसी, सी इट कम्स एज अ फैमिली, सी थॉट्स विल ऑलवेज कम, एक थॉट थोड़ा रह पाएगा,
2: एक थॉट इन द सेंस आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या, अगर आपने क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किए सक्सेस की, जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फियर, फियर के साथ डाउट, डाउट के साथ एंग्जायटी, ये सारी फैमिली नहीं आनी चाहिए ना, एक ही परिवार को चूज करो, एंड दैट परिवार शुड बी द पॉजिटिव सक्सेसफुल हैप्पी परिवार, चूज दैट, डोंट मिक्स द टू थिंग्स। एंड क्योंकि बहुत समय से आदत है ज्यादा नेगेटिव,
1: आई कांट इवन इमेजिन,
2: नहीं, व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्क क्या है, सी पॉजिटिव थिंकिंग आज हम लोग अवेयर हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे कल्टिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग सो कॉल्ड ऑटोमेटेड मोड में गई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा, आ रही है, तो हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम एक पॉजिटिव थॉट तो एनवायरमेंट में भेजते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ जो नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स है वो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव थॉट से। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग। जैसे गिरीश भाई ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या सचमुच ये हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंड,
1: वो डाउट तो रहता ही है।
0: शिवम ने बहुत अच्छा कहा कि वो एक थॉट है कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन डाउट, एंग्जाइटी, फियर, उसके बदले पॉजिटिव फैमिली क्या हो कि आई कैन डू इट, है ना, मेरे में वो क्षमता है।
1: लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठ देखे, एक बात है, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप को गलत फहमी में रख रहा हूं कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये सारी चीजें भी तो होती हैं, एग्जामिनर जो है, ये मेरे पास नॉलेज ये भी तो, जैसे आपने कहा कि

0: नॉलेज से आप जैसे आपको नॉलेज मिलती है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं. आई हैव द नॉलेज कि एग्जामिनर जो है वो सही तरीके से कई बार नहीं देखते हैं, एग्जामिनर जो है वो या बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज जो नेगेटिव है. सो आज मैं अपने आप पे ये थॉट तो क्रिएट किया कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मार्क्स लाने हैं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं. लेकिन उसके बाद जो मेरे फियर्स हैं अगर मैं उनको वो आते मतलब या जो मैं क्रिएट करूं तो वो नहीं क्रिएट करूं तो मैं अपने आप को धोखे में भी तो रख रहा हूं ना.
1: पॉसिबिलिटी थॉट है कि भी आप जो सोच रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि मैं अगर थॉट करूंगी कि मैं पास होने वाले हूं, अच्छे अच्छे मार्क आने वाले, यहां तक मनोविज्ञान में मानने लगे कि आपका पेपर ऐसे ही एग्जामिनर के पास जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा.
2: एब्सोल्युटली. जैसे उन्होंने कहा कि जो आप थॉट क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन है, वो एनवायरमेंट में है, वो अट्रैक्ट करेगी उस सिचुएशन को आपकी तरफ. अभी पर्सनली आई टेल यू, एग्जाम तो नहीं आते अभी कोई ऐसे, लेकिन सपोज आई गो टू अ शॉपकीपर जहां सब्जी तोली जा रही है. कई बार कुछ लोग सब्जी अपने तुलवा रहे हैं लेकिन ये तो करते हैं चीटिंग, इनका वेट सिस्टम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ये पता नहीं अच्छी क्वालिटी की सब्जी दे रहा है कि नहीं. दैट पर्सन इज बाउंड टू चीट.
0: चीट
2: नाउ जस्ट गो नेक्स्ट टाइम. एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली. चाहे आप वो शॉपकीपर के पास हैं, चाहे आप टैक्सी में बैठे हैं, कोई आप ऑटो रिक्शा में, हम बैठते ही हैं ऑटो रिक्शा में. आजकल के तो ऑटो वाले सब ऐसे ही हैं, सब चीट करते हैं, किसी का मीटर भी ठीक नहीं हो. यू नो वी आर सो मच फिल्ड विद ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी. वो आप यहां बैठे हैं, वो यहां बैठा है, आप उसके प्रति ऐसी सारी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुंचेगी, उसने चीट करना है फिर. अब आप बैठे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ, बट मेक इट प्योर 100% क्लीन.
0: हमें लगता है कि हम वो झूठ बोल रहे हैं.
2: हमें ये समझ में आ गया कि जैसी थॉट मैं क्रिएट करूंगा आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी.
0: बट उसकी मैं उसकी नेचर को बदल सकता हूं. अगर
2: आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी मतलब लोगों की सोच और परिस्थितियां मेरी सोच के अनुसार मोल्ड होती जाएंगी ना. सिचुएशन नहीं तो है ही क्या, बिना लोगों के तो कोई सिचुएशन नहीं.
0: अभी तो मैं एक तरफ ये कह रही थी कि लोग तो कभी चेंज नहीं होते, एक तरफ आपने बड़ी मुश्किल से हमें ये समझाया.
2: हम पहले ये सोच रहे थे कि लोग चेंज हो जाएं.
0: हाँ,
2: सो वी वर क्रिएटिंग अ नेगेटिव थॉट फॉर देम. अगर मैं आपके लिए ये सोचूं कि ये चेंज हो जाए, मतलब मैं आपके प्रति क्या सोच रही हूं,
0: ये अच्छी नहीं है अभी.
2: सो व्हाट क्वालिटी एनर्जी इज दिस. तो जैसे ही मैंने आपको नेगेटिव भेजी, रिटर्न आपसे भी क्या आएगा, ये चेंज हो जाए.
0: हाँ, मैं तो कभी चेंज नहीं हूं.
2: सी दैट इज द एनर्जी. तो अगर मैं आपके चेंज होने के बारे में न सोचकर अपनी थॉट्स को थोड़ा सा प्योरिफाई करने लगू, क्लीनिंग करने शुरू, तो मेरे से आपको कौन सी एनर्जी जाएगी? पॉजिटिव जाएगी. जैसे ही मेरे से आपको पॉजिटिव जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड. एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड,
0: बट देन यू सी योर चेंज वॉज एबल टू चेंज मी
2: बिकॉज इट्स वाइब्रेशन. जो एनर्जी ऐसे जाएगी वो एनर्जी ऐसे आएगी. हमें मुझे जब अपनी थॉट्स की अवेयरनेस नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी. ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहां से जा रहा है. यहां से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते. हमारी सारी स्ट्रगल किस पे थी, आपने कहा मेहनत क्यों लग रही है, हम वो आते हुए तीर को चेंज करना चाहते थे. चेंज चेंज, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो. नहीं, इस तरफ नहीं चेंज होगा. आई चेंज व्हाट आई सेंड. That I have to change and very powerful. ये नहीं एक positive thought उसके साथ 10-15 negative thought, then तो कौन से तीर फेंके. फिर वो ही वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा था उनके बारे में. चेक करना कितना अच्छा सोचा था और कितना कुछ कुछ और सोचा था.
1: इट वो बातें इसके अंदर, एक तो है कि जब हमने टैक्सी की बात की ना कि भी टैक्सी वाला ऑटो वाला, आप अच्छी वाइब्रेशन दो तो जो टैक्सी वाला आपके पास आएगा ना अच्छा ही होगा.
2: No, and I yes, absolutely, personally experienced. I was staying in another city pehle. About 8 years back, we shifted to Delhi. Pata kya information milti hai yahan shift karne se pehle? Delhi mein na bahut log cheat karte hain. Delhi mein jo behan aapke ghar kaam karne aayegi, wo bhi aise hi hogi. Taxi to bahut cheat karti hai. Auto, fill yourself. 8 years, I haven't found anyone cheating me. Simply because aap apni thought ko change karo. Kyun wo hamari tarah hain wo log? लेकिन हम उनको इस तरह की एनर्जी देते हैं, वो वाइब्रेशन. नेगेटिविटी हर एक के अंदर ऑलरेडी काफी सारी है. आप जैसे ही स्टिम्यूलस भी नेगेटिव भेजोगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप ट्रिगर करोगे. लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि इनहेरेंटली हर एक बहुत प्योर और

0: पॉजिटिव सोल है। अब आप उसके पास वो वाला तीर फेंको तो उसकी पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी। ये चॉइस हमारे पास है, ये पावर भी हमारे पास है।
1: मतलब हम करके देखना चाहिए, मैंने अनुभव किया,
0: बहुत वर्क
1: कई बार देखा, एयरपोर्ट पे जाते हैं देखा टैक्सी वाला सामान उतार के ट्रॉली तक रख देते हैं, उसकी ड्यूटी नहीं है वो।
0: इसका मतलब हमने ये किया कि मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि आप आंख मूंद के फिर जी रहे हो कि आप देख ही नहीं रहे कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि आई नो सामने वाला करप्ट है, मतलब मुझे पता भी चल गया अगर एंड आई हैव टू डील विद हिम। सपोज मैं कोई काम करवाने भी जा रही हूं और सामने वाला करप्ट है, पता है, तब मैं क्या ये वाइब्रेशंस उसको दूं कि नहीं आप प्योर हैं, आप सच्चे हैं, तो ये मैं अपने आप से झूठ नहीं कर रही हूं।
1: पहले तो दो, उसमें कुछ तो चेंज आएगा,
0: मतलब इट विल हैपन,
1: इट विल हैपन, एक्सपेरिमेंट,
0: बट हैव द फेथ इन योर सेल्फ फर्स्ट। ये नहीं कि अच्छा मैं बोल तो रही हूँ ये प्योर है लेकिन वैसे तो ये करप्ट है, हाँ तो फिर क्या, फिर कौन सी सोच क्रिएट।
2: एक तरफ है फैक्ट, एक तरफ है मेरी सोच। हाँ
1: अभी ये फैक्ट नहीं है, देखो आपने कभी एक नदी में दो बार स्नान किया है?
0: हाँ कभी सुबह और शाम।
1: एक्चुअली देखो आपने जो दो बार स्नान किया सवेरे शाम, लेकिन नदी तो बह रही थी, पानी तो बदल गया था, बदनाम हुआ था परंतु पानी तो सेम नहीं था।
0: हाँ
1: तो कहते आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते,
0: एक पानी में, हाँ मतलब
1: नदी कहो,
0: हाँ
1: तो ऐसे कहते आप एक व्यक्ति को दो बार नहीं मिलते हो,
0: व्यक्ति बदल गया।
1: हाँ आज मैं आपको मिला हूँ कल मिलूंगा तो यू आर डिफरेंट,
0: डिफरेंट
1: आपके विचार बदल गए,
0: हाँ।
1: है ना, मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। तो इसे जो आपने वो कहा ना कि वो फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट,
0: पीपल चेंज,
1: हाँ वो व्यक्ति को कल शायद ठीक है भी दो दिन पहले वो करप्ट था, आज उसमें परिवर्तन आ गया, तो क्यों उसी नजरिए से देख रहे हो, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो।
0: एक्चुअली कोई है किसी में कोई थोड़ी सी कमजोरी है जैसे करप्शन है कोई भी, हम सब उसी के ऊपर चिंतन कर करके उसको सभी लोग ये एनर्जी भेजेंगे कि ये तो करप्ट है, ये तो करप्ट है, तो जितनी उसके पास वो एनर्जी जाएगी उनका वो संस्कार
2: स्ट्रांग
0: और स्ट्रांग होता जाएगा। दैट इज वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली बी फोर्स विद ईच अदर हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। कि इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हरेक की विशेषताओं को देखो। दो बातें हैं, जितना आप कमजोरियों को देखेंगे, पहली बात तो वो कमजोरी आपकी बनती जाएगी, क्यों, क्योंकि हम किसका चिंतन करते गए, ये तो ऐसे हैं, ये तो गुस्से वाले हैं, ये तो करप्ट है, तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, वही भेज रहे हैं, मेरा भी नुकसान उनका भी नुकसान। विशेषताओं को देखो, विशेषता मेरी भी बनती जाएगी वो, और वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उनकी विशेषता पक्की होती जाएगी।
2: तो शिवानी आपने कहा कि विशेषताएं देखें हर एक की और नेगेटिविटीज ना देखें, लेकिन मेरे सामने है वो नेगेटिविटी, मैं चलिए एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा पर दिख तो रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं भी कर रहा, बट क्या मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ?
1: बिल्कुल, क्योंकि आप जिसे विचार करेंगे वहां तक पहुंचेंगे, एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो रहा है, और तीसरी बात है कि उसे हम लेबल ना करें। आज जब बोलते हैं कि ये करप्ट है तो आप उसने लेबल लगा दिया, तो फिर सदैव के लिए बोले वैसा ही रहे। आप और सोच लिए, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं आपने उन्होंने लेबल लगा दिया कि ये स्मार्ट नहीं है, तो ऑलवेज उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचे वैसा ही रहेगा। विशेष बच्चों के लिए कभी नहीं करो, आज अधिकतर माता पिता बच्चों को लेबल कर देते हैं कि छोटा वाला स्मार्ट है, बड़े वाला बुद्धू है, वो कभी ठीक काम से नहीं करता है, जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है। इवन क्लासरूम में रिसर्च स्टडीज भी की गई है,
2: लेकिन वो तो कर ही रहा है ना वैसा।
1: नहीं आप देखिए, रिसर्च स्टडी को आप समझिए तो भी आप कन्विंस हो जाएंगे इस बात के लिए कि एक क्लास में नए टीचर आए और सभी बच्चों के जो उनके मार्क्स थे पिछले क्लास के उनको दिए गए, किसको भी इसकी फर्स्ट ग्रेड है, इसकी सेकेंड, इसकी थर्ड है, ऐसे बच्चों को दिया, और फिर एक साल के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा तो ये पाया कि भी जिसको बताया था कि इसकी फर्स्ट ग्रेड है तो उसको फर्स्ट ग्रेड ही आई, कहा कि भी ये थर्ड ग्रेड का है उसके करीब करीब थर्ड ग्रेड ही आई, और प्रैक्टिकली रिसर्चर्स ने क्या किया था, पूरा उल्टा कर दिया था। जिसकी फर्स्ट ग्रेड आई थी उसको कहा था इसकी थर्ड ग्रेड है, जिसकी थर्ड थी उसको फर्स्ट बना दिया था। तो उसका कंक्लूजन ये हुआ कि भाई टीचर का जो इंटरप्रिटेशन है, तो टीचर तो ये सोचा था कि ये लड़का स्मार्ट है भले वो था बुद्धू,
2: ओ, और वो सोचता रहा और उसकी थॉट्स ने, उसके पूरा लेबलिंग ने उसको फर्स्ट ही बना दिया।
1: न केवल लेबलिंग,
2: हाँ,
1: लेकिन अप्रोच भी,
0: हाँ, आपका पूरा थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, बात करने का तरीका,
1: समझाने का तरीका।

0: चेंज हो जाएगा ना। देखो कोई आपको लगे ये तो बुद्धू है तो आपका थॉट कैसे चलेगा, इसको तो कितना भी समझाओ इसको तो समझ में नहीं आएगा ये तो बुद्धू। सो यू डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एफर्ट। लेकिन एक आप स्टूडेंट को देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, यू नो यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट लुक ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है और एनर्जी, थॉट एनर्जी तो
1: जाएगी।
2: अच्छा अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क इज कि आपने कहा कि दूसरे की विशेषता देखोगे या कमजोरी देखोगे तो वो आप में आ जाएगी, यू सेड समथिंग लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल?
0: बिकॉज मैं चर्न कर रहे हो उस थॉट के ऊपर। सपोज आपके अंदर गुस्से का नेचर है, आपके गुस्सा करने के, एंड मैं बार बार ये थॉट क्रिएट करती हूँ ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं, इनको बात करने का तरीका भी नहीं आता, वट काइंड ऑफ एनर्जी एम आई क्रिएटिंग? सी अब ये एनर्जी क्रिएट करते करते मैं आपसे कैसे बात करूंगी, अब मैं भी आपको गुस्से से बात करूंगी, ऑटोमेटिकली वो होगा ही, इट विल बिकम, बिकॉज आई बीन चर्निंग ऑन दैट नेचर ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये गुस्से वाले हैं, चाहे इनसे कैसे भी प्यार से बात करो ये तो ऐसे ही बात करते हैं, अगली बार तो ना मैंने बात ही नहीं करनी इनसे, ऑल दिस इज माई थॉट गोइंग ऑन, सिर्फ क्योंकि मैंने आपकी वो एक कमजोरी देख ली है। तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया, फिर व्यवहार चेंज हो गया, फिर एक बार मैंने आपसे इस तरह से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बनता गया और धीरे धीरे मेरा संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सबके साथ ऐसा बनता जाएगा।
2: लेकिन मुझे आप गुस्सा करते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन वो मैं अपने अंदर कैसे इनकल्केट कर रहा हूँ?
0: क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना बाद में, नहीं अनोइंगली नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपकी उस आदत के बारे में सोचती हूँ और मैं ये फील करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके जिम्मेवार आप हो, और मैं आपके क्रोध के संस्कार पे चिंतन कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी कैसी क्रिएट हो रही है? दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल ली, क्रोध की आपकी पेंसिल ली, मैंने कहा ये पेंसिल टूटी हुई है, अब इससे मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे एक डायग्राम ही बन रहा है ना, सारा दिन कंटिन्यूसली हम ग्रूव क्रिएट करते रहते हैं। कौन सी पेंसिल लेके क्रिएट किया था? ये गुस्से वाले हैं। व्हाट एनर्जी व्हेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, हाउ एम आई गोइंग टू फील? एंड फिर ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा? फिर मैं किसी और से आपके बारे में बात करूंगी तो कैसी एनर्जी क्रिएट करूंगी? तो गुस्सा तो आपका संस्कार था, ये ना जब हम किसी को बोलते हैं तो बहुत गुस्से वाले हैं, कैसे बोलते हैं? आपको पता है ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते, आपको पता है ये बहुत गुस्से
2: रिजेक्ट कैसे
0: बोलते हैं? नो माई वे ऑफ टॉकिंग ऑल्सो बिकम्स लाइक दैट बिकॉज आई एम टॉकिंग नेगेटिव। वाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स अ वेरी सटल वे, हमें अवेयरनेस भी नहीं होती कैसे वो हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता जाता है। जो आपने अभी पूछा था ना कि कमजोरी है उनके अंदर, तो हम क्या करें? एक है अवेयरनेस कि किसी के अंदर ये कमजोरी है, इवन अगर आपको ये दिखाई दे रही है, डोंट कीप इट हियर। परमात्मा कहते हैं उसकी कमजोरी अपने चित्त पर मत ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अवेयरनेस है आपके अंदर ये कमजोरी है, ओके मैं आपको वो वाला शायद काम नहीं दूं थोड़े दिन या कुछ भी, आई टेक स्टेप्स, लेकिन मैं उसको अपने चित्त पर नहीं लूं, मतलब मैं उसके बारे में चिंतन ना करूं ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कौन सी एनर्जी भेजूं। तो अगर मेरे से आपको डिफरेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गिरीश भाई ने कहा इन द फैमिली, यू नो एक व्यक्ति लेबल लगाता है कि ये तो बुद्धू है, बहुत जल्द बहुत लोग वही लेबल लगा देते हैं, सब लोग कहते हैं इससे तो वो हो ही नहीं सकता। अब वो एक और 8-10 लोगों से उसको वही एनर्जी मिल रही है, क्या होगा? वही संस्कार और पक्का होता जाएगा।
1: शिवानी बिंजू कहते हो ठीक है कि कोई नहीं, इम्पोर्टेंट चीज हो तो भले उसको कुछ समय वो काम नहीं दो, लेकिन पॉसिबल हो तो मैं तो कहता हूं काम भी दो, एडिशन
2: विश्वास रख के
1: नहीं,
0: सिर्फ रेडी एंड प्रिपेयर्ड के यू नो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो, यू टेक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम यू नो कल्टिवेट दिस थिंग इन टू योर सेल्फ। हम कई बार देते भी हैं तो हम कहते हैं देते हैं, फिर थोड़ा पहले थॉट होता है पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर थोड़ा सा उसने 1% भी उसमें कुछ गलती कर दी, इमीडिएट थॉट मुझे पता था इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं उसका और डैमेज कर देती हूँ। मुझे करना है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके करना है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस हैबिट, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा थोड़ी देर, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो हैबिट कल्टिवेट कर देगी। हम एक बार करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, फिर हम उनको चार बार सुनाते हैं, मैंने आप पर पिछली बार विश्वास रखा था, क्या किया आपने, क्या रिजल्ट आपने उसका दिया, देन इट जस्ट गेट्स वर्स एंड

0: वी थिंक कि हमने उस पर फेवर की, हमने उसको ट्राई किया, ही इज नॉट वर्थ इट, फिर हम कहते हैं फायदा नहीं उस पर विश्वास, तो फिर वो बहुत सारी एनर्जीज और भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो अपनी पूरी तैयारी करके फिर उनके ऊपर काम करना, पहले काम अपने ऊपर करना।
1: एडिसन के लिए कहते हैं कि जब उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहे थे, तो अकेले पहली बार जब जा रहे थे तो जो व्यक्ति कैरी कर रहा था तो बल्ब गिर गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बड़ा डेंजरस चीज थी। तो रात भर जाग करके एडिसन ने नया बल्ब तैयार किया, फिर सवेरे वो डेमोन्स्ट्रेशन होना था, तो फिर से उसको उस ट्रे में दिया कि तुम वहां तक ले। सबने कहा नहीं नहीं नहीं सर, आपको नहीं मालूम है, कल शाम को तो इसने तोड़ दिया है बल्ब, फिर से तोड़ दिया। कहा नहीं नहीं, यही बल्ब को ले जाएगा। उसने कहा कि देखो बल्ब फिर से भी टूट गया ना तो नया बन जाएगा, पर तो इसका दिल टूट गया तो नया नहीं बन सकता।
0: तो इसलिए मैंने उसी को दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना सामने वाले,
1: उसी को दिया कि तुम संभाल के ले जाओ।
2: बिल्कुल, और आज अपने ही विचारों से, उनकी शक्ति से हमें वाकिफ कराया आपने। अब इन स्किल्स को और आगे हम देखते जाएंगे। डॉक्टर पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। बहुत बार सुना था और बड़े बड़े लोग बहुत सी बातें भी करते हैं कि थॉट में जो है वो बहुत पावर है, आपके अपने विचार जो हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत सी किताबें, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे थे। अब जब छोटी छोटी तरह से ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैं सोचता हूं, मतलब जाने अनजाने ही अभी तक ये हो रहा था कि कोई भी विचार आता था हम उसके साथ ही बहने लग जाते थे। एक थॉट आया, अभी तक हम कहते थे आया, अब सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल ने हमें बहुत क्लियर किया है, हमने क्रिएट किया वो एक थॉट, उसके साथ हमने बहुत सारा एक समा बांध दिया थॉट्स का ही, एक पूरी जर्नी की। देखना ये है कि हमने किस फैमिली के थॉट्स लिए, और परिवारों की हम बात करते हैं, ये परिवार अवेकनिंग का है, तो साथ ही अब चलिए विचारों के परिवार पर चलते हैं कि हमने वो पॉजिटिव थॉट्स के विचार क्रिएट किए, पॉजिटिव थॉट्स की फैमिली क्रिएट की या नेगेटिव थॉट्स की, ये हम देखते जाएंगे। थोड़े थोड़े अवेयर होते जाएंगे तो शायद हम उन स्किल्स को इनकल्केट करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@vkmail.org। अवेकनिंग विद रमा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे बहुत कुछ अभी बाकी है, मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और कई बार हम लोग जो है सैटरडे के दिन शाम में आपसे मुलाकात होती है सभी हमारे युवा साथियों से, और खास करके हम लोग जिस विषय को लेकर बात करते हैं वो विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने करियर को बहुत अच्छा बनाए। और करियर को बनाने के पहले जो है हमारी अपनी अगर पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, हम अपने पर्सनालिटी को अच्छा कर लें, तो फिर हम किसी भी करियर को चुन लेते हैं तो उसमें बेहतर बना सकते हैं, उसमें बेहतर काम कर सकते हैं। तो आइए बिगनिंग ऑफ द करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बात करते हैं आज। और हमारे साथ सोनिया जी दिल्ली से जुड़ी हुई है और आप रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं और अलग अलग आपने विशेष मोटिवेशनल टॉक्स दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है, रेडियो पे बात की है और गाने और संगीत के साथ भी आपका रुझान बड़ा अच्छा है और आप गीत भी गुनगुनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आज हमारे सभी युवा साथियों को करियर डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पे पर्सनालिटी अगर हमारी अच्छी हो जाती है तो बेहतर करियर का चूज करना भी आसान हो जाता है। तो आइए युवा साथियों, आज हम लोग हमारे साथ हमारे खास मेहमान सोनिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप सभी की तरफ से सोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच
0: जी। सोनिया जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ
0: जी। जी जी, मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो ये शब्द बड़ा कॉमन है और लोग चाहते भी हैं कि ये चीजें इस तरह की बातें हो और हम अपना करियर को या अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये क्या बोला है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
1: जी देखो, युग बदलता है, समय बदलता है, तो उसके साथ बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। आज भी अगर हम 50 साल पहले मुड़ के देखें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि नहीं था, आबादी नहीं थी, जॉब फील्ड में लोग नहीं जाते थे, ज्यादातर लोग दुकानदारी या अपने घर के बिजनेस को ही अपना सोर्स ऑफ इनकम समझते थे, तो उसमें पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट जरूरत ही नहीं पड़ी। पर आज का सिनेरियो तो हम सब जानते हैं, छोटी से छोटे फील्ड में भी हम अगर जाएं तो क्या देखते हैं कि भर भर के कंपटीशन है ना। तो जब और जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो क्या चूज करता है, उसके पास बहुत ऑप्शन है ना। उसके पास 100 कैंडिडेट हैं और उसमें उसको 10 ही चूज करना, तो आप समझ सकते हैं वो 10 किए जाएंगे। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट यहां मतलब अपने व्यक्तित्व सुधार लाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यक्तित्व है या आप उसको बहुत चेंज करना चाहते हैं, नहीं, छोटी छोटी बातों को दूसरों से बेहतर समझना, ये भी कोई नहीं कहा जाता अपने आप को मैं बहुत बड़ा हूं या मेरे में मैं ऊपर नीचे हूं, नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को निखारना, अपने आप को और बढ़कर बनाना। जो आप हैं, सुधार तो सबको अच्छा है ना। तो जिस चीज में आप काम करते हैं उस चीज को अगर आप और निखार लाते हैं तो आपका चूज किया जाना निश्चित है। तो इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना, अपनी कमियों को दबाना। ये नहीं कहती कि कुछ कमियां ऐसी हैं जिसको आप नहीं कर सकते, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आपकी नाक टेढ़ी है या आपके कान वैसे हैं ना, तो आप सोचोगे कि इसको मैं कैसे बदलाव लाऊं, नहीं, उसको एक्सेप्ट करना है। पर पर्सनालिटी का मतलब है अंदरूनी आपका वर्चुअल जो हैबिट्स है ना, उन चीजों में बदलाव ला अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना। जैसे कहते हैं आज चलती का नाम गाड़ी, ठीक है वो खिलाड़ी। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि पर्सनालिटी क्या है, उसके बारे में आपने जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने क्लियर किया कि जो हमारा फिजिक्स है, जो चीजें हमको ईश्वर ने दी है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम स्वीकार करते हुए उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो पर्सनालिटी की बात है, जो हमारी सोच की बात आपने बताया, जो हमारा इनर पर्सपेक्टिव है, उन चीजों में हम बदलाव ला सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी भावनाएं रख सकते हैं, रचनात्मक सोच सकते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारा जो है इनर पर्सपेक्टिव की बात आती है, पर्सनालिटी की बात आती है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हम वैल्यूज को अपने लाइफ में लाते हैं, तो वो चीजें हमें जो है बहुत ज्यादा काम आती हैं हमारे लाइफ में। ऐसा कहा जाता है कि आप कौन हो ये जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैसे हैं ये बहुत मायने काम करता है। इसलिए दोनों का जो कॉन्सेप्ट है हमें क्लियर से समझना चाहिए। हम ये नहीं बताएं कि मैं इसका लड़का हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, लेकिन दूसरे आपके लिए ये कहें कि ये बंदा ऐसा है। तो क्या हम लोग इस चीज पे कभी काम नहीं कर पाते? शायद ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसी विषय को लेकर काम करा जाता है। तो आइए मैं सोनिया जी से एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जो सवाल बहुत ही सिंपल है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम समझ गए कि पर्सनालिटी क्या है, किसको कहा जा रहा है। तो अब ये पर्सनालिटी को कैसे हम लोग डेवलप करें, कैसे हम लोग इन चीजों को समझे और विकसित करें अपनी पर्सनालिटी को? जी
1: जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने कि पर्सनालिटी में हम सुधार कैसे लाएं। क्या है पर्सनालिटी? अंदर बाहर का नहीं, बाहर का आवरण जैसा भी स्वीकार करें, ठीक है ना। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो हाइट के साथ भी जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज सर किया, उसके बाद भी वो बहुत सक्सेसफुल हुए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में आपका जो बाहर का आवरण है यानी हाइट और कलर, ये इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर आप अंदर के गुणों को विकसित करके आगे बढ़ते हैं ना, तो वो आपको करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का लुक देता है। तो ये जो आपने तीन सवाल पूछा कि हम कैसे ग्रो करें, ब्यूटिफुल क्वेश्चन। तो पहला इसका एजेंडा मैं तीन बात करूंगी। सबसे पहले हमारी पर्सनालिटी में जो रुकावट है ना, वो हेजिटेशन है ना। तो लैंग्वेज जैसे आज

0: हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पर क्या है ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना भी, मैं ये नहीं कहती इधर इंग्लिश बोलो, फ्लुएंटली आप बात कर दो ना, आपने जिंदगी में बात ही नहीं की तो इतना जल्दी कवर अप कर पाना इजी नहीं है, पर फिर भी उस लैंग्वेज पे कमांड आप हेजिटेशन को दूर करेगा, यानी कुछ कुछ इंग्लिश आपको सीखना हेल्प करेगा। उसके लिए आप अच्छी वोकैबुलरी बुक्स पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके, जैसे मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं में, तो धीरे धीरे जब मैं देखती थी अपने क्लासमेट्स को कि वो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, टीचर करते हैं, तो मोटिवेट होती थी, तो मैंने डिक्शनरीज पढ़ना स्टार्ट किया, रोज के 10-10 वर्ड लिखना स्टार्ट किया, फिर उसके मीनिंग अपने सेंटेंस में फ्रेम करना, ऐसे करते करते ना आपका खुद का एक वोकैबुलरी सेक्शन मेंटेन होता है, तो उससे हेजिटेशन दूर होता है, क्योंकि चार लोग बात कर रहे हैं तो आपको बात करने के लिए लैंग्वेज है ना, हिंदी है तो बहुत अच्छी हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश है तो उसमें भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। दूसरा अगर मैं एक्सपेक्ट बात करूं, स्किल एंड रीस्किल, यानी अगर आपको करिज्मेटिक पर्सनालिटी को इनकल्केट करना है तो सीख है ना, तो जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, अपने आप को रीस्किल सीखेंगे नहीं, तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, कोई फील्ड बुरी नहीं होती, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, तो किसी भी फील्ड में आप सीख कर बहुत कमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मौके सर उन्हीं के पास आते हैं जो कोशिश करते हैं उस चीज के लिए, है ना, प्रकृति आपको भर भर तैयार है ना, कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब बस देखता है ना कि आप किसी चीज के लिए बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो यूनिवर्स खुद आकर आपको है वो अपॉर्चुनिटी। तो अपस्किल करना और रीस्किल करना इसका दूसरा एजेंडा है। तीसरा मैं कहूंगी अंडरस्टैंडिंग करना, यानी कि किसी चीज की डीपली जाकर उसको समझना, यानी देखो ना कहते हैं ना एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी, क्या अनाड़ी क्या करता है, बिना सीखे चला मैदान में उतरता है ना, तो हथी का पत्थर, और खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग पे जाए, ट्रेनिंग करके पूरा सीख के जाएगा। देखो अब जैसे कमांडोज होते हैं ना, एक शार्प ट्रेनिंग के बाद ही उतरते हैं ना मैदान में, तो अगर वो कमांडोज बिना ट्रेनिंग के उतर जाए तो, या फिर एक डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के सर्जरी करने लगे तो क्या रिजल्ट होगा, है ना, तो पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखने के साथ अंडरस्टैंडिंग करना, ये अंडरस्टैंड करना कि मेरे लिए वो कौन सी चीज अच्छी है जो मैं सीखना चाहता हूँ, जिसे मैं 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, क्योंकि जिसको आप अपना 100% नहीं दे सकते ना, उस चीज में आप चाहकर भी ना बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो किसी के चाहकर नहीं, या उस चीज में जाइए जिसमें आपको बहुत इंजॉय करते हो, तो सीखना ही हो जाता है। तो इसका मैं पहले बात कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला रोल क्या निभाता है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म से हमारा मतलब है पॉजिटिविटी, अगर आप पॉजिटिविटी को एक्वायर करेंगे ना तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, तभी तो कहते हैं ना इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, है ना, कोई चीज अगर एक एक पैर का आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, तो हमें क्या करना है, मॉडल्स अपने आगे अपने आंखों के सामने रखने हैं, यानी पॉजिटिविटी तब आएगी ना, हम ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो इतने एफिशिएंट नहीं थे, पर फिर पॉजिटिविटी के दम पर और अपनी स्किल्स के दम पर उन्होंने वो कर इम्पॉसिबल था, है ना। तो अपनी एबिलिटीज को फिगर आउट करना है कि मतलब मेरे में 20% है, तो 80% वो मेहनत से आएगा, बिना मेहनत से कुछ नहीं आएगा, पर निरंतर प्रयास। वो बोधराज की कहानी सुनते थे ना हम क्लास 2 में, शायद एनसीईआरटी की बुक में आपने भी सुनी होगी, है ना, तो उसके टीचर ने क्या कहा, तुम निकम्मे हो, तुम कर नहीं सकते, तो तुम क्या करो, बेहतर है घर चले जाओ,
1: बिल्कुल
0: है ना वो कहानी। तो उसने जब देखा कि एक मटके को बार बार सीमेंट पे रखा जा रहा है तो भी निशान आ गया उसके, तो उसने कहा अगर इस निशान आ गया तो मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूं कि मैं भी प्रैक्टिस से सीख सकता हूं, तो वापस गया और बहुत बड़ा विद्वान पंडित बना। तो ऐसी चीज इंस्पायर करती है, यानी अपनी एबिलिटी को फिगर आउट करो कितने परसेंट है, 10%, 20% और 80% निरंतर प्रयास से वो आ जाएगी। उस क्या हेल्पफुल है, बुक्स, है ना, जितना टाइम हम मोबाइल, आजकल की जनरेशन अगर आधा समय बुक्स में देंगे तो हमारे टारगेट को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता।

यानी कुछ बुक्स हैं जिसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं बहुत, तो आप उन अमीर लोगों की कहानी पढ़िए। जैसे एक बुक है मेरे पास, द रिचेस्ट मैन इन बेबिलोन, ये मेरा बेटा पढ़ता है, ये जॉर्ज क्लाजन ने लिखा है, ये बहुत अच्छा बुक है ना। एक द रिच डैड एंड द पुअर डैड, ये कहानी हुई, गरीब बच्चा बहुत अमीर बना है ना, क्योंकि उसने रोल मॉडल रखा। एक सैपियंस है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, बहुत अच्छी बुक है, वो कैमलरी की बुक है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अच्छी बेहतरीन किताब है। यानी कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं। जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, वैसा बनोगे। तो मतलब आप ज्यादा फोकस करते हो ना, वो चीजें आपके अंदर इनकलकेट होने जाती है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे ना, ये तो गीत है ना। जैसा सोचोगे तुम वैसा जाओगे, यानी सोच से शुरू होता है हमारा कामयाबी का पहला पड़ाव। यानी सोचो दिन रात कि मैं कामयाब। तो दूसरा इसका एजेंडा है यानी ऑब्जर्वेशन। पहला मैंने बताया ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी, अच्छी किताबें सुन पढ़ो और अच्छे लोगों से मिलो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। नेगेटिव लोगों से कितना जितना किनारा करेंगे उतना अच्छा। जो आपको ये जतलाएं कि तुम कमजोर हो, ये नहीं कर सकते, उन लोगों से कोसों दूरी बनाए रखें, उनके पास भी ना जाएं, है ना। तो नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं क्योंकि उनका सर्कल भी नेगेटिव है। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप जुड़ाव रखें जो आपको प्रोत्साहित करें, जो पॉजिटिव हो। तो ऑप्टिमिज्म पहला पड़ाव है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करना? जो आप बनना चाहते हो। अब एक डॉक्टर साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करेगा तो फिर कैसे डॉक्टर बनेगा, है ना। एक खिलाड़ी डॉक्टर को ऑब्जर्व करे तो कैसे डॉक्टर बनेगा। यानी जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आपको कार्य करना है, रोल मॉडल आप चाहें तो अपने ना कमरे में एक तो पिक्चर्स लगा दीजिए। जैसे विराट कोहली क्रिकेटर बनना है तो विराट कोहली या धोनी, महेंद्र सिंह या आपको इंटरनेशनल स्टार, उनकी पिक्चर्स लगाएं, उनको बार बार देखें कि ये कैसे बने, है ना। उनकी उनकी बुक्स पढ़ें, उनकी हिस्ट्री को जानें। तो मतलब वो रोल मॉडल तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे लोगों को देखने से आप क्या मतलब अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश में जुट जाते। बार बार आपको ना हिम्मत आती है, ये बने हैं तो मैं भी जरूर बन के दिखाऊंगा, हाँ या दिखाऊंगी। तो ऐसे डॉक्टर अपने उसको रखें जिनमें वो क्वालिटीज हैं, है ना। मुझे एमडी करनी है या मुझे बहुत बड़ा सर्जन बनना है तो उनको देखिए, साइंटिस्ट को देखिए, कलाम को देखिए, है ना। तो वो भी बहुत छोटे बैकग्राउंड से थे तो कहाँ पहुंचे, है ना। तो इसलिए ऑब्जर्व करनी है क्वालिटीज को और फिर उनको अपने में धारण करना है। और जब क्वालिटीज आएंगी आपके अंदर तो फिर मेहनत उतनी मुश्किल नहीं रहती। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन यानी ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ऑब्जर्वेशन मतलब रोल मॉडल को देखना। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसे देखिए, उनके बारे में जानिए वो कैसे बने। तो अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए, आर्टिकल्स या अच्छे सेंटेंसेस को देखना, है ना, वोकैबुलरी को शामिल करना। तीसरा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब रियल पर्सनैलिटी, शो ऑफ नहीं करना है ना। लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कोई हीरो हीरोइन को देखते हैं ना, आजकल कॉपी बहुत है, है ना। क्या करते हैं ना, शाहरुख खान ऐसे हाथ खोलता है ना, कैटरीना कैफ जो ऐसे कपड़े पहनती है, तो वो उन्हें कॉपी करते हैं, है ना। आपका फिगर वैसा नहीं है, अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसे नहीं है तो लोग आपका उल्टा ना, आप एक कहते हैं ना एक फनी कैट बन जाते हो, है ना, मजाक का विषय बन जाते हो। तो लोग आपसे मिलेंगे पर आपसे दूर भागेंगे। तो वो दिखावा नहीं करना है जो आप नहीं है, है ना। दिखावे से दूर रहना है, रियल बनना है। जैसे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात कहूंगी, धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, है ना। तो पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी को जानती है, अनिल और मुकेश अंबानी जी के स्वर्गीय पिताजी। तो उनका इनकम तब नहीं था, वो गांव से थे, एक नॉर्मल बैकग्राउंड के थे, बट वो ना फाइव स्टार करते थे महीने में एक बार, और वहां एक कप चाय पीकर आते थे। तो उनके फ्रेंड्स कहते थे, तुम इतनी कम इनकम में इतना पैसा तुम चाय वीकली जाते हो, चाय में उड़ा देते हो ना, इसका क्या मतलब है। कहता, मैं वहां चाय पीने नहीं जाता हूँ, मैं वहां उन अमीर लोगों को देखने जाता हूँ कि उनका स्टाइल, उनका हाव भाव, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, और उनकी मैं बात सुनने की कोशिश करता हूँ कि

0: वो उस फील्ड में कैसे आगे बढ़े, है ना, क्या मुझे सीखने को मिल सकता। सीखने के पर्पस से जाते थे, शो ऑफ करने नहीं जाते थे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना चाय पीना। तो यानी अपनी जिंदगी की पॉपी कहते हैं ना एनर्जी को में जितना लगाएंगे उतना पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। इसमें आपका यूट्यूब भी हेल्प कर सकता है ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाके पैसा खर्च करना, तो यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो बी रियल, रियलिस्टिक, है ना, आर्टिफिशियल और फेक नहीं बनना है। वो नहीं पहनना है जो हमें सूट नहीं करता, और वो नहीं खाना है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, है ना। तो एक हमारा डाइट भी बहुत डिपेंड करता है, डाइट से भी कहते हैं ना, डाइट से क्या नहीं, डाइट भी हमारी पर्सनालिटी को निखार लाती है। डाइट पे फिर हम कभी बात करेंगे, पर ऑथेंटिसिटी, हाँ, रियल बनिए और आर्टिफिशियल मत बनिए। हाँ, और तीसरी बात है कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। और पता है क्यों, पूछे क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि ईश्वर ने हमको दो कान दिए हैं और एक ही मुख दिया है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्यों दिए हैं दो कान? ईश्वर ने दो कान इसलिए दिए हैं कि हम अच्छे लोगों की बातें ज्यादा सुने, और जहां बोलने की जरूरत है उतना बोलें और वहीं बोलें। गलत जगह पे और गलत बात कहना आपको बहुत है, कहते हैं ना, भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, मार तो भूल जाते हैं ना पर बात नहीं भूलते। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचिए कि आप जो बात बोलने जा रहे हैं ये किसी को हर्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि जब लोगों को आपकी बातें हर्ट करेंगी, लोग आपसे अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को भी अपलिफ्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट फेज है हमारे लाइफ का। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विशेष लिसनर्स को अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारी बातें हो रही है सोनिया जी से और काफी अच्छा उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी क्या है वो तो हम समझे, लेकिन उसको डेवलप करना हर व्यक्ति को अपने आप पे काम करना होता है, क्योंकि यही एक बड़ा मुश्किल सा काम हमें लगता है कि हमें आज के समय में आज के जो चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई आज लोगों को बस सिर्फ चीजें हाथ में मिल जाए। एक बड़ी हमारी बुरी आदत सी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो हम लोगों के अंदर जो है एक पॉजिटिव चेंज के बजाय एक नेगेटिव चेंज आता जा रहा है। हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी को हम लोग एज ए टूल यूज करना चाहिए, लेकिन हम डिपेंडेंट हो रहे हैं और हम कंप्यूटर और ये सारी चीजें लगाकर लोग भी काम कर देते हैं और एक बंदे को कंप्यूटर पे लगा देते हैं, उनको बता देते हैं ये चीजें करो और हम बैठे रहते हैं। तो इस वजह से चीजें जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं धुलमिल हो गई है, तो फिर से उसे झटकना चाहिए। जैसे किसी आईने को अगर हम रखे एक ही जगह पे और उसको अगर हम लोग क्लीन नहीं करते हैं तो उस पर धूल जम जाती है और जब आप चेहरा देखेंगे तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है कि आईना साफ हो तो चीजें दिखाई दे। तो अब बात करते हैं कि सोनिया जी, आपको जब पर्सनालिटी के बारे में आपने किस तरह से अपने ऊपर काम किया, वो कहाँ से शुरू किया आपने, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर कीजिए।
1: थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो मैं कभी सोचती थी कि कोई कभी मेरे से ये पूछेगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी में सुधार कैसे आया, कि तुम आज मतलब जहां जाती हो तो जैसे मुझे कहा अब

तुम जहां जाती हो ना वहां रौनक छा जाता है, तो तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है, सेंसर मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सेंटर पे भी जाती हूँ तो वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, है ना, वहां के। तो जहां भी मतलब आप जाते हो तो वो पर्सनैलिटी को मैंने कैसे किया या कैसे ग्रूम किया वो मेरी सीखने की ललक थी। तो जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था, जो और ज्वाइंट फैमिली में जब मैं कुछ इंग्लिश में बात करती थी, मुझे इंग्लिश में बात करना, तो वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बोलते थे बड़ी अंग्रेज आई है। तो उसको भी मैं पॉजिटिव सेंस में लेती थी कि अच्छी बात है पूरी फैमिली में मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। तो फिर भी मेरा सीखने का ना वो जो एक पैशन था वो कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। उसके बाद कि मेरे को बचपन में टैलेंट तो था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बिना किसी गाइडेंस के मुझे ईश्वर का ऐसा सपोर्ट था, भगवान का, मैं पूजा पाठ बहुत करती थी और बातें करती थी अपने परमात्मा, तो वो मुझे वो टैलेंट वो देते थे कि बचपन से मैं किताबें बहुत पढ़ती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये जो भी सुन रहा है ना इसको ध्यान से सुनिएगा। आज क्यों बच्चे हमारे पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत एक ऐसा गैजेट उनके हाथ में है जिसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी गार्बेज कहते हैं ना, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, दूसरों की वीडियो देख देख कर सिर्फ फालतू आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमारे टाइम जब अच्छा ही गैजेट्स नहीं होते थे तो हमारा खाली टाइम ना कॉमिक बुक पढ़ने में, या फिर चंपक होती थी, या फिर वो स्टोरी बुक्स होती थी ना बड़ी अच्छी अच्छी तरह की, जिसमें से मॉरल, हाँ, तो वो साबू और वो मतलब ऐसी कॉमिक्स भी होती थी, ऐसी स्टोरी बुक्स भी होती थी, वंदना ऐसी तरह की। तो वो मैं एक एक दिन में मेरे पास जो पॉकेट मनी आती थी तो वो पॉकेट मनी मैं ये किराए पे लेती थी, यानी एक शॉप थी मेरे स्कूल के पास, वहां ये रेंट पे देते थे एक रुपया एक दिन का। तो मुझे रोज के हमारा अपना थिएटर था तो ऐसी इनकम की कमी नहीं थी, फिर भी हमारे पापा हमें 5 रुपए देते थे रोज के। तो जिसमें से 3 रुपए की ना मैं कॉमिक बुक किराए पे लाती थी घर पे, और एक ही दिन में पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था, बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं वो बुक्स बहुत पढ़ा करती थी, इतना पढ़ा करती, कहीं से मिल जाए बुक मिल जाए, बुक मिल जाए, स्टोरी बुक मिल जाए। तो वो पढ़ते रहने से तब मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो राइटिंग स्किल बढ़ता गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने शायरी करना स्टार्ट किया, पोइट्रीज लिखना स्टार्ट किया, पोइट्रीज मुझे गाने की बड़ी आदत थी ना, किचन में काम करते मैं गुनगुनाती रहती थी कुछ ना कुछ। तब शायद मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी, जो परमात्मा पिता इस मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत चेंज नजर आया मेरी वॉइस में भी, तो वो इतना पहले नहीं था, पर गुनगुनाने की आदत बहुत थी। तो इस तरह गाने लिखना शुरू किया, गाने कंपोजिशन भी कब मैं करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। ये वो बुक्स पढ़ने का एक पॉजिटिव जो रिजल्ट मेरी लाइफ में आया, और वोकैबुलरी की बुक पढ़ने से वो मेरी अपनी एक डिक्शनरी मेंटेन होती गई, तो बोलने का मुझे, फिर जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होते सभी टीचर्स के पास भागते थे और मैं अपना डिबेट का कंटेंट खुद लिखती थी, यानी विदाउट कोई, और हमेशा मेरा प्राइस फर्स्ट आता था। और मैं हैरान होती थी, हमारे हिंदी टीचर बोलते थे कि सोनिया तुम्हारा कंटेंट तो जब आपको टीचर आपका कंटेंट मांग रहा है तो मतलब आपके कंटेंट में दम है। और जब मैं बात करती थी, डिबेट बोलती थी, तो तालियां बहुत बजती थी, तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ गया, है ना। इस तरह मेरे बोलने का भी जो मेरा टैलेंट है बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया ना, जिस चीज पे आप काम करते हो लगातार निरंतर करते हो, कुछ ना नहीं किया कभी जिंदगी में, ना नहीं होता मेरे से। तो जैसे कभी कुछ था कि तुमको ना अभी जैसे ऑनलाइन भी कभी क्लास लेने का मौका मिलता है तो सोनिया बहन अच्छा सब ना आपकी क्लास एंजॉय करते हैं तो अभी 1 घंटे में क्लास ले लोगे, कोई ऐसे रेडी नहीं हो, कुछ नहीं होगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो कहते थे कि मतलब हो जाए, तुम्हारी डिक्शनरी में ना नहीं होता कभी कि नहीं हो पाएगा ना, मैं रेडी नहीं हूँ। तो ना नहीं करिए, मौके के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी आपको मौका दे देगी, और वो मौका आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। हमारी सिस्टर शिवानी, ये मेरे लिए सिस्टर शिवानी रोल मॉडल है, मॉडल है कि जब उनको पहला चांस मिला रेडियो पे बात करने का तो उन्होंने ना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी तैयारी नहीं है और मैं क्या बोलूंगी, है ना, यस के साथ आगे बढ़े। और आनी तो इंटरनेशनल लेजेंड है, उनको कौन नहीं जानता, है ना। इस तरह ये मतलब मेरी एग्जाम्पल वो है, मेरे लिए रोल मॉडल वो है, कोई भी हो सकता है जो आप ना करते

0: क्यों ना, तो जिंदगी आपको हर मौके के लिए ना करने लगती है। तो वो बुक मेरे को हेल्प करी, वो जो मैं गुनगुनाती रहती थी हर समय, उसे ज्यादा नहीं सीखा म्यूजिक, मैंने साल भर ही सीखा होगा, पर फिर भी ठीक गा लेती। फिर डांस मैंने सीखा एक साल का। तो जब मैं जॉब टीचर बनी, पहले सिर्फ डांस टीचर से करियर स्टार्ट किया, और मुझे याद है कि मुझे मौका मिला कि आपने 12 बच्चों की, यानी 11, 12 के बच्चों की टीम लेकर आपने नेशनल प्रोग्राम रेड क्रॉस का, वहां आपको जाना है और प्रेजेंट करना है हमारे जीएनके को। तो जीएनके से सिर्फ हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ था जहां मैं जॉब करती थी, और मैं ना नहीं किया कि मैं कैसे जाऊंगी कैसे नहीं, फिर भी पूरी हिम्मत से ठीक है राइट सर आई गो। तो पूरा अरेंजमेंट करके गई 12 बच्चों की टीम के साथ, उनकी संभाल करना एज ए काउंसलर, और रोज हमें एक नया कंपटीशन आता था कि ये 2-3 घंटे में आपको बच्चों, अपने 2 बच्चों को प्रिपेयर करके लाओ, आज डिबेट लाओ, आज डांस लाओ, आज सिंगिंग लाओ, तो आज आपको पोइट्री सेक्शन करना है ना, ऐसे ऐसे हमारे 12 कॉम्पिटिशन जो थे वो 5 दिन का था हमारा प्रोग्राम, जिसमें पूरे इंडिया से हर स्टेट से स्कूल आया था एक जी। तो जब कंपटीशन पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ 5वें दिन, तो हमारा जो स्कूल था हमारा 2nd नंबर पे आया, यानी 14 अवार्ड हमें मिले थे, 14 अवार्ड, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और डिबेट में हमारे बच्चे जीते, सिंगिंग में हमारे बच्चे जीते, पोइट्री में हमारे बच्चे जीते, है ना, रिपोर्ट कंपटीशन में जीते, और मेरा जो सेक्शन था मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी, मेरा फर्स्ट प्राइज आया जबकि मुझे कोई तैयारी नहीं थी। तो वो नेशनल अवार्ड लाना, और फिर मुझे जब मैं वापस आई वो 14 अवार्ड लेके, स्कूल ने बहुत अप्रिशिएट किया और सीधे मेरी प्रमोशन हो गई कल्चरल कोऑर्डिनेटर, और फिर गवर्नर साहब ने स्पेशली इनवाइट किया हमें, वो 12 बच्चों की टीम के साथ मुझे इनवाइट किया, प्रिंसिपल भी गया, चेयरपर्सन भी गया, और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। वो आज भी मेरे पास फोटोग्राफ है, वो मेरी जिंदगी का ना एक बहुत खुशनुमा पल था, जब गवर्नर साहब ने स्पेशली हमारे लिए फीस्ट रखा था शाम को और सम्मानित किया बच्चों को और मुझे। तो इस तरह नेशनल अवार्ड के साथ इंटरनेशनल अवार्ड भी मैंने जीते बिना किसी ट्रेनिंग के, मतलब मैंने कोई ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली, सिर्फ मैंने सीखा जिंदगी से, अपने आप से, किताबों से, और कभी कुछ सर्च करके मिल गया या कोई एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखने की लगन। तो मुझे जो आज मेरी जिंदगी में जो भी अवार्ड्स हैं या जो मैंने सीखा या मेरे को बहुत अप्रेस, मुझे तो लकी चाम भी कहा जाता था, लकी चाम है जिस कॉम्पिटिशन में होती, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी बहुत पॉजिटिव रहती थी मैं कि ये मुझे बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट देना है, उसके लिए मेहनत करती थी। जैसे मेरे बच्चे भी किसी कॉम्पिटिशन में जाते थे तो टीचर्स पूछते थे हु रोट दिस कंटेंट फॉर यू, तो कहते माई मॉम, तो कहते थे आई ग्लैड टू मीट योर मॉम, तो टीचर बोलते थे आपकी मम्मा से अच्छी, वही सोनिया है जो इतना अच्छा कंटेंट। फिर ऐसे आरजे बनने का हुआ, मैं गई वहां पे तो मुझे बहुत सारे मौके मिले वहां शो करने के कि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मेडिटेशन के बाद जो गुण मुझे ईश्वर ने दिया उस परमात्मा का तो मैं जितना धन्यवाद है, पर परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, है ना, कहते ना मैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम बढ़ाऊं, ये गलत नहीं है, ईश्वर करता है मदद, वो 100 नहीं 1000 कदमों से आपके साथ है, पर आप एक कदम तो उठाओ, आपको जुनून तो लाओ अपने जीवन में करना है कुछ, भाई करके ही रहना, क्यों नहीं करना है, कर सकते हैं। छोटी हाइट है तो क्या हो गया ना, छोटी आंखें हैं तो क्या, नाक टेढ़ी है तो क्या हो गया, रंग काला है तो क्या हो गया, नहीं, इन सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी। अगर पर्सनैलिटी फेस पे जाते तो महात्मा गांधी का इतना नाम नहीं होता, महात्मा गांधी चेहरे से नहीं बने, चलन से बने उन्हीं की तरह। तो ये मेरा छोटा था, थैंक यू इस क्वेश्चन को मेरे लिए पुट करने का और इस खूबसूरत बातचीत का।
1: जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है, और जो आपने विस्तार से अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की आपने और किस तरह से वो चीजें आपके बीच में आई, तो जीवन का यही खूबसूरती है कि जीवन आपको मिला है उसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी जैसे कि हमने अभी बहुत सारी कलाएं हमारे पास ईश्वर ने देकर रखी हैं, उसको सिर्फ आप एक बार जो है कागज पेन से उतारने की कोशिश कीजिए, और उसे कागज पेन ये सेकेंडरी है, लेकिन आप उसको पहले अपने मन में लाइए, अपने भावनाओं में लाइए, अपने इमोशंस में एक

0: अच्छे व्यक्ति का इमेज जो है आपको क्रिएट करना है। जब तक आप अपने इमोशंस और अपनी भावनाओं में खुद अच्छे नहीं बनेंगे तो बाहर कितना भी आप अच्छा बोल के या फिर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उतना असर नहीं करेगा। इसलिए गांधी जी की वो कहानी शायद आपको याद हो कि बच्चा गुड़ खाता है, माँ उसको लेके जाती है कि ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसको मना करना है। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप आ जाओ 5 दिन के बाद, या कुछ ऐसी स्टोरी है, बोलते हैं 21 दिन के बाद आप आ जाओ। तो फिर 21 दिन के बाद सिर्फ गांधी जी ये बोलते हैं कि भाई आप गुड़ मत खाओ, गुड़ खाना ठीक नहीं है। तो माँ आश्चर्य हो जाती, बोले ये बात तो एक दिन पहले ही बता देते उसी दिन तो इतना दिन क्यों लगा है। तो उनका कहना ये था कि मैं भी खाता था गुड़, तो मैंने बंद किया तो मैं बच्चे को बोल पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जो हमारी पर्सनालिटी के साथ हमें एडिशनल करना है। कई बार हम लोग जो है वो चीजें मिस कर देते हैं और इसके वजह से लोग आज देखिए आपके पास व्हाट्सएप है, गूगल है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास चारों तरफ है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आदमी इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आदमी के
1: वही है ना, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, वही तो कचरा भरने
0: की बहुत जरूरी है। तो वो चीजें जो है आपको यहाँ इम्पोर्टेंट रोल करता है कि आपको कैसे अपने पर्सनालिटी को इम्प्लीमेंट करना है, डेवलप करना है। तो यहाँ अप्लाइड साइंस काम करता है कि आपने कितना ज्ञान को अपनी लाइफ में यूज किया है या धारण किया है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर सोनिया जी से बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

वक्त गुजर रहा है तेजी से, वक्त गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है कोने को, जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और आशा करूंगा कि आपको जो बातें आपने सुनी और किस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में भी हमने देखा अच्छी एग्जांपल के साथ। सोनिया जी खुद अपना उदाहरण देकर हमें बताई है। तो जाते जाते मैं सोनिया जी चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपने पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे डेवलप करना है, उनके लिए क्या टिप्स एंड टेक्निक बताएंगे आप?
1: जी बिल्कुल, पर्सनालिटी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए करियर, क्योंकि करियर से पहले पर्सनालिटी आता है। यानी कि आपका पर्सनालिटी सिर्फ ये नहीं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं ना, पर्सनालिटी का मतलब है ग्रो करना अपने वर्चुअल हैबिट्स को, अपने आंतरिक गुणों को और अपने स्किल्स को बढ़ाना, ये पर्सनालिटी है। तो जैसे एक इंसान तभी हटके लगेगा ना जब कुछ हटके सीखेगा, तो है ना। तो 10 लोग बैठे हैं, एक पार्टी में बैठे हैं, यू नो, जैसे किसी प्रोग्राम चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उसमें एक ने अपने गले को तैयार किया है, अपने गले पे जरूरी नहीं है उसकी आवाज बड़ी मधुर है। कई ऐसे हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं है पर सुरताल और लय का बहुत उनको ज्ञान रहता है ना, तो जहां भी गाते हैं समा बांध देते हैं। तो 100 लोगों के बीच में जो होता है ना, तो कैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, होता ना, वो डिफरेंट लगता है। ऐसे कोई एक प्रोग्राम है, किसी ने नृत्य कला सीखा है ना, उसने तो बिना सीखे तो नहीं उतरा होगा वो, तो तैयारी के साथ आया है। तो जब उसे देखते हैं तो तालियों से कितना उसका वेलकम होता है, तालियों से कितना अप्रिसिएशन मिलता है जो उसे मोटिवेट करता है, वो और आगे बढ़ता है, उसके रास्ते खुलते जाते हैं। तो इस तरह किसी कोई पेंटर है ना, पेंटिंग कॉम्पिटिशन में एक मास्टरपीस बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, नहीं भी जीत हो तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आप पहली बार में ही फर्स्ट आ जाए, पर निरंतर प्रयास से जीत दूर नहीं होती आपसे। दूसरा है कि पर्सनालिटी आपके, ये तो हो गया बच्चों की बात, पर्सनालिटी बड़े लोगों के लिए क्या है, आपका व्यवहार। जैसे देखो, आप उस फेज से निकल गए, आपका करियर का टाइम निकल गया, पर अब बड़े हो गए हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो,
0: बिल्कुल
1: तो वो उनकी पर्सनालिटी तो उनका आंतरिक

0: व्यवहार है, उनका बिहेवियर है। तो जैसे कहावत आपने सुनी होगी ना, आपको याद आए, तो जहाँ गुड़ होता है वहाँ पे मक्खियाँ आती है ना,
1: वैसा
0: सुना है ना आपको। तो मतलब उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब मक्खियाँ हो गई और आप गुड़ हो गए, सिर्फ कहावत
1: है ना।
0: तो बोलेगा तो क्या मतलब आपका, बोल यू मीन हम मक्खियाँ हैं? मतलब शहद की मक्खियाँ तो यूजफुल होती है ना, इसमें भी पॉजिटिव विचार लाया जा सकता है, शहद में काम आती है। यानी मीठा होता है वहाँ अट्रैक्ट है, मीठे में एडिक्शन भी होता है। आप कुछ मीठी चीज खा तो माइंड के ना हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो हमारा बार बार मीठा खाने का। तो इसका मतलब जब आपका व्यवहार मीठा होगा तो आपके आसपास लोगों की भीड़ लगने में टाइम लगेगा क्या? आजकल जो सिनेरियो है ना, यही है, कितना पेन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, ये नॉर्मल है। पर मैं खुश रहता हूँ, खुशहाल हूँ, मेरे पास तो खुशी की कमी नहीं, ये नॉर्मल नहीं लगता किसी को, नहीं लगता ना। तो इसलिए करिज्मेटिक पर्सनालिटी के लिए सबसे पहले आपका बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के बीच में तभी अच्छे लगोगे ना जब आप किसी का भी गम पी जाओ, है ना। कोई परेशान भी आपके सामने आए वो हंसता हुआ जाए, इसको कहते हैं पर्सनालिटी। ये नहीं कि आपने या आपने 10,000 की घड़ी पहन ली, आपने 1,00,000 रुपए का मोबाइल पकड़ा, तो उसमें वो किसी के लिए क्या यूजफुल है? है किसी के लिए? कोई आपको अप्रिशिएट करेगा? आपने 2,00,000 का मोबाइल लिया, ठीक है, ओके, पैसा है, ले लिया, है ना, पर्सनैलिटी नहीं है। पर आप कितने रोते हुए लोगों को हंसा सकते हो, गाइड कर सकते हो, अगर पैसा है तो हेल्प भी कर, है ना। अगर आपकी आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी बॉडी से हेल्प कर सकते हो, पैसा अच्छा है तो कभी किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हो, वो भी पर्सनालिटी है आपकी। आज इतने बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जैसे अंबानी जी हैं, उनकी वाइफ कितनी चैरिटी करती हैं, नीता अंबानी जी, हर एक सोशल जो सर्विस में है उनका नाम रहता है। जैसे वो है मूर्ति की वाइफ है जो, वो भी काफी चैरिटी करते हैं ना, गांव गांव जाती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मूर्ति जी जो इंफोसिस के मालिक हैं उस कंपनी के, आज उनकी वाइफ का कितना नाम है ना, सोशल मीडिया पे छाई रहती है। वो पर्सनालिटी उनकी बॉडी से नहीं बनी, वो पर्सनालिटी उनकी चैरिटी उनके गुड बिहेवियर से बनी। वो जाती हैं दूसरों को चैरिटी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं या फिजिकली स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं, किसी को गिरे हुए को किसी की मदद करना, प्यार यानी आपके व्यवहारता लाइए। सबसे बड़ा गुण है मधुरता ना, तो परमात्मा कहते हैं ना कि मिश्री के जैसे बन जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इतना मिश्री बन जाओ ना कि कोई आपको मुख मीठा हो जाए उसका। तो मीठा व्यवहार सबको अच्छा लगता है, कड़वे बोल दुनिया को आपसे दूर कर देते हैं। पर समझदारी से भी चलिए, क्योंकि आजकल जमाना चापलूसों का भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: है ना, तो हर चीज को युक्ति युक्त होकर चलना है। तो फूल नहीं जाना है, अरे मेरे चार लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, तुम बहुत मीठा बोलते हो,
1: बस
0: फूल जाते हैं कुछ लोग ना, तो ये उतना फूल नहीं जाना है। पर हाँ, जहाँ आपकी जरूरत है वहां पर आपको हाथ अपने जरूर देने हैं। कहते हैं ना, हैंड्स दैट हेल्प्स आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रेज, यानी वो जुबान जो आपके लिए उससे बेहतर है आपके मदद के लिए आगे बढ़े।
1: जी,
0: तो वो बड़े लोग अगर आप किसी ना किसी की किसी तरह से मदद कर, ये आपकी पर्सनालिटी।
1: सोनिया जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, और बहुत ही प्यारा सा संदेश भी आपने दिया। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करूंगा आपको आज का एपिसोड सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और करियर से ज्यादा हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि इसे डिले मत कीजिए, करियर से पहले इसके ऊपर काम कीजिए और उसके बाद आप जो है उन पर काम कीजिए। और करियर तो आपका बनेगा ही, जब आपने अपना पर्सनालिटी अच्छा बनाया तो करियर भी अच्छा बन ही सकता है। एक बार हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सोनिया जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और आप सभी विद्यार्थी मित्रों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच।
2: ये सूरज है।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आला आला आला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव सरसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हां, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयाम

0: से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहां हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है शुभ भावना और शुभकामना। हमारे जीवन में विचारों और भावनाओं का बहुत महत्व होता है। हमारी सोच और भावनाएं न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं और उसे शुभ भावनाएं देते हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जीवन को खुशहाल और आनंदमयी बनाता है। शुभ भावना का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अच्छा सोचना और उनके प्रति मंगल कामना करना। जब हम किसी के प्रति स्नेह, आदर, करुणा और सहयोग की भावना रखते हैं, तो यह शुभ भावना कहलाती है। यह भावना हमें न केवल मानसिक रूप से शुद्ध और शांत बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मधुर बनाती है। शुभ भावनाएं हमें नकारात्मकता से दूर रखती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। शुभ भावना का विस्तार केवल हमारे परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और विश्व के प्रति हो सकती है। यदि हम हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावनाएं रखें, तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति का वातावरण बनेगा। शुभ भावना का अर्थ होता है किसी के सुख, समृद्धि, सफलता और अच्छे भविष्य की कामना करना। जब हम अपने प्रियजनों, मित्रों या किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं, तो इसे शुभ कामना कहते हैं। भारतीय संस्कृति में शुभ कामनाओं का बहुत महत्व है। त्योहारों, व्यवहार, जन्मदिवस और अन्य विशेष अवसरों पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, जिससे प्रेम और स्नेह का संचार होता है। शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह हृदय से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम सच्चे मन से किसी के लिए शुभकामना करते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचती है। शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाने के अनेक तरीके हैं। सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखें, दूसरों की सफलता और खुशी में सच्चे मन से प्रसन्न हों, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की भावना न रखें, नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करें जिससे मन शुद्ध और सकारात्मक बने। छोटे छोटे अवसरों पर अपने प्रियजनों और मित्रों को शुभकामनाएं दें। अपने आसपास के लोगों की भलाई और कल्याण की कामना करें। शुभ भावना और शुभकामना जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों में भी प्रकट होनी चाहिए। यदि हम सच्चे मन से सभी के लिए शुभकामनाएं रखें और शुभ भावनाएं रखें, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि संपूर्ण समाज भी प्रेम, शांति और सद्भाव से भर जाएगा। ये था मेरा आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
3: सबके कदम देखो राम पम पम।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज़।

0: जुन्या गाड्यांचा तोच सुगंध तीच नशा
1: पहला नशा पहला खुमार
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लुटा
2: नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर
3: ओम शांति
2: वेलकम टू बीइंग डिवाइन
3: थैंक यू
2: आपने सोल की बात की थी आत्मा की कि हर इंसान को मैं भी अपने आप को सोल देखूं और दूसरे को भी देखूं तो थोड़ा सा हार्डली एक सेकंड के लिए आता है फिर मतलब एक घंटे में एक मिनट भी नहीं हो रहा है
3: एक घंटे में एक मिनट इज अ ह्यूज अचीवमेंट ह्यूज वेरी गुड कोई बात हमें भूल चुकी थी जब हम उसको फिर याद दिलाते हैं अपने आप को और याद करते हैं तो वो एक घंटे में आधा घंटा नहीं याद रहने वाली है
2: नहीं तो फिर अगेंस्ट द नेचर लग रहा है ना बात करने में फिर ऐसा लगता है आर्टिफिशियल हो गया एक मिनट के लिए फिर जब मैं बॉडी देखता हूँ तो नॉर्मल लगता
3: तो नॉर्मल लगता है यस क्योंकि इतने समय से जो नॉर्मल था जो हमने सोचा था सही है तो वो ही नॉर्मल लगेगा वो हमारा कम्फर्ट जोन था वो हमारा बिलीफ सिस्टम था वो ही हमारे लिए सत्य था वो हमारा डीप इनग्रेन्ड जीवन जीने का तरीका था इट इज एज इफ समवन कम्स एज शेक्स अस फ्रॉम आर ओरिजिनलिटी बिकॉज दैट इज व्हाट वी थॉट वाज आर ओरिजिनलिटी
2: जिसे कोई बोले कि ड्रीम इज रियलिटी और जागृत अवस्था जो है इज अ ड्रीम इतना ऑपोजिट हो गया
3: कोई भी चीज जो हमने मानी है जीवन भर वैसा जिया है और सिर्फ एक जन्म ने अनेक जन्म वैसा जिया है दूसरी चीज हमें याद ही नहीं थी सोचा ही नहीं था यहां तक कि जब हम आत्मा वर्ड भी यूज करते थे ना
2: सोल तो मरने के बाद वाला आत्मा को बोलते थे
3: मरने के बाद भी बोलते थे हाँ तब भी बोलते थे लेकिन अगर अदरवाइज भी करते थे ना तो हम कहते थे मेरी आत्मा
2: हाँ मेरी आत्मा को शांति दो
3: हाँ उसकी आत्मा को शांति दो या कोई सपोज हमें काम करना था इन विच वी यूज टू से कि मेरी कॉन्शियंस अलाउ नहीं कर रही मुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए तुम कहते थे मेरी आत्मा नहीं अलाउ करती मुझे नहीं करना चाहिए ये मेरी आत्मा अलाउ नहीं करती मुझे नहीं करना चाहिए तो मेरी आत्मा बिकेम कि मैं somebody else ये मेरी आत्मा इतना कंफ्यूजन था
2: ये मैं पूछना चाहूंगा कि जो अंदर वाला कभी कभी थॉट देता है कि भाई ये करो या नहीं करो तो वो क्या है वो आत्मा है या कोई और
3: वो अंदर वाला कोई है ना
2: हाँ तो मुझसे तो कई बार बोलता है कि ऐसा नहीं करना लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ
3: वो आवाज मैं हूँ
2: गाइडेंस रहता है
3: वो मैं हूँ ये शरीर को हम यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कैसे यूज करना है ये अलग बात है कि बहुत समय से हम उसको भूल गए हैं तो हम इस कर्म इंद्रियों से सब कुछ एक ऑटोमेटिक मोड में करने चले गए तो हमने सोचा ये सब कुछ कर रहा है वो करवा रहा है वो अवेयरनेस भूल गई थी लेकिन अंदर एक आवाज ये करवा रहा है ना इस शरीर के द्वारा ये मैं एनर्जी इस शरीर के द्वारा कर्म करवा रही हूँ ना
2: तो मैं तो सोल हूँ ना
3: हाँ तो करने वाला कौन
2: तो जब मैं बुरा काम करता हूँ तब भी सोल ही हूँ
3: यस यस ये
2: लड़ता झगड़ता करता
3: मैं ही हूँ मैं अलग अलग नहीं मैं ही हूँ
2: तो मैं कंफ्यूजन में था कि सोल सिर्फ अच्छे काम करता है प्योर पवित्र नॉलेज
3: सोल मतलब एनर्जी एनर्जी जो इस शरीर द्वारा हर काम करती है
2: हाँ
3: वो काम प्योर एलिवेटेड हो सकते हैं वो काम एक क्राइम हो सकता है इट डजेंट मैटर उससे चेंज नहीं होती बात कॉन्शियसनेस क्या है अंडरस्टैंडिंग क्या है वो एनर्जी है जो वो काम करवाती है कोई भी काम वो करवाए वो जो करवाने वाला है वो मैं हूँ
2: तो एक्चुअली वो करने वाला मैं हूँ हो गया
3: हाँ
2: करवाने बोलेंगे लगे
3: करवाने वाला मतलब इस शरीर द्वारा करवाने वाला इस हाथ द्वारा कुछ करने वाला
2: तो इस शरीर द्वारा वो कर रहा है
3: यस वो कर रहा
2: मैं कर रहा
3: मैं कर रहा
2: आई द सोल एम डूइंग दिस
3: आई द सोल

0: I'm doing okay. this. अब just because the word is sounding new, कि हमें लग रहा है कि नहीं ये बहुत difficult है. No, हम तो सारा दिन वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन aware नहीं थे. अब awareness से जिएंगे, क्योंकि उस awareness से जीने से जीवन जीने के तरीके बदल जाएंगे.
1: तो आपकी जो wisdom है, आपका जो intuition है, आपके soul की qualities है, वो आपको इशारा भी करती हैं.
0: Yes.
1: लेकिन फिर भी मैं नहीं सुनता हूँ.
0: हाँ.
1: तो फिर मैं क्यों नहीं सुनता हूँ?
0: जब मुझे याद है कि मैं मालिक हूँ, ये मेरी कर्म इंद्रियां हैं, मैं इनको चलाता हूँ, तो हम बहुत प्यार से इन कर्म इंद्रियों को चलाएंगे. लेकिन हमें अवेयरनेस भूल गई कि मैं मालिक हूँ. और हमने सोचा कि इन कर्म इंद्रियों को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए. हमने उसमें ढूंढना शुरू किया. मालिक ही भूल गया कि मैं इनको चलाने वाला हूँ.
1: इन कर्म इंद्रियों द्वारा मैं टेस्ट करता हूँ, खाता पीता हूँ, जो भी करता हूँ. लेकिन
0: करता.
1: मैं समझ रहा हूँ कि कर्म इंद्रियों को चाहिए.
0: यस,
1: बॉडी की रिक्वायरमेंट
0: एंड बॉडी की रिक्वायरमेंट. व्हेन आई गिव इट, देन आई विल फील नाइस.
1: कई लोग इसीलिए बोल देते भाई ये तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, खा लो कुछ नहीं होता. ये तो बॉडी की रिक्वायरमेंट, ये तो प्रोटीन है ना. नॉन वेजिटेरियन तो क्या हुआ बॉडी की, मैं तो नहीं कर रहा हूँ. नाउ आई एम सो क्लियर,
0: आई चूज, आई डिसाइड,
1: इट्स माई थिंकिंग, माई रिक्वायरमेंट, माई एवरीथिंग, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब
0: everything.
1: कुछ भी किसी पे डाल नहीं सकते.
0: माई डिजायर, दैट्स द आई.
1: तो एस्केप होने की चांस ही नहीं. अब तो
0: एस्केप होने से क्या
1: escape
0: हुआ?
1: बोलते हैं ना भाई दूसरे, इसने बोला.
0: एस्केप होने से क्या हुआ? मालिक ने अपनी शक्ति
1: मतलब
0: और
1: बहाना बनाने का.
0: हाँ, तो बहाना देने से क्या हुआ? मालिक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी ना. इट्स लाइक इफ यू आर द हेड एंड आपके अंदर 100 लोग काम करते हैं. आप हेड हैं तो 100 लोग आपके अंदर काम करने चाहिए ना सिस्टम से. लेकिन जब वो 100 लोग अपना ही अपने हिसाब से करने लगे, मालिक की सुनते नहीं, मालिक उनको संभाल नहीं पा रहा, तो मालिक क्या करने वाला है? मैं क्या करूं, मेरे लोग तो मेरे कंट्रोल में नहीं चलते. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर. जितना हम भूलते गए कि मैं हूं, ये मेरी कर्म इंद्रियां हैं, मैं इनको चलाने वाली शक्ति हूं, जितना हम ये भूलते गए, ये कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल से बाहर होती गई.
1: कर्म इंद्रियों को भी आदत पड़ जाती है.
0: राइट. अगर मैं मालिक हूँ ये मुझे याद है, तो मैं आत्मा कर्म इंद्रियों को चलाऊंगी.
1: ओके, तो कर्म इंद्रियां भी मेरे से पूछ के मेरा काम करे कि आंख भी इधर क्यों गई.
0: हाँ,
1: मतलब इतना कंट्रोल होना चाहिए. मेरा हाथ मुंह में क्या गया?
0: यस, इफ आई एम अवेयर,
1: आई हैव टू कीप एन गिव एन ऑर्डर टू माई कर्म इंद्रिया.
0: यहाँ तक कि ये मैंने क्या सोचा,
1: ओहो मैं तो खाया लेवल पे था और देखा.
0: ये 5 कर्म इंद्रियां बाहर है और सूक्ष्म इंद्रियां अंदर है. तो ये 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा ही अगर हमें अवेयरनेस नहीं थी, तो अंदर की अवेयरनेस हमें कैसे रहेगी? तो अगर हम अवेयरनेस भूलते गए, मतलब हम उस चीज के ऊपर अपना कंट्रोल खोते गए, तो ये चीजें मेरे कंट्रोल में चलने की बजाय ये ऑटोमेटिक मोड में चली गई. अब मैं कर्म इंद्रियों को नहीं चला रही थी, कर्म इंद्रियां मुझे चलाने लगी.
1: वाह, करेक्ट है.
0: कर्म इंद्रियां हमें चलाने लगी है अब. बिकॉज वी लॉस्ट आवर पावर ओवर समथिंग दैट वाज आवर्स.
1: लाइक इन एनी ड्रग अब्यूज.
0: हाँ, लाइक इन एनी ड्रग अब्यूज.
1: एक लिमिट तक आप उसको ले रहे हैं, उसके बाद वो आपको कंज्यूम करने लगे.
0: ले रहा है.
1: फिर आपके आप उसके कंट्रोल में
0: है. यस, पहले वो आपके कंट्रोल में था. अब हम उसके कंट्रोल में हैं. मतलब अब हमारा उसके ऊपर कोई संयम नहीं रहा, क्योंकि हम उतने कमजोर हो चुके कि हमने अपना कंट्रोल खो दिया. बट इट डजेंट मैटर, वी कैन गो बैक. वी कैन गो बैक. यस, कम्प्लीटली. सिर्फ एक थॉट से, मैं आत्मा मालिक हूँ. जो मैं चूज करूं, जो मैं डिसाइड करूं, बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट फॉर मी, वो ही इस शरीर के द्वारा होगा.
1: मैं आत्मा हूं और ये कर्म इंद्रियां मेरे अनुसार चलें. तो जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं फैमिली का हेड हूं और सब मेरी सुने, मैं यहाँ का बॉस हूं मेरी सुने, या मैं आर्मी का चीफ हूं मेरी सुने, उस तरह अगर मैं यहां करूं तो कितना मजा आ जाएगा.
0: मैं इसका हेड हूं.
1: हाँ,

0: मेडिटेशन रोज हमें करना है, क्योंकि मेडिटेशन में मैं आत्मा अपने आप को सारी अपनी भूली हुई चीजें याद दिलाने वाली हूँ.
1: भूली हुई मीन्स?
0: ये मुझे भूल गया था ना, अच्छा, मैं हेड हूँ.
1: द रियलिटी.
0: यस, ये मुझे भूल गया था कि ये मैं इसका मालिक हूँ. अब अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा हमसे, क्योंकि नया है ना, एकदम से नहीं हो रहा, रोज अगर हमने बार बार अपने आप को सिर्फ ये लाइन भी कही, मैं इस मुख का मालिक हूँ, ऐसे ही नहीं इस मुख से कुछ भी निकल सकता. जो मैं डिसाइड करूं सही है, वो ही सिर्फ ये मुख से निकलेगा, वो ही ये मुख से खाया जाएगा, वो ही इस मुख से बोला जाएगा. ऐसे नहीं हो सकता अब कि कुछ भी सामने आया और मैंने खा लिया कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं.
1: मेरा अपने ऊपर नहीं है सिस्टर. अभी हमारा जो स्टाफ है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है.
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो है हमारा
1: फैमिली. जो भी जिस चीज के आप हेड थे, आप वो आपके हेड बने हुए हैं.
0: कोई बात नहीं.
1: ऐसा लगता है जैसे राजा को प्रजा ने जेल में डाल दिया.
0: yes.
1: तो अब राजा ये
0: के ऊपर, राजा के ऊपर इन सब प्रजा का कंट्रोल हो गया है.
1: वही तो प्रॉब्लम हो रहा है,
0: क्योंकि राजा भूल गया, लेकिन अब राजा फट से याद आ गया ना. कोई अगर भूल जाता है कि वो हेड है, तो फिर तो उसको सेवक ही चलाएंगे ना. लेकिन जैसे ही उसको याद आया, इट विल टेक बैक इट्स चार्ज ऑल ओवर अगेन.
1: इजंट इट डिफिकल्ट?
0: इट्स वेरी इजी.
1: मेडिटेशन
0: आज से एक ये लाइन पहले हटाते.
1: वीकनेस वाली?
0: नहीं, वीकनेस नहीं है, इट्स वेरी सूक्ष्म प्रोग्रामिंग है. अपने आप को क्या कहा, वेरी डिफिकल्ट.
1: ये वीकनेस ही है ना?
0: ये वीकनेस नहीं है, ये अफर्मेशन है जो हमें अलग डायरेक्शन में ले जाएगी. फिर वेरी डिफिकल्ट ना, वेरी डिफिकल्ट ना, वेरी डिफिकल्ट ना.
1: सिस्टर ये भी तो मैंने सुन सुन सुन सुन के ही बोला आज. इजियर सेड देन डन,
0: इजियर
1: सेड देन डन. बार बार लोग बोलते अरे ये तो किताबी बातें हैं. बचपन से ही प्रोग्रामिंग है माइंड की, इसीलिए आज निकली देखा मुझसे.
0: इसीलिए प्रोग्रामिंग को ही तो चेंज करना. अब एक छोटे बच्चे को कैसे एबीसीडी सिखाते हैं, उसको कुछ नहीं आता है. उसको कुछ नहीं आता है. और ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले दिन आप बैठे, आपने उसको ए टू जेड सुना दिया और उसने भी ए टू जेड फिर रट के पूरा बता दिया. इट्स वेरी इजी. ऐसे तो नहीं होने वाला है. ए ए ए करते ही बहुत दिन लगेंगे.
1: ए बी सी तीन अक्षर में टाइम लग जाता है.
0: टाइम लग जाता है. उसमें भी वो ए कैसे बोलेगा, फिर आप उसको फिर सिखाएंगे. अभी तो ए है सिर्फ, अभी तो उसने पूरी वोकैबुलरी, पूरी लैंग्वेज सीखनी है, पूरी लैंग्वेज सीखने वाला है.
1: पेशेंस रहता है और प्यार सिखाते हैं.
0: कितने टाइम में एक बच्चा एक लैंग्वेज सीखता है?
1: दो तीन साल में.
0: दो तीन साल की एज में एक बच्चा कम से कम नहीं तो दो लैंग्वेजेस तो बोल रहा होता है. एंड वो क्या क्या सीख रहा है, वो एक सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीख रहा है, वो पूरी दुनिया के बारे में सीख रहा है. वो सिर्फ फैन वर्ड नहीं सीखता है, वो ये भी सीखता है ये फैन है. लर्निंग एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड इन टू ईयर्स.
1: वो अपनी चलाता नहीं है ना, वो मानता है, वांट है, उसकी डिजायर है, माँ बाप की सुनता है और बिलीव करता है. अच्छा ये ए है.
0: विच मीन्स अब हमें क्या करना है,
1: हम मान नहीं रहे ना किसी की.
0: हम क्या नहीं मान
1: रहे, हम बोलते जा रहे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है.
0: तो इसलिए वो लाइन बाहर.
1: डिफिकल्ट बोलना ही नहीं मानने वाली बात हुई ना.
0: एक बच्चा नहीं बोलता डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि डिफिकल्ट क्या होता है. वो इनोसेंस है. हमें भी अब उसी इनोसेंस से चलना है कि हाँ, आई एम रेडी टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न. क्यों? बाय लर्निंग माई होल क्वालिटी ऑफ लाइफ विल चेंज, माई क्वालिटी ऑफ मेनी मेनी लाइव विल चेंज.
1: आपकी बात सुन के उम्मीद में ही खुश हो रहा हूँ मैं.
0: तो इट्स डिफिकल्ट आउट. ये मुश्किल है नहीं, क्योंकि जैसे ही ये मुश्किल है कहा, बैरियर डाल देते हैं हम अपने लर्निंग पे. वो ही प्रोग्रामिंग जो हुई हुई है उसको रीअफर्म कर देते हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, सारी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है चेंज करके एक नई प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं. तो कहीं भी गलती से भी पुरानी प्रोग्राम को रीअफर्म नहीं कर देना है. तो इट्स डिफिकल्ट आउट, मुश्किल है आउट, होता नहीं है आउट, मैं कर नहीं पाता ये लाइन आउट.
1: कई बार बोलते हैं ना लोग कि इसको फॉरगिव कर दो, बी नाइस. बोलता मैं संत थोड़ी हूं.
0: तो ये लाइन आउट. संत कौन है? संत वो है जिस आत्मा को याद है कि मैं कौन हूं.

0: This is a nice line.
1: Sant wo hi
0: nice
1: hai.
0: Nice definition.
1: Sant wo hi hai. Sant wo hai. वो आत्मा जिसको याद है कि मैं आत्मा हूँ और जैसे ही उसको याद है कि मैं आत्मा हूँ उसकी क्वालिटीज वो वाली रेडिएट हो रही है. अब उस आत्मा ने ये रोल लिया है कि मैं समाज में ये मैसेज लेकर जाऊं, तो हमने उनको कहा संत. सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वो सिर्फ आत्मा है जैसे हम आत्मा है, वो भी आत्मा है. हम भूले कि हम आत्मा है, उनको याद आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो वो क्वालिटीज उनके अंदर वाइब्रेट हो रही है. रोल उन्होंने कौन सा चूज किया? रोल उन्होंने चूज किया कि हम समाज में इसका और मैसेज लेकर जाएंगे, तो हमने उनको लेबल दिया संत. अब आत्मा हूं ये याद होकर अगर हम बिजनेस करने का रोल प्ले करते हैं, पॉसिबल?
0: कैसे कर सकते? दो दो हो गया ना फिर.
1: दो दो कैसे हो गया?
0: दो रोल हो गया.
1: दो रोल कैसे हो गए? मैं आत्मा हूं, बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहा हूं, तो रोल कितने हुए?
0: क्योंकि अभी तो मैं आत्मा नहीं हूं ना, अभी तक तो बॉडी में ही हूं.
1: मैं बॉडी में ही रहने वाला हूं.
0: बॉडी कॉन्शियसनेस में ही होना.
1: वो कोई बात नहीं. कॉन्शियसनेस रोल एक ही बिजनेसमैन का.
0: ठीक है.
1: वो आत्मा ने रोल प्ले किया जिसको हमने टाइटल दिया संत. संत वॉज बेस्ड ऑन द रोल. रोल गिवन टू अ सोल हु इज अवेयर ऑफ दैट सोल कॉन्शियस स्टेज. लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे. एक बिजनेसमैन, एक घर गृहस्थ में रहने वाला संभालने वाला व्यक्ति, एक कोई भी प्रोफेशनल सोल कॉन्शियसनेस हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि कोई संत का रोल प्ले करने वाला बॉडी कॉन्शियस हो सकता है.
0: सब कुछ हो सकता है.
1: तो रोल पे डिपेंडेंट नहीं.
0: फाइनली हम उसी पे आते हैं कि आई द सोल फिनिश्ड.
1: तो रोल पे डिपेंडेंट नहीं.
0: रोल्स तो कई प्ले कर सकते हैं.
1: रोल्स तो कितने प्ले कर सकते हैं. किस कॉन्शियसनेस से वो रोल प्ले किया जा रहा है, तो आज से कोई बहाना नहीं दे सकते अपने आप को.
0: नहीं, अब तो चांस भी नहीं है.
1: हाँ, चांस नहीं है ना. अब जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे अपने आप को आज से पढ़ाना शुरू करना है. बच्चा एक मिनट में नहीं सीखता है, लेकिन हम बच्चे को सिखाते ही रहेंगे, सिखाते ही रहेंगे, सिखाते रहेंगे जब तक वो सीख नहीं जाए. कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं सीखा है, सब सीख जाते हैं. तो हमें अपने आप को एक बच्चे की तरह एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसको एक्सपेरिमेंट में लाना, वो हमारे लिए सत्य बन जाएगा. मैं आत्मा हूं अभी ये कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, अभी वो हमारा जीवन जीने का तरीका नहीं बना. नेवर माइंड.
0: ये आपका जो होमवर्क है, एक अच्छा है टू कीप योरसेल्फ बिजी. लोग बोलते हैं ना, अभी करूं क्या मैं? फ्री टाइम में इतना समय है, चलो खेलने चले जाता हूँ, चलो इधर दोस्तों से मिलने चले जाता हूँ. ये इटसेल्फ कैन कीप यू ऑक्यूपाइड.
1: कभी भी खाली भी बैठे हो ना, सिर्फ अपने संस्कारों की चेकिंग कर लो.
0: हाँ, तो इतना होमवर्क है ना.
1: की चेकिंग कर लो, क्या अंदर चल रहा है उसकी चेकिंग कर लो.
0: इसी चिंतन में काफी टाइम निकल सकता है.
1: इसी को तो आध्यात्मिक चिंतन किसको कहेंगे? कॉन्टेम्पलेशन, अर्ली मॉर्निंग टाइम, कॉन्टेम्पलेशन एंड प्रेपरेशन फॉर द डे. जब तक ये हमारी कॉन्शियसनेस में परमानेंट नहीं आ जाता, हमें हर रोज सुबह उठकर स्पेसिफिक अपने आप को अलग टाइम देकर अपने आप को पढ़ाना है. That is meditation. कि बैठना है, यहाँ की प्रोग्रामिंग में एक नई इंस्ट्रक्शन डालनी है. सिर्फ अगर ये लाइन भी हम बार बार कहें, मैं आत्मा हूँ.
0: क्या जैसे मन बोलते बोलते बोलते खाली इसकी आदत.
1: यहाँ नहीं बोलना, यहाँ बोलना है.
0: बिलीव
1: करना,
0: एक्सपीरियंस करना.
1: There is a lot of difference between यहाँ बोलना एंड यहाँ बोलना. अगर हम इसको सिर्फ एक मंत्र की तरह बोलने लग जाते
0: हैं, मैं कह रहा था,
1: तब क्या होता है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोलता है, ये कुछ और सोच रहा होता है.
0: करेक्ट.
1: इट्स पॉसिबल कि हम यहाँ ये सोचते

你的 instrumentae， 你 sharika malik， 你 sharika chalane wali shakti ho。This body is mine. अपने आप को इस शरीर से अलग अनुभव करें। एनर्जी जो डिसाइड करती है इन आंखों से क्या देखना है,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत के अनेकों रंग हैं, अनेकों भाषाएं हैं और साथ में हैं अनेकों प्रदेश जो मिलकर निर्माण करते हैं भारत का। तो चलिए आपको ले चलते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित उस राज्य में जहां वास्को द गामा सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे और करीब से जानते हैं इस जगह के सभी पहलुओं को। चलिए चलते हैं केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है और यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित है। स्वतंत्र भारत में जब छोटे छोटे रियासतों का विलय हुआ तब ट्रावणकोर तथा कोचिन रियासतों को मिलाकर 1 जुलाई 1949 को ट्रावणकोर कोचिन राज्य बना दिया गया, लेकिन मलबार मद्रास प्रांत के अधीन ही रहा। बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत ट्रावणकोर कोचिन राज्य तथा मलबार को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का निर्माण किया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। केरल का इतिहास अपने वाणिज्य से निकट से जुड़ा है, जो हाल तक अपने मसालों के व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था। भारत के स्पाइस कोस्ट के रूप में विख्यात प्राचीन केरल ने विश्व भर के पर्यटकों और व्यापारियों की मेजबानी की है, जिनमें शामिल है ग्रीक, रोमन, अरबी, चाइनीज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इनमें से लगभग सभी ने इस भूमि पर अनेक रूपों में, जैसे स्थापत्य, व्यंजन विधि, साहित्य में अपनी छाप छोड़ी।

केरल शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। सामान्यतः कहा जाता है कि चेर स्थल और कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से केरल शब्द बना है। केरलम शब्द से ये अर्थ भी निकलता है कि वो भूभाग जो समुद्र से निकला है अथवा समुद्र और पर्वत का संगम स्थान है। केरल को प्राचीन विदेशी यायावरों ने मलबार नाम से भी पुकारा है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि केरलम यानी केरों का देश या नारियलों का देश। पौराणिक मान्यता है कि परशुराम की कुल्हाड़ी से केरल की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में लोग पहाड़ी इलाकों में रहते थे। प्राचीन प्रस्तर युग के कथियक खंडहर केरल के कुछ भागों से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन खंडहरों के बाद महाप्रस्तर स्मारिकाएं आती है जो केरल में मनुष्य के अधिवास की प्रामाणिक जानकारी देती है, जो अधिकतर श्मशान रूप में है। कूड़ाकल्ल यानी छतरी नुमा चट्टान, तोपीकल्ल यानी टोपी नुमा चट्टान, कल मेशा यानी पत्थर से बनी मेज, मुनियरा यानी मुनियों की खोटी, नन्नंगाड़ी एक तरह की कब्र अथवा पात्र जिसमें अस्थियां डाली जाती है, आदि विभिन्न प्रकार की महाप्रस्तर युगीन कब्रें खोज निकाली गई है। इनका काल ईसा पूर्व 500 से ईस्वी सन 300 तक माना जाता है। अधिकतर महाप्रस्तर युगीन स्मारिकाएं पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त, ये इस बात का प्रमाण है कि आदिकालीन अधिवास स्थान वही था। केरल में आवास केंद्रों के विकास का दूसरा चरण संगम काल माना जाता है। इसी काल में प्राचीन तमिल साहित्य निर्मित हुआ था। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक था। संगम काल सन 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक था। इस काल में भारत के अनान्य प्रदेशों से लोग केरल में आकर बसने लगे। इसी काल में वहाँ बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार भी हुआ था। ब्राह्मण लोग भी केरल पहुँच गए। केरल के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों की कुल मिलाकर 64 बस्तियाँ थी। ईसा की पहली शताब्दी में ही ईसाई धर्म केरल में पहुँच गया था। कानाई के सेंट थॉमस के नेतृत्व में सन 345 में पश्चिम एशिया के 7 कबीलों के 400 ईसाई धर्मावलंबी केरल आकर बसे, जिनसे केरल में ईसाई धर्म प्रचार को बल मिला। जिस केरल के 7 अरबों का समुद्र मार्ग से व्यापार चल रहा था, उस केरल का इस्लाम धर्म से ईसा की 8वीं शती में ही परिचित होना और केरल द्वारा उसका स्वागत किया जाना एकदम स्वाभाविक था।

प्राचीन केरल को इतिहासकार तमिल भूभाग का अंग समझते थे। केरल की निजी विशेषताओं के विकास में जो तत्व सहायक हुए उनमें मुख्य है लोगों का प्रकृति प्रेम, आवास केंद्रों का विकास, उत्पादन केंद्रों का उदय और भाषा का विकास। जब क्षेत्रीय शक्तियों के हाथ में कृषि और संसाधनों का नियंत्रण आ गया तब केरल को सामाजिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा जो अनेक पीढ़ियां तक चला। फलस्वरूप छोटी छोटी रियासतों से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप केरल का एक नया इतिहास बना जो साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास है, भाषा और साहित्य के विकास का इतिहास है, विदेशी सेनाओं के आगमन तथा उनके दीर्घकालीन उपनिवेश बन जाने का इतिहास है, जाति पाति और शोषण का इतिहास है, शिक्षा में हुई प्रगति और वैज्ञानिक क्षेत्रों में हुई तरक्की का इतिहास है, व्यापारिक प्रगति और सामाजिक नवजागरण और जनतांत्रिक संस्थाओं के आविर्भावों का भी इतिहास है। भारत में हुए किसी भी अन्य विरोध से पहले केरल के पड़ोसी राजा ने 1793 से 1805 में अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध किया। अपने राज्य के घरेलू मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में उन्होंने दो युद्ध लड़े। 1793 से लेकर 1797 तक कोट्टयम प्रबंधन के सवाल पर और 1800 से 1805 तक वायनाड पर मालिकाना के मुद्दे पर उन्होंने युद्ध किया। केरल राज्य के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे केपी केशव मेनन। जब केरल प्रदेश कांग्रेस समिति बनी तो उन्हें पहला सचिव चुना गया और 1925 में वे समिति के पहले उपाध्यक्ष भी बनाए गए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए छिड़े कई आंदोलनों में भाग लिया जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, साइमन कमीशन का बहिष्कार इत्यादि। राज्य की एक और वीरांगना थी श्रीमती एवी कुट्टीमालुअम्मा जिन्होंने खादी और स्वदेशी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सामाजिक जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपने 2 महीने छोटे बच्चे के साथ सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में हिस्सा लिया और 2 साल के लिए कारावास भी गई। उन्होंने महिलाओं को लेकर कालीकट में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया, स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। केरल के एक महान व्यक्तित्व थे ई इकंडा वारियर। महात्मा गांधी से मिलना उनके लिए एक नया दृष्टांत लाया। उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी अपनी भूमिका अदा की तथा कांग्रेस के अंतर्गत कई आंदोलनों में

केरल में जन्मे एक महापुरुष थे के केलप्पन। उन्होंने एक तरफ सामाजिक सुधार के लिए काम किया तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार से भी लोहा लिया। उन्हें केरला गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और हरिजनों के उत्थान के लिए मेहनत से काम किया तथा कई हरिजन छात्रावास एवं विद्यालय स्थापित किए। भौगोलिक दृष्टि से केरल पर्वतीय क्षेत्रों, घाटियों, मध्यवर्ती मैदानों तथा समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है। केरल नदियों और तालाबों के संबंध में बहुत ही समृद्ध है। केरल में 44 नदियां बहती हैं, जिनमें 41 नदियां पश्चिम की ओर और 3 पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। इन नदियां अपनी सहायक नदियों और उपधाराओं के साथ केरल की प्राकृतिक संपदा को बढ़ाती है। समुद्री झीलें केरल का मुख्य आकर्षण है। आर्थिक दृष्टि से भी प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी केरल राज्य के एक अंतः क्षेत्र दक्षिण भारत में माही नगर स्थित है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम है। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल का प्रमुख स्थान है। इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल राज्य में अंग्रेजी भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। मलयालम भाषा की भांति अंग्रेजी भाषा भी शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। तमिल और कन्नड़ भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषा कहा जाता है। मलयालम द्राविड़ परिवार की भाषाओं में से एक है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत है। एक मत है कि किसी आदि द्राविड़ भाषा से विकसित होकर मलयालम एक स्वतंत्र भाषा हुई और दूसरा मत है कि मलयालम तमिल तथा संस्कृत से उत्पन्न भाषा है। सीखने के लिए मलयालम भाषा विश्व की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। सभी विद्वान मानते हैं कि भाषा के परिवर्तन के कारण मलयालम भाषा का उदय हुआ। तमिल और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के साथ मलयालम का बहुत ही गहन संबंध है। साहित्यिक भाषा के रूप में मलयालम भाषा का विकास 23वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ। 23वीं शताब्दी में लिखित रामचरितम को मलयालम भाषा का आदि काव्य माना जाता है। कृषि की वैसे तो भारत के अधिकतम प्रदेशों में मुख्य भूमिका है, पर केरल राज्य में कृषि की विशेषता ये है कि यहाँ व्यापारिक फसलें अधिक उगाई जाती हैं। राज्य के लगभग 50% नागरिक कृषि पर निर्भर हैं। नारियल, रबर, काली मिर्च, अदरक, चाय, इलायची, काजू तथा कॉफी आदि का उत्पादन केरल में प्रमुख रूप से होता है। दूसरी फसलों में सुपारी, केला, अदरक तथा हल्दी आदि है। केरल राज्य में जायफल, दालचीनी, लौंग आदि मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं। चावल तथा टैपियोका का केरल की मुख्य खाद्य फसलें हैं। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं केरल के ऊपर एक सुंदर सा गीत।

आशा है ये गीत आपको पसंद आया होगा। केरल की संस्कृति वास्तव में भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल की संस्कृति भी एक समग्र और महानगरीय संस्कृति है जिसमें कई लोगों और जातियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केरल के लोगों के बीच समग्र और विविधतावादी सहिष्णुता और दृष्टिकोण की उदारता की भावना का उद्भव अभी है जिससे नेतृत्व संस्कृति का विकास लगातार जारी है। केरल ने हर चुनौती का माकूल जवाब देते हुए प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ ही पुरानी परंपराओं और नए मूल्यों का मानवीय तथ्यों से संलयन भी किया है। भारतीय उपमहाद्वीप की तरह केरल की संस्कृति का भी एक पुरातन इतिहास है जो अपने आप में महत्वपूर्ण होने का दावा करता है। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कला रूपों तक की भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं को सामान्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक

दृश्य कला और दूसरी श्रव्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत रंग कलाएं, अनुष्ठान कलाएं, चित्रकला और सिनेमा भी आते हैं। केरल की चित्रकला की अगर बात करें तो प्राचीन काल में जब से केरल की पर्वतीय गुफाओं में मनुष्य निवास करने लगे थे तब से चित्रकला की परंपरा आरंभ हुई होगी। प्राचीन गुफाओं के चित्रांकन इसका प्रमाण है। इस प्रकार के चित्र जिन गुफाओं में उपलब्ध है वे है वायनाड की एडक्कल गुफा, इडुक्की में मरयूर की एडुतले गुफा आदि। कोल्लम जिले के तेनमला की चंतरुनीवन गुफा में भी गुफा चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में प्रधान है पत्थर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गुफा चित्र और शिला चित्र। राजा रवि वर्मा भारत के विख्यात चित्रकारों में से एक थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र है। हिंदू मिथकों का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा गुजरात स्थित संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। उन्होंने लगभग 30 वर्ष भारतीय चित्रकला की साधना में लगाए। मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोलकर उन्होंने अपने चित्रों का प्रकाशन किया था। उनके चित्र विविध विषय के हैं, किंतु उनमें पौराणिक विषयों के और राजाओं के व्यक्ति चित्रों का आधिक्य है। विदेशों में उनकी कृतियों का स्वागत हुआ, उनका सम्मान बढ़ा और पदक पुरस्कार मिले। पौराणिक वेशभूषा के सच्चे स्वरूप के अध्ययन के लिए उन्होंने देशाटन भी किया था। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है कथकली, जो मलाबार, कोचिन और ट्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। 17वीं शताब्दी में कोट्टाराकरा तंबुरान ने जिस रामनाटम का आविष्कार किया था उसी की विकसित रूप है कथकली। ये रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला की नृत्य नामक रंग कला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनय प्रस्तुत करते हैं। इसमें कलाकार स्वयं न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। कथकली के साहित्यिक रूप को आटक कथा कहते हैं। गायक गण वाद्यों के वादन के साथ आटक कथाएं गाते हैं, कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। कथा का विषय भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी कथाओं को भी विषय रूप में स्वीकृत किया गया है। दोस्तों चलिए अब सुनते हैं कथकली संगीत का एक छोटा

आशा है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। केरल में अनेक प्रतिभाशाली लोगों ने जन्म लिया, उन्हीं में से एक है खेल जगत का जाना माना नाम, भारत की बेहतरीन एथलीट पीटी उषा। पीटी उषा ने कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उनकी कुछ उपलब्धियों में से है 1990 में बीजिंग एशियाई खेलों में 3 रजत पदक, 1998 में फुकुओका की एशियाई दौड़कूद प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 रजत व 2 कांस्य पदक। भारतीय खेल को उनके अनेक तथा विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। केरल में ही जन्मे ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर है। वे 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक रहे। उन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। कोंकण रेलवे श्रीधरन जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्हें 2008 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। चलिए अब केरल के त्योहारों को मनाने आपको ले चलते हैं। केरल में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर त्योहार धार्मिक है जो हिंदू पुराणों से प्रेरित है। ओणम केरला का विशिष्ट त्योहार है जो फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। ये त्योहार खगोल शास्त्रीय नव वर्ष के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ओणम केरल के लोगों के लिए इस आशा का प्रतीक भी है कि एक स्वर्णिम युग यहाँ था तथा एक स्वर्णिम युग आने वाला भी है। इस अवसर पर लोग अपने घरों का नवीकरण करवाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं और राजा महाबली जी, जो उनकी मान्यता अनुसार एक प्राचीन और समृद्ध केरल पर राज करते थे, उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सुनते हैं ओणम के ऊपर एक सुंदर सा गीत।

केरल में नवरात्रि पर्व भी सरस्वती पूजा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि का त्योहार पेरियार नदी के तट पर भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसकी तुलना कुंभ मेले से की जाती है। शबरीमला के अय्यप्पा मंदिर में इसी दौरान मगर विलक भी आयोजित होता है। भगवान अय्यप्पा की पूजा करने के लिए साधक को 41 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है तथा शुद्ध भोजन स्वीकार करना होता है, तभी ये साधना सफल मानी जाती है। वल्लम कली या नौका दौड़ केरल का अपने ढंग का अनोखा आयोजन है। पुन्नमडा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जो एक प्रतियोगिता है, इनको छोड़कर पुन्नमडा झील में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, इसको छोड़कर शेष सभी नौका दौड़ उत्सवों का कोई न कोई धार्मिक महत्व है। त्रिशूर के वडक्कमनाथ मंदिर में हर वर्ष अप्रैल में पूरम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सजे धजे हाथियों की भव्य शोभा यात्रा निकलती है और आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर एक और बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले त्योहार त्रिशूर पूरम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और रंगारंग त्योहार माना जाता है। क्रिसमस और ईस्टर जो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, ये भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पंबा नदी के तट पर हर वर्ष मरामन सम्मेलन होता है, जहाँ एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है और जहाँ मिलाद-ए-शरीफ, रमजान रोजे, ईद-उल-फितर का त्योहार भी मनाते हैं।

केरल घूमने के लिए एक आकर्षक स्थल है। पर्यटन गतिविधियों के लिए केरल में स्थायी और सफल वृद्धि के लिए अपेक्षित वातावरण पहले से विद्यमान है। पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण तत्व है प्राकृतिक सौंदर्य, सामान्य जलवायु, स्वच्छ पर्यावरण, मैत्री भाव वाले शांति प्रिय लोग हैं जो सांस्कृतिक विविधता के प्रति बेहद सहिष्णु हैं और अनूठे पर्यावरण को निर्मित करने का क्षमता रखते हैं। केरल देश में सर्वप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। समुद्र तट, गर्म मौसम, समुद्री झीले, पर्वतीय स्थल, जलप्रपात, वन्य जीवन, आयुर्वेद, वर्ष भर त्योहार तथा विविध पेड़ पौधे केरल के पर्यटकों के लिए एक अनूठा गंतव्य स्थल बनाते हैं। यहाँ गुरुवायूर आनकोटा नामक उद्यान है जहाँ 60 से 85 हाथी है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाथी उद्यान बनाते हैं। पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थल है पूर्व का विनीस कहा जाने वाला आलपुड़ा, जहाँ का इतिहास केरल के सामुद्रिक इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। आज यह अपने नौका दौड़, बैकवाटर छुट्टियों, समुद्री तटों, समुद्री उत्पादों और कॉयर उपयोग के लिए जाना जाता है। आलपुड़ा बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। विजया बीच पार्क की मनोरंजन सुविधाएं पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित करती है। यहाँ पास में एक लाइट हाउस भी है जो पर्यटकों को खूब लुभाता है। आलपुड़ा का एक अन्य आकर्षण है हाउस बोट में जल विहार करना। अगर आपको प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाना है तो केरल से बेहतर जगह कोई भी नहीं है। यहाँ का वातावरण और सुंदर परिदृश्य देश विदेश से आने वाले हर दिल को लुभा लेते हैं।

0: और आपसे ले अलविदा। एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाले स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले।
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा।
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडियो पुणेरी आवाज।
2: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
4: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति एमपी छत्तीसगढ़ से आपको स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज का हमारा विषय है पांच विकारी नर के द्वारे। तो अब हमें ये समझना है कि ये पांच विकार हैं क्या और ये नर्क के द्वार कैसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमात्मा पिता ने हम आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करने के लिए

이제 활빈 기니 내고 시아스 해전 자소선스 니에 니 형반이 덜 뺐다 해 이 인사선 부흥 기스펴발 생활 덜때 해 함 인파 물리나 선이지 ऐसे ही बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं क्या स्वयं और सर्व सर्व के कल्याण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन फेफड़ों में ले जाते हैं फेफड़े जो है उस ऑक्सीजन द्वारा उनकी सफाई करते हैं फिर नाड़ियां जो है खून को सारे शरीर में प्रवाहित करती है जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं तो हमारे सांस धीमे चलते हैं और ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंत तक पहुंचाते हैं और उससे खून की पूरी तरह साफ होकर शरीर में प्रवाहित होता है यही कारण है कि देवताएं जो हैं वो दीर्घायु होती हैं इसके विपरीत जब देह अभिमान में किसी भी प्रकार के विकार के वशीभूत होते हैं तो हमारे सांस तेज चलते हैं जो ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंत तक नहीं पहुंचा पाते परिणाम स्वरूप खून की सफाई न होना शरीर में रोगों का कारण बनता है वैसे भी देह अभिमान में विकारों का जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है और इनके जो बाल बच्चे हैं हम वो हम लोग विकारों के वश सांस की गति तेज होने के कारण जो 86,400 सांस हमें पूरे दिन के लिए मिले हैं उनसे अधिक सांस हम ले रहे होते हैं परिणाम स्वरूप अपनी आयु कम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि द्वापर युग के बाद मनुष्य का शरीर रोगी और आयु कम होती जाती है तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: तो ज्ञान की धारा कार्यक्रम में मैं जस्टिन फिर आपको स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है पांच विकार ही नरक के द्वार हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये पांच विकार जो है काम क्रोध लोभ अहंकार, इसी के कारण स्थिति काबू में नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त आज हम देखते हैं कि इन्हीं विकारों के कारण घर घर में महाभारत लगा हुआ है, अदालतों में मुकदमों की भरमार है, जेलों में अपराधियों से भी परेशानियां हैं और भरी पड़ी है जेलें। इन्हीं विकारों के कारण सरकार को अनुशासन बनाए रखने और शासन चलाने के लिए पुलिस बल पर भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा है, तब भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि इन विकारों के कारण ही दुनिया में व्यापक है। यहाँ पे हमें देखना है खुशी ही हमारे जीवन में अगर असली यही खुराक है तो इसे हमें कैसे धारण करना है। हाँ, द्वापर युग से जब आत्मा जो है आत्म अभिमानी स्थिति से गिर कर वे अभिमान बनी तो उसने अपनी पहचान खो दी। इससे आत्मा का जो पहला गुण ज्ञान स्वरूप विस्मित होकर अज्ञानता उसमें आ गई। अज्ञानता में स्त्री पुरुष जो है उनमें जो उनके भान जो है देह का आकर्षण शुरू हुआ और आत्मा ने अपना दूसरा गुण पवित्रता खो दी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बिना पवित्रता के आत्मा में सुख शांति कैसे उत्पन्न हो? सुख शांति के बिना आत्मा शक्तिहीन बन जाती है और शक्तिहीन आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है और आलस्य अलबेलापन ईर्ष्या द्वेष आदि विकार जन्म ले लेते हैं। ये विकार ही आत्मा से कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म अर्थात पाप कर्म करवा देते हैं जो दुख का कारण बनते हैं। कमजोर आत्मा का जो है कर्मेंद्रियों पर अंकुश नहीं रहता। कलयुग के अंत तक इन विकारों का इतना बोलबाला बढ़ जाता है कि आत्मा बेबस होकर हताश और निराश हो जाती है। संसार जो है विकारों के कारण नरक बन जाता है। आत्मा भौतिक पदार्थों में खुशहाली खोजती है, लेकिन किसी व्यक्ति के पास कितने भी भौतिक पदार्थ क्यों न हो, यदि उसका मन किसी विकार के वश में है तो वह कभी खुश नहीं हो सकता। खुशी असली खुराक है जिसके लिए वह व्याकुल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इन पांच विकारों से छुटकारा चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में जो फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है पांच विकार ही नरक के द्वार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं पर असीम कृपा है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम के समय पर हमारे परम रक्षक परमपिता परमात्मा शिव अपने कल्पपुण्य किए वायदे के अनुसार निराकारी दुनिया परम धाम से साकार ब्रह्मातन का आधार लेकर अवतरित होते हैं। इन विकारों की जेल से हम आत्माओं को छुड़ाने के लिए हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और राजयोग सिखाकर हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म को भस्म करवाते हैं और पावन बनाकर वापस परम धाम ले चलते हैं। हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की विधि बताकर आने वाले सतयुग यानी कि स्वर्णिम युग स्वर्ग के युग की बनाते हैं। जो आत्माएं अवतरित हुए परमात्मा को पहचान कर उसकी श्रीमत पर चल पावन और शक्तिशाली बनती है, वही परम धाम जाकर फिर सतयुग यानी कि स्वर्णिम युग में आकर स्वर्ग का राज्य भाग्य अपने पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त करेगी। जो आत्माएं पावन नहीं बनेगी वे चाहे गृह युद्ध चाहे प्राकृतिक आपदाएं और चाहे आणविक युद्ध द्वारा शरीर छोड़ने पर विवश होगी और उन्हें अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित धर्म राजपुरी में करना पड़ेगा। फिर वे परम धाम में विश्रांत अवस्था में रहेगी अपने अगले कल्प के अभिनय के समय तक। वे आत्माएं स्वर्ग का सुख नहीं ले पाएगी। परमपिता परमात्मा की इस समय हम आत्माओं पर असीम कृपा श्रीमद के रूप में हुई है, तो समझदार बन इसका पूरा पूरा लाभ ले, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी
2: oh, oh, oh.

0: है कम,
1: जो कुछ रुको सनम,
0: दिल सुनता है कम,
1: झूठी बातें हैं बलम,
0: ले लो प्यार की कसम,
1: झूठी बातें हैं बलम,
0: ले लो प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला, भूल समझ कर शोले को उठाने वाला, आग से खेले वही जो है जल जाने वाला। आजा तू आजा,
1: अजना अजना अजना अजना, जा जा तू जा जा,
0: कभी ना कभी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। आइए आज के इस ख्वाबों को सफर यादगार बनाते हैं आपके साथ मिलकर। और हमारे साथ खास मेहमान विभा जी भी है जो आपको सुनाएंगे प्यारे प्यारे गीतों का कलेक्शन। तो आइए विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में आज के इस एपिसोड में।

0: थैंक यू सनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरा साथ देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगी और ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा, मैं आर अक्षर पे फिर से पुराने गाने और बड़े बड़े खूबसूरत दिल लुभाने वाले गाने लेके आई हूँ। और जो सबसे पहला गाना मेरे पास है वो मस्ती भरा है और थोड़ी पंजाबी टोन वाला है गाना, रेशमी सलवार कुर्ता जाए रूप सहाना जाए नखरे वाले। बहुत ही खूबसूरत गाना है, इसमें नाच है, मस्ती है और पंजाबी पूरा सेट एटमॉस्फेयर ऐसा पंजाबी सेट बनाया गया है इसको फिल्माते हुए। पंजाबी ड्रेस है और नजाकत और नखरों का जिक्र हो रहा है इस गाने में।
1: जी जी,
0: कुल मिला के आपको बहुत मजा आने वाला है इसको सुनते।
1: वाह क्या बात है, चलिए बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया। नया दौर इस एल्बम का जो 1957 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है उस समय बहुत ही कमाल का पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जीवन और अजीत खान पर पिक्चराइज किया गया था। तो चलिए, इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल बताई गई है। उस जमाने में किसानों का दौर हुआ करता था और फिर नई टेक्नोलॉजी आई, गाड़ियां बसेस वगैरह शुरू हो गए, तो फिर किसान जो टांगे वगैरह चलाते थे उनकी रोजी रोटी में खतरा होने लगता है बस की आने से। तो यहाँ पर ये जो है चीजें बताई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है इस फिल्म का ये जो मस्ती भरा, जैसे विभा जी ने बताया है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुना है रेडियो मेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही मस्ती भरा गीत आपने सुना और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे इस गाने को। अब आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हम लोग ख्वाबों के सफर में, कभी कभी रिश्तों में जो है आंसू भी आते हैं तो मुस्कुराहट भी होती है, और इसके लिए कहते हैं कि जीवन में आंसू और मुस्कुराहटों का बड़ा अच्छा कनेक्शन भी है। कई बार आंसू जो है खुशी के भी निकलते हैं तो दुख के भी निकलते हैं, इसीलिए कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी होती है आपको तो आंखों से जो प्रेम के आंसू झरते हैं वो भी हमें कुछ जो है यादें बना के रखती है, और बहुत दिनों के बाद एक खुशी की जो एहसास है वो हम कर पाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, आंसू जानते हैं कौन अपना है तभी अपनों के आगे निकलते हैं, और मुस्कुराहट का क्या है, गैरों से भी वफा कर लेती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM, खाबू के सफर को आप सुनाए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: जिम जिम के गीत सावन गाए,
1: हाँ हाँ,
2: मुर्गे भी रातों में, ये मेरा अगला गाना है।
1: बहुत ही खूबसूरत
2: रोमांटिक गाना है और बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया। राजेंद्र कुमार और बबीता का ये गाना है। इसमें शौकी है, जैसा कि इसको आप गाते ही आपको आपके अंदर से एक ऐसा भाव उठने लगता है कि जैसे आप आंखें बंद करेंगे और ऐसे रिमझिम की बरसात और आपको ऐसा एटमोसफियर आपके अंदर से ही तो आप एक पिक्चराइज कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना है।
1: जी जी जी, अनजाना इस एल्बम का ये गाना आपने याद करा, 1969 का, बबीता, राजेंद्र कुमार, प्राण, प्रेम चोपड़ा, निरुपमा रॉय पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ये, और इस फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने याद कराया है, जो मोहन कुमार के निर्देशन में बनी ये फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना है। तो आइए सीधे चलते हैं गाने की तरफ, फिर उसके बाद बात करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना अनजान, इस फिल्म का जो एक गैरेज मैकेनिक पर पिक्चराइज किया गया था। इसमें जो कलाकार है राजेंद्र कुमार, वो एक गैरेज के मैकेनिक है और वो किसी अमीर लड़की से प्यार करता है, लेकिन अमीर लड़की के माता पिता उससे प्यार करने नहीं देते, उससे शादी करने से इनकार करते। तो वहाँ पर जो है क्लाइमेक्स बताया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को हम लोग पूरी तो नहीं सुना पाएंगे लेकिन थोड़ा सा मैंने सुनाया आपको। और कई बार स्वच्छता की बात चलती है तो स्वच्छता पर किसी ने एक मैसेज लिख के भेजा है 7219190055 पे, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से थैलियां तक उठा लेते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। अब विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
2: अगला गाना जैसे मेरे पास है रिम झिम के तराने लगी आई बरसात, इसमें भी कुछ ऐसे ही, अगर आप बरसात का रियल मजा लेने चाहते हैं तो महलों में घरों के अंदर न बैठे, अगर आप बाहर आके सड़क पे निकल जाएं या अपनी छत पे खड़े हो जाएं तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसमें टिपटिपाने की आवाज और जो बारिश के बरसती जो बूंदे हैं उसकी आवाज, उसमें आप कितना एंजॉय करते हैं ये आप गाने में महसूस करते हैं, रिमझिम के तरह लेके आई बरसात।

चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। ये काला बाजार जो 1960 में फिल्म आई थी, इसे देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था और देवानंद के भाई साहब जो विजय आनंद साहब है, उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था और देवानंद साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। तो इस फिल्म के कलाकार देवानंद तो थे ही और साथ में वहीदा रहमान, मोहम्मद रफी, चेतन आनंद ने भी इसमें कुछ झलकियां इनके देखने को मिलती है। तो आइए, इस फिल्म का ये गाना जो है बहुत ही खूबसूरत गाना है, भी आप सुनने वाले हैं। शैलेंद्र साहब का लिखा, गीता दत्त, मोहम्मद रफी साहब का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा। अगला गाना आपके लिए काला बाजार से। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जिम जिम के तराने लेके आई बरसात, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गाना विभा जी आपने सुनाया है। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही क्या कहते हैं उत्साह और उमंग के साथ उस गाने को सुनकर जो है एक नई खुशी फील कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: अभी तो जो पिछला गाना ही सुन के मेरे को मुंह में पानी आ रहा है कि इसको ये मालपुड़े और पकौड़े खाने का मन होता है जब ड्रिम जिम की बरसात होती है और इंसान भावुक हो उठते हैं ऐसे।
1: सही, सही बात।
2: और इसमें उमंग पैदा होती है। अगला गाना उमंग से भरा है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। तो ये भी बहुत अच्छा गाना है और प्यार का इजहार किया जा रहा है इस गाने में और नेचर को इसमें महसूस किया जा रहा है और बोलों के साथ खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। आप बहुत एंजॉय करेंगे इस गाने को।
1: जी जी जी, मेरे सनम इस एल्बम का ये गीत है, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ। आशा भोसले मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। ओपी नैयर का संगीत से सजा ये गाना है और बहुत ही भावुक गाना है और मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए दिल से इस गाने को सुनिए, फिर मिलते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मेरे सनम इस एल्बम का आपने गाना सुना आशा पारेख, विश्वजीत, मुमताज, प्राण, राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज किया गया था। मेरे सनम का गाना आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और गाना भी उतना ही खूबसूरत था जिसे आपने अभी सुना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना कौन सा है विभा जी आपके पास?
2: अगला गाना मेरे पास ये भक्ति गीत है, रोम रोम में बसने वाले राम। जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। ये पूरी भक्ति भाव से गाया गया गाना है। इस गाने में पूरी श्रद्धा है। आप इस गाने को इस भक्ति के गीत में आप जैसे पूरे उसमें बह जाते हैं। मेरे चरणों की धूल जो पाए वो कंकर हीरा बन जाए। इसके बोल बहुत मीठे और प्यारे हैं। आप देखो हमारे श्रोता इसको बहुत एंजॉय करें।
1: जी जी जी, ये एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आई थी 1968 में। राम महेश्वरी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और इसका नाम था नील कमल। और ये जो फिल्म है इसमें एक कहानी जो है थोड़ी सी अलग बताई गई है। सीता नाम की एक लड़की होती है जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है और फिर इसका कारण जब पूछा जाता है उन्हें तो बहुत जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है वो उसे पिछले जन्म की याद आती रहती है और पिछले जन्म में उसके जो प्रेमी होते हैं उसकी याद में वो रात में चलने लगती है। तो इस तरह की कहानी इसमें बताया गया है, नील कमल। शायद आपने देखी होगी तो आपको कहानी पूरी याद आ गई होगी। तो चलिए, इस फिल्म का जो आपने गीत याद कराया विभा जी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं इस गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। वैसे इंसान के जीवन में काफी चीजें जो है, अगर हम लोग कहते हैं कि जितना सोचो जितना समझो उतनी नई बातें इसमें आ जाती हैं। इंसान को पूरी तरह से अगर एक दुकान की तरह देखे तो उसमें जुबान उसका ताला है, और जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की

0: एंड या फिर कोयले की। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। जी हाँ साथियों, जब भी हम लोग बोलते हैं हमारे बोल लोगों को बता देता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरह का है। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है बोलो तो तोल के बोलो, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि बोलो तो बस मीठे बोल ही बोलो। आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
1: जी मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरह से सुन रही हूँ। जैसा आपने कहा बोलो तो मीठे बोलो, बड़े सोच के बोलो, और कई ये इसमें बहुत सच्चाई है कि बोल ही है जो हमारा दूसरे के साथ रिश्ता बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं, और बोल ही है जो हमेशा याद रह जाते हैं। चेहरे बदल जाते हैं, पर्सनालिटी बदल जाती है, जो हमारे बोल है ये कहीं ना कहीं जाके अंदर छू जाते हैं कहीं। तो अगला गाना मैं मस्ती भरा थोड़ा रोमांटिक गाना है, थोड़ा नहीं खूब रोमांस से भरा हुआ ये गाना मस्ती से फिल्माया गया है। रुख तेरा मस्ताना प्यार मेरा ना भूल कोई हमसे ना
0: हो जाए। चलिए रूप मस्ताना तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आ जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, ये राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज किया हुआ बहुत ही पॉपुलर गाना है। आराधना इस एल्बम का है और इस फिल्म की कहानी बड़ी ट्रेजेडी वाली बताई गई है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की प्रेम कहानी को बताया गया है, और राजेश खन्ना हवाई जहाज चलाते हैं, आर्मी ऑफिसर है, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो शर्मिला टैगोर अकेली रह जाती है, और फिर उसके साथ जो कहानी बनती है अपने बेटे को बड़ा करने का और उसे आर्मी ऑफिसर बनाने का जो सपना उन लोगों ने देखा था प्रेम कहानी में, तो उसे सच बनाने में उनकी पूरी तपस्या लग जाती है। कई मुश्किलें आती हैं, सारी मुश्किलें, इवन उन्हें दो बार जेल जाना पड़ता है, और दो बार जेल जाकर भी वो अपने बेटे को बनाती है आर्मी ऑफिसर, और बाद में उसकी आराधना जो है सफल हो जाती है। और उसके कहानी में लास्ट में एंडिंग बहुत अच्छी तरह से बताई गई, शर्मिला टैगोर जो है अपने बेटे को खुद अपने हाथों से मेडल पहनाती है उसके आर्मी में अचीवमेंट के लिए। तो कहानी को बड़ा ही सुंदर ढंग से फिरोया गया है। पूरी जो फिल्म है शर्मिला टैगोर पर ही पिक्चराइज, आइकॉन सेंटर उन पे ही ये फिल्म बनी है। तो आइए इस फिल्म का जो गीत आपने याद कराया है इस गाने को सुनते हैं। बहुत ही मस्ती भरा गीत है, जैसे विभा जी ने कहा। आप सुना है वीडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: वाओ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभाजी, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और खाबों के सफर में मस्ती भरा गीत आपने सुना। और कहते हैं ये वो चीज है जो हमने मुफ्त में मिलती है, वक्त, दोस्त और रिश्ते, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: अगला गाना मेरे पास है, जैसे कि आपने कहा कि जब ये खो जाते हैं ये रिश्ते या दोस्त, तो हम उनको ढूंढते हैं और ये भी अपने रुके हुए दोस्त को ही मना रहे हैं। राज कपूर कह रहे हैं, रुक जाओ जाने वाले रुक जा, नजरों में तेरे में बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मगर का। तो ये नशे में चूर है, हाथ में शराब की बॉटल है और साथ में नूतन को मनाते हुए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, आ प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा।
1: जी जी जी, ये गीत आपने याद कराया है, कन्हैया इस एल्बम से है जो 1957 में या 59 में रिलीज हुई थी। और कहानी बड़ी सुंदर है, कन्हैया नाम का व्यक्ति जो है एक फेमस व्यक्ति है और बहुत ही मनचला व्यक्ति है, लेकिन इस नाम के प्यार में एक हीरोइन पड़ जाती है और जब प्यार करने लगती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है, उसके पहले उन्हें पता चल जाता है कि व्यक्ति नशे में है और नशा करता है, तब उसकी जो प्यार की कहानी है पूरी तरह से हवे की तरह खत्म हो जाती है, हवे में उड़ता हुआ प्यार नजर आता है। तो ऐसी कहानी यहाँ पर बताई गई है, फिर बाद में एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। तो चलिए, इस फिल्म की जो कलाकार है वो है राज कपूर, नूतन, ललिता पवार, मदन पुरी इस फिल्म में काम किया है। तो आशा करता हूँ आपने फिल्म देखा हो तो बहुत ही एंजॉय करेंगे। लेकिन अब इस गाने की तरफ चलते हैं, ये मस्ती भरा गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, जो रुक जाओ जाने वाली रुक जा इस तरह के बोल है। शैलेंद्र साहब ने इसे लिखा है, मुकेश साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुना रहे हैं मीबा जी, थैंक यू सो मच। और अब आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड़ पे हैं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंचे हैं। और कहते हैं सबको पता है कि मौत आनी है एक दिन, फिर भी बेखबर सब यूं ही जिए जा रहे हैं। औरों को तो नसीहत देते हैं खुश रहने की, और खुद है कि लहू के घूंट पिए जा रहे हैं। जी
2: मेरा ये अगला जो गाना है ये भी जिंदगी की सच्चाइयों पे ही है। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता, ये जिंदगी की सच्चाई पे ये गीत है। कहीं बहुत प्यार है तो कहीं खंजर भी है, बस इसी सच्चाई का रूप को बयान करते हुए ये गीत गाया गया है। वो रह गुजर जो मंजिल की इब्तिदा थी, उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गजल आपने याद कराया है। और ये गजल जो है कुछ दिन ने कहा इस एल्बम से है। और विभा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर, बहुत ही खूबसूरत गाने आपने आज के इस एपिसोड में सुनाए। और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही एंजॉय किया होगा उन्होंने आज के इस एपिसोड को। और कहते हैं कि लूटे हुए अपनों को मना लूंगा एक दिन, लूटे हुए अपनों को मना लूंगा एक दिन, दिल का घर फिर से बसा लूंगा एक दिन। लगने लगे जहां से हर मंजर मेरा मुझे, ख्वाबों का वो जहां बना लूंगा एक दिन। अभी तो शुरुआत हुई है,

सफर के बेरंग जिंदगी में रंग सजा दूंगा एक दिन। तो थैंक यू सो मच विभा जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर बहुत खूबसूरत गाने सुनाने के लिए। और हमारे सभी श्रोताओं को जाते जाते हम लोग रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ मैं, ये गजल आप सबको सुना रहे हैं, आप सबके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, ऐसी शुभकामना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। सलाम नमस्ते खमागनी, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: कहा मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो, जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधी आ रही थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, किकनार करके सिंगार, किकनार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

सना ना साना ना पावा ना चले झना ना झना ना झांझरा बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नया न झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन बुरी चले छुम छुम छुम छमक छमक झुम झुम झुम छमक झमक छुम छुम छुम छमक छमक।

गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उभारे प्यार पुकारे तो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने। भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार भरने।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हुरी हप हप हुरी या।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं, मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद है, मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा, परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो। उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हां।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है, वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
2: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराहनगर से दाशरथी सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता।

0: था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
1: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
0: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि ये भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु ये सिद्धांत चित्त में ठहर न सका क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा।

0: सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं तो उन्हें पागल कैसे समझूं। किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ। जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर बातचीत कर प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो। लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
1: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहलकर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्षस्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
1: इधर इन तीन दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था। ये कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष है। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे

0: गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
1: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
2: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी, उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
0: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
1: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
1: सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
1: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्र

भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हूँ।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आणि तुम्ही तुमच्या आवडीच्या शो मध्ये आहात, म्हणजे हा खेळ शब्दांचा या कविता व चारोळ्यांच्या शो मध्ये माझ्या सोबत म्हणजे आरजे कैलास सोबत। आनंदी रहा, आनंद लोटा। श्रोते हो, आपण मागील दोन रविवार पासून विषयाचं बंधन नसलेल्या रचनांचं सादरीकरण करतोय। खूप साऱ्या रचना आलेल्या होत्या आणि ज्या रचना एकाच शो मध्ये घेणं शक्य नव्हतं, म्हणून आपण याचा तिसरा आणि शेवटचा भाग आज सादर करतोय। पुढील रविवारी आपण विषय किंवा चित्र देणार आहोत, त्या अनुषंगानं आपण सर्व मान्यवर या शो मध्ये सहभागी होऊ शकता। आणि आजच्या शोला सुरुवात करण्यापूर्वी चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, आनंद घेऊया जीवनातल्या प्रत्येक क्षणांचा। चला तर मग ठाव घेऊया हळव्या मनांचा, आनंद घेऊया जीवनातल्या प्रत्येक क्षणांचा, काही तुमचे काही माझे गुंफून शब्द मोती, काही तुमचे काही माझे गुंफून शब्द मोती, सजवूया हा खेळ शब्दांचा, सजवूया हा खेळ शब्दांचा। गेल्या 6 वर्षापासून आपण रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर हा खेळ शब्दांचा हा कविता व चारोळ्यांचा शो जो आहे तो ऐकत आहात। भरभरून असा प्रतिसाद आपण देत आहात। प्रत्येक शो मध्ये नवनवीन साहित्यिक मान्यवर हे सहभागी होत असतात, आपले श्रोते जे आहेत ते आपल्या शोची आतुरतेने वाट पाहत असतात। सर्व मान्यवरांना मी एक नम्र विनंती करतो की जेव्हा शोची पोस्ट आपल्यापर्यंत पोहोचेल तेव्हा त्या शो मधील शोची जी पोस्ट आहे त्यातील नियम आपण वाचून त्या अनुषंगाने रचना पाठवावी। आपण शो मध्ये 8 ओळींची रचना किंवा 4 ओळींच्या 2 रचना घेतो, कधी कधी आपण चारोळी उपक्रम, कधी कधी 8 ओळी उपक्रम असे उपक्रम आपण ठेवत असतो। आणि जेव्हा आपण रचना पाठवता त्यावेळी रचना वेगळी आणि आपले नाव आणि गाव हे वेगळे पाठवावे अशी सुद्धा विनंती आपल्याला करतो। जेव्हा आपण शोच्या नावाचे पोस्टर तयार करीत असतो त्यावेळी त्या पोस्टरवर आपलं नाव येण्यासाठी नाव आणि गाव हे स्वतंत्र पाठवावं, त्या ठिकाणी कोणतेही इमोजी पाठवू नये, आपण आपला मोबाईल नंबर त्या ठिकाणी लिहू नये, कारण आपण ज्या नंबरवरून रचना

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणे की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो। मी माझ्या तारोळी मध्ये लिहिलंय की किती सहज स्वीकारली ना तू परिस्थिती, मनात दाटलेलं काहूर बाजूला सारून। किती सहज स्वीकारली ना तू परिस्थिती, मनात दाटलेलं काहूर बाजूला सारून। चेहरा ठेवलास कायम हसरा माझ्या समोर, पण कसे लपवशील रे आलेले डोळे भरून, पण कसे लपवशील रे आलेले डोळे भरून। आणि माझ्या तिसऱ्या चारोळीमध्ये मी लिहिलंय, ती मला म्हणाली की मला तुला वाचायचे आहे। ती मला म्हणाली मला तुला वाचायचे आहे, मी तुझ्यासोबत जगून सुंदर क्षणांना वेचायचे आहे, मी तुझ्यासोबत जगून सुंदर क्षणांना वेचायचे आहे। तर या माझ्या 2 चारोळ्या होत्या। आजच्या शोमधल्या पुढच्या कवितेकडे वळूया, कासव या शीर्षकाखाली अष्टाक्षरी रचनेकडे वळूया। श्री प्रमोद सावरकर, प्रवासी, बोरगा।

0: उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा

अपने तो पेट ही झूठे संदक में छुपा को संदक में छुपा को अजी छिलको छिला को अजी हाँ घसको घसा को अजी छिलको छिला को अजी हाँ घसको

अम्मा को झूठ बोला, बाबा को झूठ बोला, अल्लाह अल्लाह झूठ बोला, हसन से झूठ बोला। पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यान पिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: साथियों, हमने कई बार अक्सर सुना है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल की बूंद, एक एक बूंद जीवन की बूंद है। जल के बारे में हम आजकल कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं। कारण मुझे नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सब अपने आसपास कहीं ना कहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं कि जल की आपूर्ति, जल की कमी और जल को लेकर के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कह सकते हैं जो टकराव है खुद के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में जल के साथ दोस्ती कैसे की जाए, ऐसे में जल के साथी बनकर, जल के पहरेदार बनकर कैसे जल की सेवा की जाए और जल से समाज की सेवा की जाए, इसी विषय को लेकर के आज 90.4 FM रेडियो मधुबन में मैं आरजे शांतनु आपके सामने आया हूँ, आपके चहेते कार्यक्रम यशस्वी भारत में। हर बार की तरह हमारे साथ आज एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, बुंदेलखंड से उमाशंकर पांडे जी। उमाशंकर पांडे जी को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के जल के पहरेदार हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उमाशंकर जी का। उमाशंकर जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत तहे दिल से आभार है जो आप कर रहे हैं, स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रेडियो मधुबन में आमंत्रित किया, मेरे विचार साझा होंगे। मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय के, ईश्वरी विद्या के जो हमारे संस्थापक हैं, श्री ब्रह्मा बाबा जी को नमन करता हूं कि उन्होंने हमको देश में एक ऐसा संगठन दिया है जो केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति के जीवन चरित्र निर्माण के लिए काम करता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। मैं जब आपके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिली जिनको लेकर के मुझे आज सवाल पूछना है। लेकिन सबसे पहला चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अगर अपने जीवन को टटोले, अभी से लेकर के आपके बचपन से लेकर के कहीं से भी, कौन सा वो ऐसा एक किस्सा था या कौन सा एक वो पहलू था आपके जीवन में जब जल ने आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ले लिया?
3: आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरी पूज्य माता जी, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, उस गांव में ना तो सड़क थी, ना स्कूल थे, ना आने जाने के रास्ते थे। ऐसे में हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बाहर हुई है। काफी समय हम बाहर रहे। बाहर रहने के बाद मैं अचानक एक बार गांव गया, वैसे गांव जाता रहता था, लेकिन अचानक एक बार गांव गया और शाम के वक्त में गांव गया तो मैंने अम्मा से कहा, मुझे भूख लगी थी, मैंने अम्मा से कहा कि मुझे माता जी भोजन करना है। तो अम्मा ने मेरी कहा कि बेटा भोजन तो यहाँ नहीं मिलेगा। मिलकर क्यों? बोले गांव में दो दिन से एक लाश रखी।

और उसका लड़का सूरत गया हुआ है। और हमारे गांव की परंपरा है कि गांव में कोई किसी भी जाति मजहब का व्यक्ति जब उसका अनंत की यात्रा पर जाता है तो भोजन गांव में जब तक नहीं बनेगा जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं हो जाए। तो मैंने कहा माता जी ये कल खत्म हुई थी, आज रखी है, कल उसका लड़का आएगा, तो इसके लिए तो बहुत बहुत बोले तुम यहाँ हम लोग थोड़ा संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं और संपन्न लोगों का धर्म बनता है कि जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों के पास संसाधन है उससे अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपके बगल वाला भूखा है तो आपके भोजन करने कोई लाभ है नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि देखिए माँ से बड़ी मातृभूमि होती है और यहाँ 98% गांव खाली हो गया है, यहाँ अपराध है क्योंकि भोजन का संकट है, कोई स्रोत नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो अब ऐसे में अगर ये लड़के बाहर नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? तुम एक कुछ करने में तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम इस गांव के लिए कुछ करो। मैंने कहा मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? तो माँ ने मेरी कहा कि अकेले ही इस दुनिया में जो ही भागीरथी प्रयास हुए हैं वो किसी एक व्यक्ति ने शुरू किए हैं और उसके साथ कारवां बनता गया है, आगे चलता गया है। मैं बात माँ की सुन करके रात में चिंतन करता रहा और अम्मा ने ये बात कही कि माँ जो जन्म देने वाली उससे बड़ी जन्मभूमि। तो मुझे और उनकी बात में गंभीरता लगी। हम बगल में हमारे बड़े भाई की ससुराल थी, हम वहाँ चले गए, हमने भोजन किया और वापस रात में घर आ गए, बाइक से गया वापस आ गया। रात में चिंतन किया, सुबह अम्मा ने मुझसे कहा था गांव घूम के आना थोड़ा, तो मैं गांव घूमने के लिए निकला तो हर अधिकांश घरों में ताले लगे, कोई एक भी नौजवान गांव में नहीं था, वृद्ध और कुछ वैसे बीमार लोग मैंने देखे गांव में है। मैंने पूछा भैया फलाने कहाँ गए, दिमाके कहाँ गए, जो मेरे साथ के लोग है, बोले वो सूरत में है, कोई बम्बई में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, कोई ईंटा पाथ रहा है, कोई किसी के पल्लीदारी कर रहा है। वो घटना मेरे जीवन में बड़ी घटना बनी। और शाम को मैं मेरे नजदीक बांदा शहर है, बांदा शहर में मैं आया और बांदा शहर में ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक शाखा है, वहाँ ब्रह्म कुमार ओम प्रकाश इंजीनियर ओम प्रकाश मसूरहा साहब, हमारे यहाँ के बड़े संपन्न लोगों में उनकी गणना होती है और उनके सारे अधिकांश लोग बच्चे अमेरिका में और दूसरी जगह वो रहते हैं। वहीं पर एक आ गए एमएलए थे प्रोफेसर सिंह प्रकाश शर्मा जी, क्योंकि दादा का बड़ा सम्मान हमारे शहर में है, गणमान व्यक्ति है, पहले वो राजनीति में उनका बड़ा योगदान था, फिर वो राजनीति छोड़ करके ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवा में लग गए। तो मैं उनके यहाँ बैठा था, शर्मा जी ने मुझसे कहा कि पांडे जी आप अपने गांव के बारे में बहुत जानते हैं या कम जानते हैं? तो मैंने कहा भाई हम पैदा जरूर हुए हैं लेकिन आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप ज्यादा मेरे क्षेत्र के, बोले आप मेरे साथ चलिए जरा मैं आपको जेल घुमा के लाता हूँ, क्योंकि विधायक जेल बिस्तर होते हैं। तो उसी समय मैं उनके साथ में, ये सब ईश्वरी कृपा थी, कुछ मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा बाबा क्या चाहते थे या क्या मेरे ऊपर उनका कृपा थी, मैं उनके साथ में, तब विधायकों के पास गाड़ी नहीं होती थी, स्कूटर से चलते थे और वो प्रोफेसर थे तो और भी सज्जन व्यक्ति थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सीधे स्कूटर में बैठ के हम लोग बांदा जेल में गए। तब बांदा और चित्रकूट एक था, दोनों बांदा जिले में चित्रकूट आता था, बाद में जिला अलग बन गया। वहां देखा तो पहले आदमी जब जो मुलजिम लोग होते थे, विचाराधीन कैदी होते थे, उनके एक तख्ती टांगी जाती थी तो उसमें लिखा था जखनी जखनी जखनी जखनी करके मैंने 20 लोगों के नाम देखे। मुझे लगा कि यार मेरे गांव के लोग सब जेल में, ज्यादातर लोग हैं, 20 लोगों का जेल में होना बड़ा कठिन बात है एक गांव से। हम आए तो प्रभाजी जी ने मुझसे कहा क्यों पांडे जी कुछ देखा आपने? मैंने कहा भाई साहब मैंने तो नहीं देखा। अरे बोले यार तुम्हारा जिस गांव में तुमने जन्म लिया है वहां के 20 लोग हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? भाई साहब कहते थे प्रभाजी जी, बोले अब ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने कहा ठीक है सोचते हैं। फिर मन में आया कि इस गांव को कैसे ठीक किया जाए। मैं दोबारा लोगों के साथ मैंने संवाद किया कुछ समय के पश्चात, फिर मैं 10-15 दिन के बाद गया और जाने के बाद मैंने अपने जैसे नौजवान लड़कों को एक त्योहार पर रहा था, हमारे यहाँ बुढ़वा मंगल होता है, वो होली के बाद में जो पहला मंगल होता है उस दिन उत्सव होता है, रंग उत्सव होता है, कम लोग थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये गांव के लिए कुछ किया जाए। कहें भैया मदद कौन करेगा, जो जेल में है लोग उनकी पैरवी करनी है, एक तो क्राइम छोटा करते हैं 10 क्राइम पुलिस लगा देती है। मैंने कहा बात तो कठिन बात है। फिर मैं बांदा आया, तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसपी से मिला, तो हमारा रीजन झांसी नहीं था, बांदा रीजन हमारा नहीं था, झांसी में हमारा कमिश्नर बैठते थे, तो डीआईजी और कमिश्नर झांसी बैठते थे। मैंने उनको बताया मैं अपने गांव को आदर्श गांव या अच्छा गांव बनाना चाहता हूँ, रास्ते नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा गांव ठीक गांव बने। तो मैं कलेक्टर था बीबी पांडे साहब, ब्रज वल्लभ पांडे कलेक्टर थे, तो उनसे मैंने कहा कि साहब मेरे गांव, बोले प्रधान से मिलिए। मैंने कहा प्रधान ने कहा कि मैं नहीं कुछ कर सकता, बोले तो प्रधानमंत्री कुछ कर सकता। हमने कहा प्रधानमंत्री कुछ करेंगे तो आप मुझे झंडी दिखाएंगे? बोले हाँ मैं दिखाऊंगा। उनको विश्वास थोड़ी था कि ये सब घटनाएं चल रही है। मैं गांव आया, मैंने कुछ साथियों से बात करी, बात करने के बाद लड़के तैयार हो, मैंने कहा भाई दिल्ली चलना है, प्रधानमंत्री से मिलने चलना, नए जवान लड़के थे।

कोई कोई जानते थे कुछ कि क्या करना है कैसे करना है, कोई रास्ता नहीं, कोई गार्ड फादर नहीं। हम लोग तैयार हुए, साइकिल लिया और 15 साइकिल तैयार किया और गांव से बांध आ गए। 10 बजे हम लोग बांधा पहुंचे, 10:30 बजे डीएम साहब बैठे थे। हमने कहा चलिए साहब झंडी दिखाइए। बोले यार मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियस है? मैं कहा साहब सीरियस मजाक नहीं है, प्रधानमंत्री करेगा तो प्रधानमंत्री चल रहे। खैर उन्होंने झंडी दिखाया और आगे के लिए चिट्ठी लिख दिया जो हमारा रास्ते का जो मार्ग में कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसकी उन्होंने एक लेटर डीएम को दे दिया और हम वहां से निकल दिए। हम लोग करीब 30 दिन तक साइकिल चलाते हुए और हमको 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। ये बात हमारी जुलाई की बात है। 15 अगस्त था, बीच में हमारे सांसद थे तो भीष्मदेव दुबे सांसद थे। हमने उनसे कहा, बोले प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं, इतनी जल्दी नहीं मिल सकते हैं। हमने कहा कोशिश तो कर लीजिए, शायद वो हमको समय दे दे। बोले ठीक है, तो आप 5 दिन हमारे यहाँ रहिए, अतिथि बन के रहिए, दिल्ली में साइकिल से घूमिए। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिला घूमने घामने का, एनवाईकी के माध्यम से मिला और हम लोग घूमे और हमको 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी के यहाँ राजीव जी से मिलने का समय। तो हम लोग 87 की बात होता तो हम लोगों को मिले और उन्होंने हमें ये कहा, सर्टिफिकेट दिए हम लोगों को और ये कहा कि मैं सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अपने गांव को देश का अच्छा गांव बनाएंगे और पूरे देश में ये गांव नेतृत्व करेगा। जिस गांव के लोगों में इतनी जिज्ञासा नौजवान में हो, उस गांव को कोई रोक थोड़ी सकता है। और हमको उन्होंने एक साइकिल दिया और कुछ हमको 5,000 रुपया की धनराशि दिया और पीठ में हम लोगों के हाथ फेरा और हम लोग वापस आए। अब मेरा काम शुरू होता है, यहाँ से उत्साह बढ़ता है। फिर मैं कलेक्टर साहब से मिला, एसपी से मिला, एसपी कलेक्टर से मैंने कहा कि मेरे गांव के लोगों पर मुकदमे लिखे गए हैं तो आप कृपा करिए कि मैं मेरे वो लोग आना चाहते हैं मुख्यधारा में, आप कुछ सपोर्ट करिए। बोले ठीक है आप तय करो। जेल में हम लोग गए, सब लोगों की जेल में बात किया, एसपी गए कलेक्टर गए और जेल में हम लोगों ने बात की तो उन्होंने हमने कहा कि भाई आप अपराधी, आपके लड़के भी अपराधी बनना चाहते हैं? बोले कोई नहीं चाहता कि मेरा लड़का अपराधी बने, हम साहब मुख्यधारा में जुड़ेंगे लेकिन हमारी FIR हमें परेशान न किया जाए, हम गांव में काम करेंगे और वहीं खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे, सब्जी पैदा करेंगे, गाय दूध की व्यवस्था करेंगे, आप हमको सपोर्ट करिए, अगर हम एक अपराध करें तो आप हमको जो सजा हो कर दीजिए। एसपी मेरे गांव गए, सारे लोग इकट्ठे हुए, कलेक्टर साहब मेरे गांव गए और सब लोगों ने तय किया कि जख्मी के किसी व्यक्ति की FIR तब तक नहीं होगी जब तक एसपी कलेक्टर को बताना दिया जाए। एक बल मिल गया, अब बल मिल गया तो सारा काम अब शुरू हुआ। हमने बिजली के लिए खम्भे लाए, गाड़ी बैल में लाद के खम्भे लाए, मिलकर के हमने रोड बनाया, सब लोगों ने तालाब खोदना शुरू कर दिया। ये छोटा छोटा काम, हम लोग पहले रोड बनाए, फिर हम लोग बिजली लेकर आए, फिर हमने स्कूल बनाया, सबने मिलकर स्कूल प्राइमरी बनाई, फिर जूनियर हाई स्कूल बनाया, फिर राजकीय हाई स्कूल बनवाया, फिर इंटर कॉलेज बनवाया। एक तरफ शिक्षा का काम शुरू किया, दूसरी तरफ स्वरोजगार स्वलंबन, क्योंकि गांव तो स्वलंबी है। अगर कोई कहे हम गांव को स्वलंबी बनाएंगे तो उसका भ्रम है, गांव तो पहले से ही स्वलंबी रहे हैं, गांव से तो शहर में सब कुछ आता है, इसका मतलब गांव स्वलंबी है। तो हमने फिर गांव में अपने जैसे लड़कों को तैयार करके हम सबने, मैं नहीं, हमने सबने मिलकर काम शुरू किया। हम लोग आते गए जाते गए, कभी अपना कृषि विश्वविद्यालय की शाखा शुरू करी, कभी विचारक को बुला लिया, कभी संघ से लोगों को बुलाया, कभी किसी पर सर्वोदय के लोगों को बुलाया और अपना धीरे धीरे काम करते गए। काम करते करते हम लोगों का एक स्तर काफी ऊंचाई तक आया और फिर हम लोगों ने मेड़बंदी का एक विनोबा भावे का एक, मेरे चूंकि बाबा और मेरे पिताजी के विनोबा जी के संबंध थे, विनोबा जी काफी लंबे तक गुदान का यहाँ यज्ञ चला हमारे चित्रकूट में, तो विनोबा जी और नानाजी देशमुख जी यहाँ लंबे समय तक प्रवास किए हैं, उन्होंने बड़ा काम नानाजी ने किया है। उसी बीच में घटना होती है, नानाजी देशमुख के गांव को बनाते हैं और गांव में, उस गांव में जहां वो कृषि फार्म बनाते हैं वहां चोरी हो जाती है, तो पुलिस पता लगाती है कि चोर वो कहां के, वो जख्मी गांव के चोर। तो नानाजी ने कहा कि जख्मी के हैं तो उस जख्मी गांव को पहले ठीक किया जाए, और नानाजी ने मुझसे कहा कि आप वहीं बैठ जाओ। तो मैं उस गांव में बैठ गया और बोले FIR नहीं करेंगे अब किसी। फिर वो गांव मेड़बंदी यज्ञ शुरू हुआ, अभियान खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। इस अभियान को शुरू करने के बाद हम लोगों ने खेतों में पानी रोका, फिर हम लोग और थोड़ा आगे आए, बांस से मतलब बांसमती 1 किलो पैदा नहीं होता था बुंदेलखंड में, हम लोगों ने बांसमती धान शुरू किया और पहली बार हम लोगों ने 500 क्विंटल बांसमती पैदा किया 10 लोगों ने मिलकर। फिर जब हम 10 ने किया, अगले साल 50 लोग तैयार हुए, हम लोगों ने 5,000 क्विंटल पैदा किया सब। फिर इसके बाद 100 लोग तैयार हो गए, हमने 10,000 क्विंटल बासमती पाए और उससे बासमती जो जहां पर हमारे यहाँ बीजाधुनी नहीं होता था, पानी नहीं था जहां पर, वहां बासमती पैदा करना तो बहुत कठिन बात है। ईश्वर की कृपा, सबके सच्ची लगन, उस बासमती से जखनी से निकल के बासमती 25 गांव गया, 50 गांव गया, 100 गांव गया, 1000 गांव गया और पूरे बुंदेलखंड में जहां 1 किलो बासमती नहीं था, वह झांसी जैसी जगह में 5 राइस मिलें बासमती धान बनाने की लगाई हुई। अब आप समझिए, सरकार ने धान पिछले 10 वर्षों में किसानों से लगभग 1,000 करोड़ का धान खरीदा, डायरेक्ट सामान्य धान खरीदा, बासमती छोड़ दी।

0: इसके बाद अब हम लोगों का 2000 मई 25 मई को विज्ञान भवन में कार्यक्रम होता है जिसमें अब्दुल कलाम साहब मुख्य अतिथि होते हैं और हरवंश प्रसाद जी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, वहाँ मोहन धारिया साहब आते हैं, अन्ना हजारे साहब आते हैं, स्वामी अग्निवेश जी आते हैं, मैं भी जाता हूँ, पद्मभूषण निर्मला देश पांडे जी आती हैं, हम लोग सब लोग वहाँ एक तो कलाम साहब ने एक बात कही कि आने वाले समय में गांव में पानी का संकट होगा, हम सब लोग को वाटर विलेज बनाने पड़ेगा। तो वहां से मुझे जलग्राम मिल गया, वहां से मैंने जलग्राम बनाने की कल्पना सुनी कि अब मैं अपने गांव को जलग्राम बनाऊंगा। अनुपम मिश्रा जी वहां थे पानी के, जो आज भी खड़े हैं, किताब जिन्होंने लिखी है, तो मैं वहां से मिलकर के हमने जलग्राम, फिर जखनी को जलग्राम बनाया। और जखनी को जलग्राम,
1: आपका ये जो आपका यात्रा है जखनी को जलग्राम बनाने का, जलग्राम तो अभी एक मुकाम है, लेकिन उस मुकाम को पहुंचने या पाने के पहले आपने जखनी को पहले तो सामाजिक जो बुराइयां हैं उससे पहले मुक्त किया,
0: पहले अपराध है उससे शराब से मुक्ति कराई, शराब से मुक्ति कराई, अपराध से मुक्ति कराई, गांव को स्कूल में मुख्य धारा में लड़कों को लेकर के आए,
1: शिक्षा लेकर के आए आप, शिक्षा का मुख्य धारा लाने,
0: शिक्षा से लोग अब जखनी में पिछले 17 वर्ष में एक भी कोई जघन्य अपराध की FIR नहीं है। और जो अपराधी वो क्या करेगी,
1: ये बहुत सुंदर एक मॉडल आपने आज हमारे श्रोता साथियों को बताया कि जल तो जैसे आज हम देख रहे हैं वैसा है जल पहरेदारी का, लेकिन उसके पहले जो शुरुआत आपने की बहुत छोटी सी शुरुआत की, और वो छोटी सी शुरुआत ये थी कि भाई मुझे मेरे गांव को अच्छा बनाना है, अच्छा हर दिशा से होनी चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट वाटर, ये केवल पानी की बात नहीं है, ये लोगों के जीवन की बात है, लोगों के विचारधारा की बात है, लोगों के संस्कारों की बात है, उनके रोजमर्रा रोजगार आदि आदि सब चीजों को लेकर के किया। लेकिन जो बात मुझे आपकी पूरी कहानी में सबसे मजेदार लगी वो ये कि एक माँ ने कहा कि माँ से भी बढ़कर मातृभूमि है।
0: हाँ, इमा ने कहा, माने
1: तो धन्य है वो माँ जिन्होंने इतना सुंदर,
0: सबसे जो आज मुझे दुख है, अभी चर्चा करेंगे, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे पद्म सम्मान मिल रहा है, नेशनल अवार्ड देश का पहला जल योद्धा सम्मान दिया गया, लेकिन मैं वो पुरस्कार किसको दिखाऊं, माँ नहीं है, ये मेरे अंदर मलाल है एक ठो, जिस माँ ने मुझे दिशा दी थी, जिस माँ ने मुझे बताया आपको, और ये बताते हुए मुझे मंडल साहब प्रसन्नता हो रही होगी आपको कि मेरी कोई NGO नहीं है, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं, और ये मेड़बंदी एक अभियान, गांव में भी मेड़बंदी एक अभियान चला 1000 हेक्टेयर में, देवास मध्य प्रदेश में है, विदिशा है, अब विदिशा और रायसेन है, 1 किलो धान नहीं पैदा होता था, वहां के किसानों ने आके मेरे यहाँ से मुझे ले गए और पिछले 5 सालों में 50 लाख क्विंटल से अधिक दोनों जिलों के किसानों ने धान बेचा है।
1: तो एक माँ आशीर्वाद होता है।
0: मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था, कोई NGO नहीं बनाओगे, कोई सरकार से ग्रांट नहीं लोगे, उन जिनके लिए काम करना उन्हीं के साथ बैठो, फर्श बिछाओ, जमीन पे बैठो, फावड़ा लो, और ऐसी विधि से काम करो जो जिसमें कोई ट्रेनिंग ना लगती हो, कोई नया ज्ञान ना लगता हो, जिसमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत ना हो, कोई तकनीकी चीज नहीं चाहिए, पुरखों की जो परंपरागत जल जोड़ने की विधि है उस विधि से काम करो, उन्हीं का भोजन करो, उन्हीं के साथ संवाद करो, उन्हीं के बस लो और आगे बढ़ो, हर गांव जाओ, गांव-गांव में अपना एक एक, एक ढोल डंगड़िया ले, विनोबा भावे डंगड़िया लिए थे, और आप केवल चिल्लाओ, पानी बचाओ पेड़ लगाओ, पानी बचाओ पेड़ लगाओ, खेत में मेड़ बनाओ मेड़ पर पेड़ लगाओ। मेरी माँ कहती थी तुम्हें 100 ग्राम पानी में नहाना है कि 100 किलो पानी में नहाना, 100 किलो पानी में आपका साबुन नहीं छूटेगा, 100 ग्राम में छूटेगा। तो मैंने कहा ये कैसे, तो तालाब में जाओ डूब के, कितना पानी रहेगा बाहर आओगे जब, तुम्हारे शरीर में 100 ग्राम भी पानी नहीं रहेगा। उनके जो विचार थे, बोले हम जलधि तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रगान में राष्ट्रगान करते हैं पानी का, जलधि तिरंगा, तुम समझते हो जलधि तिरंगा क्या है? मैंने कहा राष्ट्रगान तो बचपन से स्कूल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतनी मैं गंभीरता से नहीं गया कभी, कहा कि आप ये गान करते हो, उस गान के पीछे का है समझ। माँ ने मुझे धर्म के तरीके से पानी के बारे में बताया, माँ ने कहा, हमने माँ ने हमारी बताया कि एक सीधी सी बात गांव में जाके कहो कि भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, उनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, जो पानी बर्बाद करेगा वो धनी हो जाए और जो पानी बचाएगा धनवान हो जाए। ये मैं तो नहीं जानता था, फिर जब थोड़ा आया, बाहर आया, ऐसे जलग्राम का कांसेप्ट लेकर आया, ऐसे गांव जलग्राम बनाया जहां पुराने टूटे फूटे तालाब हो, नारे हो, नाले सब नहीं, नारे सब था, नाला तो गंदे पानी को कहते हैं, उनका नारे बनाइए, कुआं

0: वाले पड़े हो, पानी ना हो, ऐसे बरसात का पानी उन्हें भर दीजिए। पानी का बैंक तालाब है और पानी की तिजोरी कुआं है, तो जो तिजोरी में पानी बैंक से तिजोरी में आएगा और सुरक्षित हो जाएगा, क्लीन वाटर आएगा। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, पानी बचाना समाज का काम है। माउंट आबू में कितना सुंदर प्रबंधन है, जल प्रबंधन है ऊपर, वही आज कितना भी पैसा लगा दें लेकिन इतना काम नहीं कर सकते। हम भाग्यशाली हैं कि इस देश में जो नेतृत्व मिला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है, और वो हर बार अपनी मन की बात हो या सामाजिक सरोकार का विषय हो, पानी की बात और पेड़ की बात जरूर करते हैं। इधर जागृति आई है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है।
1: ये चीज मतलब आपने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी माँ मिली, मैं तो कहता हूँ पूरा देश ऐसी भाग्यशाली है कि देश में एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने बच्चों को इतना सुसंस्कार, इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जो कि सहज है और सफल है।
0: जी,
1: मुझे यहाँ पूछना पड़ेगा कि आपकी मम्मी का क्या बैकग्राउंड था, आपकी माता जी का क्या, वो पढ़ी थी क्या?
0: मेरी माँ, मेरा चूंकि दोनों मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों से स्वाधीनता संग्राम से हमारा रिश्ता रहा है। मेरी माँ के जो बाबा थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम छतरपुर के पास एक चरण पादिका है जो छोटा जालिया वाला कहते हैं, वहाँ उनको अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। और इधर मेरे पिता जी के जो बाबा थे वो फतेहपुर में इमली के पेड़, बावन इमली पेड़ कहते हैं, वहाँ उनको फांसी हुई थी। तो और मेरी माँ सामाजिक संस्कारों से पली बढ़ी थी उस जमाने में। वो एक अकेली थी, उनके कोई भाई नहीं था, अपने अकेले पिता की संतान थी। तो उनका जो सामाजिक, जो बाबदाना का हमारे सामाजिक स्तर था, वो उस जमाने में भी सामाजिक सरोकार में वहाँ जाती थी बेरोक टोक। जब लोगों का, लड़कियों का निकलना मुश्किल था, बैठना उठना मुश्किल था, तब वो बगैर बेरोक टोक स्कूलों की बात करना। मेरे पिताजी ने मेरे गांव में 10 रुपए 1000 ईंटा मिलता था, तब समूह में जोड़ करके स्कूल बनाया था एक गांव में, छोटा सा एक कमरे का, सबसे मिलकर के 10 रुपए का 1000 ईंटा मिलता था उस समय 1967 में। तो जो हमें संस्कार मिले, उन पूज्य माता जी ने मुझे सारा, मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति है जो मेरे जीवन में मेरा जीवन अगल बगल घूमता है, वो मेरी माँ, और दूसरा ईश्वरी विश्वविद्यालय ओम प्रकाश मिश्रा जी, ब्रह्म कुमारी ओम प्रकाश मिश्रा जी। तो वो जब भी कभी मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता था, वो मुझे पैसे से ही मदद करते थे। तो मैं 2 बार माउंट आबू गया हूँ दर्शन करने, चुपचाप गंगे दादी के दर्शन किए हैं मैंने, जानकी दादी जी के दर्शन किए हैं, उषा बहन को मैंने एक मंच पर, मैंने मंच पर साझा भी किया है। शिवानी बहन अभी मुझे 5 दिन पहले दिल्ली में मेरी उनकी आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के साथ जो वर्ल्ड वाटर अवार्ड दिए जा रहे थे, तो उसमें मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए जल आवश्यक है, और पानी बचाना हमारे देश में जो 5 जलयोद्धा पैदा हुए, जो पहले जलयोद्धा पैदा हुए महाराज भागीरथ पैदा, जो गंगा को लेकर आए, दूसरे जो जलयोद्धा पैदा हुई वो माता जो दुर्गावती पैदा, जिन्होंने गोडवाना और इंदौर उस इलाके में बहुत काम किया, छत्तीसगढ़ के इलाके में पानी में हजारों तालाब बनाए। दूसरे जलयोद्धा जो पैदा हुई वो माता अनुसुईया, जिन्होंने अपने पति के लिए, अत्रि मुनि के लिए मंदाकिनी लेकर आई। यहाँ जलयोद्धा माताएं ज्यादा पैदा हुई, मेरी माँ ने कहानी उसको सुनाई, ये सारी कहानी मेरी माँ ने मुझको सुनाई है। इसके बाद सती अनुसुईया के बाद जो पैदा हुई वो महाराज भोज पैदा हुए जलयोद्धा, जिन्होंने 65,000 हेक्टेयर का भोपाल में ताल बनाया, 65 बावड़ियों को जोड़ के बनाया। और उनकी जो किताब है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, जल विज्ञान, महाराज भोज ने 1500 में जल विज्ञान किताब एक रचना कराई थी, उसको पढ़ने की जरूरत है आज की, उसमें कितना जल प्रबंधन के बारे में लिखा हुआ है। फिर महारानी दुर्गावती पैदा हुई, जिन्होंने 1000 तालाब गोडवाना में बनाए। फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने केवल ना कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गुजरात में काम किया, बल्कि जहां हमारे पुरखे जाते हैं बैकुंठ की नसेनी बताया गया है गया में, गया जी अंत में लोग अपने पिता, लोग कहते हैं कि हमारी संतान हमको गया जी ले जाएगी, उस गया जी में भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने तालाब बनाए हैं। मैं खुद पिता के पिंडदान करने के लिए 5 साल पहले माता के पिंडदान करने के लिए गया गया। दुर्भाग्य ये आज गया कि फल्गु नदी में एक बूंदा पानी नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैं वहाँ था और एक बड़ा योजना बन रही थी कि उस नदी को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। तो ये जो काम थे, जो हमारी माता जी कहती थी कि गंगा तो भागीरथ ले आए हैं, लेकिन अगर गंगा को आपने नहीं बचाया, मिलके आज के भागीरथों ने नहीं बचाया, और गंगा मैया नाराज हो जाएंगी तो गंगा मैया चली जाएंगी वापस। तो ये जो जल प्रबंधन के बारे में उन्होंने बताया कि भाई हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो जल ही क्यों लाते हैं, हमारे यहाँ कोई हम कोई पुराण सुनते हैं या शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकालते हैं तो पानी की यात्रा क्यों निकालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रसाद में

0: के रूप में पानी क्यों दिया जाता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ है, आप इस्लाम धर्म के लोग मक्का जाते हैं तो अबे जमजम का पानी ही उनके ऊपर क्यों डाला जाता है, पवित्र जल दिया जाता है। आप गुरुद्वारे में जाइए तो पानी से ही उसका सम्मान होगा, आप चर्च में जाइए होली वाटर से सम्मान होगा। जैन मुनि इतना तपस्या कर तप करते हैं लेकिन उनके हाथ में वस्त्र भी नहीं रहते, लेकिन आज परिस्थिति देखिए केवल उनके हाथ में कमंडा जरूर रहता जल, इसका मतलब संदेश पानी का देते हैं। तो हम अगर किसी में देखें, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा हरा भरा उसके पीछे पानी का महत्व है, जल ही उसमें दिख रहा है। इस शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल आंखें होती है। हमारी अम्मा कहती थी कि आंखें ठीक से देखें तो पत्थर टूट जाता है, नजर कहते हैं ना नजर लग गई है, लेकिन वो उसमें 98% पानी है आंखों में। तो वो अम्मा कहती थी कि पानी है बिजली है, पर सारी ऊर्जा पानी के अंदर है
1: जी।
0: आप घड़ी का माप आया, घड़ी का टाइम टेबल आया पानी से आया, बांट नापने का यंत्र आया लीटर वो भी पानी से आया, तो बिजली भी पानी से आई, नाप भी पानी से आया, टाइम भी पानी से आया। तो अब आदमी का जो रस, आप समझिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, अम्मा हमारी बताया करती थी कि 5 किलोमीटर ऊपर बादल है, उन बादलों को भी अपनी तरफ खींच के पानी बरसा लेते हैं। जैसे आप बरगद है, महुआ है, पीपर है, पाकर है, जामुन है, ये ऐसे पेड़ हैं जो 5 किलोमीटर बादल जा रहे हैं तो रोक लेते हैं। अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता।
1: बिल्कुल,
0: वर्षा के दिन 120 से घट करके 41 दिन हो गए। हम अकेले नदी नहीं खोज सकते, हम अकेले तालाब नहीं बना सकते, हम अकेले कुआं नहीं बना सकते, लेकिन मेड़बंदी कर सकते हैं। हमारे देश में 18 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, जिसमें से 12 लाख करोड़ भूमि सिंचित प्रकृति के द्वारा है या जमीन के द्वारा है, तो बाकी तो सभी प्रकृति के द्वारा तो सभी है, लेकिन उसमें हम जो बोर करके पानी निकाल रहे हैं, भूमि का जो जल दोहन कर रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हमने हमारे यहाँ जरूर वाटर लेवल 2 मीटर ऊपर आया है, ये ऐतिहासिक घटना है कि बुंदेलखंड में वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, या हम सबने जो काम किया, किसानों ने काम किया, उसका श्रेय भले ही मुझे जा रहा हो, आप सबका सानिध्य मुझे मिल रहा हो, मैं भाग्यशाली हूँ तो इसका श्रेय एक छोटे से व्यक्ति को मिल रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आज बता रहा हूँ, मैंने कभी दिव्यांगता के बारे में नहीं बताया, मेरे शरीर मेरा पैर खराब है लेकिन मैं कभी सर्टिफिकेट लेकर के नहीं चल रहा, न मैंने दिव्यांगता को अभी असर बनाया है। वो रोने वाले दिव्यांग अलग हैं जो अपना रोते रहे। हमने जो पढ़ाया फैक्ट्री रूजबेट को पढ़ाया, जो 25 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहा दोनों पैर नहीं थे, मैंने जेसी को पढ़ाया, मैंने ब्रजानंद को पढ़ाया, मैंने तुलसी को पढ़ाया, मैंने सूरदास जी को पढ़ाया। मेरी माँ कहा करती थी दिव्यांग हो गया जब मैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अम्मा ने कहा कि तुम पढ़ो, पढ़े लोगों की कहानियां पढ़ो, और सारे देवता दिव्यांग हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है, जो भगवान कुछ लेता है तो बदले में देता है, हनुमान जी हैं, तुम हनुमान जी के चेले बन जाओ, वो भी दिव्यांग है। शनि महाराज है, सब लोग डरते हैं शनि से, वो भी दिव्यांग है। गणेश जी हैं, सब वंदना करते हैं गणेश जी, वो भी दिव्यांग है। तो ये जब बातें जो माँ कहती थी, तो मुझे लगता है कि वो एक बात मैंने जरूर आपसे मंडल साहब कहूंगा, मैं बहुत अच्छा अवसर है कि आज हम थोड़ा आपके साथ ऐसी जगह संवाद करें जिसको सुनने वाले जो श्रोता हैं वो देश के बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और जो पानी और सामाजिक सरोकारों के विषय से जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी दुनिया में जो हमारी हमारी जो भागीदारी है, जनसंख्या भागीदारी है, वो 17% है। जो हमारे पास जमीन है वो 4.4% है, पानी हमारे पास 2% है, उसमें से 1% शुद्ध पानी है, 1% जो प्रदूषित पानी है। जिस देश में गंगा और यमुना के देश में कभी दूध और दही नहीं बिकता था, वहां पर आप गांव में चले जाइए आपको दूध नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, लेकिन 500 बोतल दुकान में बिस्लरी पानी का मिलेगा। आप समझिए कितनी बड़ी परिस्थिति हमारे देश के सामने खड़ी है, गरीब पानी कहाँ से पाएगा। इसलिए आज ये जो अपना रेडियो है, इसके माध्यम से आप जो मानव बनने का संदेश देते हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश देता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसके पास न कोई संस्था है, न एनजीओ है, न कार्यालय है, न किसी पुरस्कार के लिए आवेदन करता है, उसके साथ में पूरा देश खड़ा है। और ये विधि किसानों ने, जो मुझे रिपोर्ट मेरे पास आई है, 182,000 किसानों ने 2021 में मेड़बंदी पे पेड़ लगाया था। मेरे पास रिपोर्ट है जी। वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। जिस चित्रकूट में बांदा से प्रतिदिन मालगाड़ी में पानी जाता था मार्च में, 1 मार्च से रोज मालगाड़ी से पानी जाता था मानिकपुर, उस मानिकपुर के राजापुर से मालगाड़ी में धान आ रहा है। ये बहुत समय लगा है मुझको, 20 साल लगा है पूरा काम करने में, लेकिन इस 20 वर्षों में मुझे इस बात

0: शिक्षा से किया, ज्ञान से किया, मैंने अर्जन किया ज्ञान को, मैंने लोगों के बारे में पढ़ा और उस वो जो एक अक्षमता कहेंगे या वो जो एक परीक्षा कहेंगे उसको मैंने बहुत अच्छे से पार किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर किताबों से तो लोगों का काफी दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है
1: जी।
0: कई बार लोग किताबें खरीद लेते हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं होता या वो केवल वीडियो देख करके आगे बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: जब लोग अपने अंदर वो समय ही नहीं दे रहे हैं कि वो कैसे करके अपने अंदर इस प्रकार की प्रेरणादायक चीजों को लाए, आप क्या समझते हैं कि आज के युवाओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए क्या कुछ ऐसा माध्यम हो सकता है जहाँ पर हम प्रेरणाओं को जीवन में लाने का अवसर न ढूंढे, अवसर क्रिएट करें खुद?
1: देखिए दो चीजें हैं, मेरा अपना मानना, मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा था तो मेरी अम्मा ने कहा उच्च शिक्षा करके क्या करोगे, ये जो किताबें किसी में किसी का अनुभव है, और जिन्होंने उन्होंने मुझसे बताया तुलसी किस विश्वविद्यालय में गए पढ़ने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा तुलसी कहाँ पढ़ने गए, कबीर कहाँ पढ़ने गए, डिकेंस कहाँ पढ़ने गए, इन लोगों के एक एक शब्द पर लोग पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं। समाज में तुम्हें समाज का चिंतक बनना है, और तुम समाज में जब उच्च शिक्षा के लिए जाओगे वहाँ एक मशीन के पुर्जे बनोगे, और वो अपने मन से नहीं कुछ कर सकते। तुम बड़े ही बड़े बड़ी प्रशासनिक सेवा में चले जाओ, वहाँ भी तुम्हारे ऊपर कोई होगा, लेकिन गांव में किसानी करोगे तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होगा, तुम खुद के स्वतंत्र होगे। तो ये जो माँ का और मेरे जीवन में, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे दो व्यक्तियों का बड़ा सपोर्ट मिला, एक मेरी माँ का, दूसरी मेरी पत्नी का। मेरी पत्नी का सपोर्ट मिला उस समय जिस परिस्थिति में, भाई बच्चे कौन तैयार करता, कौन उनको पढ़ाता। मैं आज तक अपनी बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया, मैंने कभी बच्चों को एबीसीडी नहीं सिखाया। उन्होंने बच्चे को प्राथमिक स्तर से लगा के एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम तक बच्चे को लेके गई, बिटिया को बीएससी से लगा के एमएससी बीएड तक लेकर गई, बच्चों को सबको उसने संभाला, और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं जो काम कर रहा हूँ, उन्होंने बात कही कि तुम जो अपना काम करो, अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाते हैं। ये जो दोनों मेरे बीच में जो दोनों का जीवन में आगमन हुआ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी पत्नी मिलती है, ऐसी माँ मिलती है। माँ ही शिवाजी बनाती है, क्योंकि शिवाजी बाहर से नहीं आते हैं, लक्ष्मीबाई माँ ही बनाती है। तो ये दो उदाहरण हमारे सामने हैं, और हम ये बात नौजवान पीढ़ी से कहेंगे, जरूर कहेंगे कि आप सरकार के भरोसे मत रहो, हो सकता है सरकार आपके भरोसे हो। और मेरे ऊपर तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट बनी है उसमें मैं आपको देखो, लोग कहते हैं कि हो सकता है सरकार आपके लिए। तो आज जो एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल देश के सामने खड़ा है, एक जखनी नहीं बनाया, लोग जखनी लेके नहीं आते, लोग जखनी जैसा गांव बनाने के लिए मुझे बुलाते हैं। मैं तो लोगों से कहता कि सरकार ने कोई तालाब नहीं बनाए, हमारे आजादी के पहले 25 लाख तालाब थे। आप राजस्थान का जल प्रबंधन देख लीजिए, बुंदेलखंड का जल प्रबंधन देख लीजिए, हो सकता है मराठाओं का जल प्रबंधन अलग हो सकता है, बुंदेलों का हो, चंदेलों का हो, प्रतिहारों का हो, परिहारों का हो, चौहानों का हो, लेकिन सबका एक ही काम रहा है, जल बचाना। सुख में भी तालाब बनते थे और दुख में भी तालाब बनते थे। किसी के पुत्र पैदा हुआ उसने तालाब बना दिया, दुख हुआ माँ पिता की स्मृति में तालाब बना दिया, कुआं बना दिया। इसके बाद कहीं हमारे अकाल पड़ा, राजा ने तालाब बनवा दिया। तालाब बनाना, बावड़ी बनाना, एक जंगल को तैयार करने में, बाघ को तैयार करने में 25-30 साल लगते हैं, वो 5 मिनट में काट जाता है। हमको पानी का जो बेटा है वो पेड़ है, और क्या कोई पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र मर जाए? जहाँ पेड़ होंगे पानी जरूर आएगा। पेड़, अम्मा मेरी कहती थी कि जहाँ पेड़ होगा वहाँ पानी आएगा। और तुम बड़ा काम मत करो, ये मत करो कि पेड़ के ऊपर बड़ा पेड़ लगाओ, आम का लगाओ, तुम तुलसी का लगाओ, अरहर की दाल लगाओ, तुम नींबू लगाओ, करौंदा लगाओ, सहजन लगाओ, छोटे पेड़ लगाओ जिसकी पत्ती खेत में गिरे और उससे जैविक खाद बन जाए। छोटे छोटे प्रयोग ही बड़े परिणाम लाते हैं। हिमालय की यात्रा भी हम अपने गांव से करेंगे तो 2 कदम से शुरू होगी। पर अंधेरा अंधेरा मत चिल्लाओ, कोसो नहीं किसी को, कोसने से अच्छा बेहतर है कि तुम एक दीपक लो और एक कमरे में ही सही उजाला करने की कोशिश करो, साधना करो, साधन तुम्हारे पास आ जाएंगे।
0: ये चीज जो आपने कहा कि पेड़ जो है वो पानी का बेटा है
1: जी।
0: और इस पे तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी बहुत अच्छा सेवा हो रहा है, और किसानों के साथ मिलकर के उनके खेती में पेड़ लगाने का, मिक्स क्रॉपिंग भी कह रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कह रहे हैं, भले आजकल नाम

0: मेड़ पर पेड़ होगा, मेड़ से पानी रुकेगा तो कहाँ जाएगा? नारे में। नारे माने हर नदी का निर्माण छोटे से नाले से होता है, नारे से। और भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ से निकलती है छोटी होती है, वो एक नारा ही होता है। और नारे से पानी कहाँ जाएगा? खेत से पानी नारे में जाएगा, और नारे से नदी में जाएगा। अगर आपको पानीदार बनाना है, नदियाँ हमारे देश में 10,650 नदियाँ हैं, जिसमें 4,230 नदियाँ या तो मरने की स्थिति में या मरने वाली है या मर रही है। अगर नदी बचाना है तो खेत को पानीदार बनाने के लिए सबसे पहले मेड़बंदी करिए, और वहाँ से निकला हुआ पानी नाले में आएगा, नाले से नदी में आएगा। क्योंकि खेत में जैसे दूध में मलाई होती है, वैसे खेत में मलाई मिट्टी होती है, मिट्टी माँ। वो सॉइल जो हमारी उपजाऊ मिट्टी थी, वो बह करके नाले में चली गई, और नाले में जाने के कारण बरसात का पानी जो सारा नीरा नदियां रहती थी, वो छिड़के नदी से धीरे धीरे जाता था। पहले खेत को पानीदार बनाइए, फिर नारे को पानीदार बनाइए, तो नदियां पानीदार हो ही जाएंगी। नदियां क्या थी? हजार नाले मिलकर एक नदी बनाते थे, छोटे छोटे नाले से वो नदी बनाते थे। यमुना को देखिए, गंगा को देखिए, बड़ी बड़ी नदियां देख लीजिए आप, नर्मदा देखिए। तो इनमें सब में जो गांव से पानी जाता था, हमारे जो हमारा भारत है वो गांव का देश, हमारी सारी संस्कृतियां गांव से गई। शहर तो व्यापार का केंद्र था, शहर एक ऐसा जगह थी जहां लोगों को भाई चलो उच्च शिक्षा करनी, तो हर गांव में डिग्री कॉलेज नहीं हो सकते, भाई शहर बना दो। भाई अभी मैं वहां गया था वहां मगध विश्वविद्यालय है, मगध विश्वविद्यालय को एक संस्था ने जमीन सारी दान दी, तो लोग मगध विश्वविद्यालय उस समय दिया दान, हजारों एकड़ जमीन दान दिया। तो वो जो संस्थाएं सामाजिक, आज ईश्वरी हमारे विश्वविद्यालय है, हमारी जो ब्रह्म कुमारी है, दुनिया के अंदर ब्रह्म कुमारी जी ने कितना बड़ा काम किया, कोई कल्पना कर सकता है? इतने कम समय में दुनिया के अंदर ब्रह्म कुमारी की एक छवि है। अगर कहीं देखना है और उसको समझना है, तो आपको मैं बार बार ये बात अपील करता हूँ कि ब्रह्म कुमारी संस्था में जरूर 2-4 दिन जाना चाहिए। आप अपने बच्चों को 6 माह में, वैसे तो 1 महीने में अपने बच्चे को छुट्टी के दिन जरूर भेजिए, जहाँ केंद्र हो। हम नहीं कहते माउंट आबू जाए, जहाँ भी केंद्र आप पहुँच जाए। मेरे ऊपर प्रभाव है, मेरे ऊपर तो प्रभाव है, क्योंकि जब जब मैं परेशान होता हूँ, मुझे मानसिक रूप से कोई बात होती है, तो ब्रह्म कुमारी बहनों के पास जाता हूँ, या ब्रह्म कुमारी मैंने औरैया केंद्र था, वहां भी मैं 2 बार गया। तो जहां जहां कोई ऐसा मुझे लगता है, लखनऊ के केंद्र में गया हूँ, मैं दिल्ली के केंद्र में गया हूँ, तो मुझे कहीं अगर मेरे समझ में आता है मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, तो आप उन तपक जिन्होंने तप किया है, ब्रह्म कुमारी ने, भाई बहनों ने, ब्रह्म कुमारों ने तप किया है, और तपने तप से जो भगवान शंकर पृथ्वी को अपने ऊपर शेषनाग रखे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या स्थल बनाया है, ये साधारण बात नहीं है। उमाशंकर पांडे ने बड़ा काम नहीं किया है, बहुत छोटा सा काम किया है, लेकिन देश के लाखों किसानों ने,
1: आपने भले छोटा सा काम किया है, लेकिन उस छोटे से काम में मैं तो यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत को एक उत्तर दे दिया है कि भाई जल का जो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से हमारे भाई उमाशंकर जी ने बहुत सहज रीति दिया है। लेकिन अभी आपके लिए कुछ कठिन सवाल, ये सवाल मैं आपसे रैपिड फायर की तरह पूछूंगा और आपको इनका जवाब एक शब्द में या तुरंत तुरंत देना होगा।
0: जी।
1: तो सबसे पहला सवाल, भारत क्या है?
0: भारत गांव का देश है।
1: भारतीयता क्या है?
0: देश के लिए मर मिटना, ये भारतीयता का पहला गुण है।
1: जल क्या है?
0: जगदीश का एक रूप है जो जिसमें जीवन समाहित।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल जगदीश का एक रूप है जिसमें जीवन समाहित है। सेवा क्या है?
0: किसी भी व्यक्ति को हमारे किए गए कृत्य से खुशी और शांति मिले अपनेपन के साथ, वही सेवा है।
1: खुशी और शांति मिले अपनेपन के साथ, वो सेवा है। आत्मीयता क्या है?
0: व्यक्ति को विश्वास हो, मैं अगर इनके पास भूखा हूँ जाऊंगा तो मेरे कहने से तुरंत भोजन मिल जाएगा।
1: आत्मीयता, वाह, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने। शांति क्या है?
0: शांति खोज है, और इसको पाने के लिए गौतम बुद्ध जैसे और हमारे महावीर स्वामी जैसे, हमारे ब्रह्मा बाबा जैसे बड़े महापुरुषों ने सब कुछ अपना जीवन निछावर कर दिया है उसे पाने के लिए। और शांति के बाद फिर कुछ नहीं बचता, ब्रह्म का एक रूप है।
1: आपके लिए जखनी क्या है?
0: जखनी मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर मेरी जन्मभूमि है, तो उसका ऋण कभी उतार नहीं सकता हूँ, इसलिए वो मेरे लिए पवित्र भूमि है।
1: उमा शंकर कौन है?
0: देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाला, जो अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि को निछावर करना चाहता है, एक व्यक्ति है।
1: तो देश की हर वो इकाई जो देश पे मर मिटने को तैयार है, अपने सारे साधनों से देश की सेवा करने की

0: आराधना कर रहा है हर वो इकाई उमाशंकर पांडे है। तो ऐसे उमाशंकर पांडे जी ने आज हमारे साथ साथियों बहुत समय बिताया, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया और मैं समझता हूँ एक एपिसोड तो जैसे बहुत छोटा है, क्योंकि इनकी कहानियों में मैं इतना रस पा रहा था, मुझे इतना बारिश का अनुभव हो रहा था कि ऐसा लगा था कि किसी ने मेरे ऊपर दया की है और इतनी बारिश की है आज कहानियों की, अनुभवों की। और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली वो कहानियां जो माँ और उस पीढ़ी से आती है, जिस पीढ़ी के लिए आज का हमारा समाज जो है उतना श्रेष्ठ सोचता नहीं है, वो सोचता उन्हें क्या पता है सब कुछ, तो जैसे हम जानते हैं हमारे हाथ में मोबाइल क्या आ गया है, हमें लगता है सारी दुनिया पे हमारा कब्जा है। लेकिन जो वो अनुभव जो दिल को छू जाते हैं वो उमाशंकर जी ने हमारे साथ साझा किया। उमाशंकर जी आपने हमारे साथ इतना समय दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप हमें समय देंगे और हमारी जो न केवल श्रोता साथी हैं जो रेडियो मधुबन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी जो हमारी संस्था के लोग हैं जो कुछ ना कुछ रीति से जल के लिए सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आप मार्गदर्शन जरूर करेंगे।
1: पूरी तरीके से मैं पूरी तरीके से मंडल साहब आपने मुझे बुलाया, समझ मेरी पैदा की उस संस्था से, ब्रह्म कुमारी से, जिस संस्था से मेरे जैसे तमाम जो लोग भटके हुए लोग थे जिन्हें रास्ता मिला, ऐसी संस्था के साथ मुझे आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। जहाँ भी मुझे ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा सदैव सारे काम छोड़ करके, यही एक ऐसी संस्था है जो जिसमें बहनें हमारी तप करती तपस्या करती हैं। मेरी माँ कहती थी कुआ की पूजा करो, कुएं की पूजा करो। मेरी माँ ये बात कहती थी, बचपन से कुएं की पूजा होती थी, नदी की पूजा होती थी, तालाब की पूजा होती थी, और पानी को आदर दो, जगदीश है, जो कुछ मांगोगे सब कुछ मिलेगा। निकट भविष्य में मुझे आपके साथ मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और जहाँ जिस लायक मेरे पास छोटा सा ज्ञान है, जल जगदीश का ज्ञान है, मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मेरी माँ
0: यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ठीक लगे क्या आप अपने माता पिता का नाम हमारे साथियों को बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ आपकी माता से। आपके
1: मेरी पूज्य माता जी का नाम था सुमित्रा पांडे, मेरे पिताजी का नाम था पूज्य विजय बहादुर पांडे। तो हम लोगों ने जो कुछ भी है आज वो नहीं है इस लोक में, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ।
0: लेकिन मैं समझता हूँ सुमित्रा जी ने हमें एक ऐसा लक्ष्मण दिया है जिस लक्ष्मण के मन में एक लक्ष्य पक्का है कि भारत देश में से जल की समस्या को मिटाना है, भारत को जल समृद्ध राष्ट्र बनाना है, और भारत को उस मुकाम पे लेके जाना है जिस मुकाम से लोगों की जो ये तृष्णा है, चाहे वो जल की तृष्णा हो या शांति की तृष्णा हो, दोनों पूर्ण हो सके। तो उमाशंकर जी आप सच में बहुत धन्य हैं कि आपने इतना सुंदर सानिध्य अपने आसपास पाया और उसको बरकरार रखा, और आज भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रकृति माँ की सेवा कर रहे हैं।
1: पूरा मुझे ये इस बात का गर्व है और रहेगा कि मेरा जन्म भारत में हुआ। प्रकृति ने ये तय है, मेरी माँ कहती थी कि तुम कहाँ जन्म लोगे ये तुम्हारे बस में नहीं, हिंदुस्तान में जन्म लोगे या अमेरिका में लोगे ये तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारे माँ बाप कौन होंगे ये भी तुम्हारे बस में नहीं, तुम किस जाति धर्म में जन्म लोगे ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। किंतु वो भाग्यशाली लोग हैं जिनका भारत में जन्म होता है। ये बुद्ध की भूमि, ये राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि, ये ब्रह्मा बाबा की भूमि है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, निकट भविष्य में भी मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा और मार्गदर्शन लेता रहूंगा। जब तक व्यक्ति सीखना चाहता है तभी तक व्यक्ति जीवित है, और मुझे लगता है जो बहनों का तप है, ब्रह्म कुमारी के भाइयों का तप है, उस तप का थोड़ा बहुत हमको मिलेगा तो हम धन्य हो जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। सुना साथियों, जो उमाशंकर जी ने हमारे साथ कहा कि जब तक व्यक्ति सीखना चाहता है तब तक वो जीवित है, और जब तक वो जीवित है इसका मतलब जल उसके अंदर प्रवाहित है। जल के प्रवाह को बचाना, जल को सुरक्षा प्रदान करना, जल के साथ ऐसा संबंध रखना जैसे कि एक मित्र के साथ संबंध हो, ये तय करता है मेरा, आपका और हम सबका आज और कल। जल नहीं तो कल नहीं, लेकिन हम कहेंगे जल ही जीवन को सफल भी बनाता है। तो साथियों, उमाशंकर जी के साथ आपने जल के प्रति अपने जीवन में एक नया बदलाव लाने का प्रयास जरूर करना है, ऐसा संकल्प लिया होगा, जैसे उन्होंने कहा कि आप अपने घर में बूंद बूंद बचाने का प्रयास करें, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एक वाटर ऑडिट करें कि भाई मेरे आज के जीवन में, आज के दिनचर्या में कितना पानी मैं व्यय

करता हूँ और कितना मैं बचा सकता हूँ। तो इस छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मैं समझता हूँ हम बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। एक एक व्यक्ति उमाशंकर पांडे जैसा बन सकता है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित उमाशंकर पांडे जी, जिनको जल प्रहरी के नाम से जाना जाता है, जो आज न केवल एक छोटे गांव जखनी को पूरे देश के मानचित्र पर जल ग्राम की तरह ला चुके हैं, आज वो पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि एक इकाई, यशस्वी इकाई अपने पूरे देश को यशस्वी बना सकती है। साथियों, यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप हमसे इसी प्रकार मिलते रहिएगा। अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर से आएंगे एक और हस्ती के साथ और जानेंगे कैसे उन्होंने भारत को यशस्वी बनाया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। 90.4 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, जल जरूर बचाते रहिए। नमस्कार।

0: Bonaire Awaz 107.8 FM World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. Khush raho, khushiyan baato.
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था।

0: बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे। परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद है। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा। परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल, तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो? उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
1: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
2: देखो, देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो, क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
0: जी हां।
2: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
3: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है, वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
0: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
2: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु

0: ऐसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
2: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
3: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराहनगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी आपने मेरी एक कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
0: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
1: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मेरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि ये भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु ये सिद्धांत चित्त में ठहर न सका, क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं। परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी, और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका, और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री राम कृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए, और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही।

0: परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
1: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहलकर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
1: इधर इन तीन दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था। ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
1: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
0: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी, उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन

0: कथन करने का अपूर्व कौशल था।
1: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
2: सन 1884 ईस्वी में इसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है। नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
2: सब जीवों पर दया कहते ही श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्ध बाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
2: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

थे स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: हमारे पास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जी हाँ, हमारे पास बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन सेल्फ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब बात की तो सामने आई बात कि हमारी अपनी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही आती है, हमें अपनी जिम्मेवारी लेना आना चाहिए। और उसमें एक बात जो सामने आई थी वो कि जो कुछ भी फीलिंग या थॉट्स क्रिएट होते हैं वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, ना कोई और मेरे अंदर आके क्रिएट कर सकता है, ना मुझे वो फील करवा सकता है। तो जहां मैं दुख के बारे में अगर सोचती हूं कि जितनी भी परेशानी मेरी जिंदगी में आ रही है वो भी मैंने क्रिएट की है, तो दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि जहां पर भी खुशी की बात है, जहां पर भी प्यार की बात है, वो भी मैंने अपने आप ही क्रिएट की है। सो अगेन यू नो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक एम्पावरिंग फैक्टर आ जाता है कि मैं खुद क्रिएट कर सकती हूं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा मुझे, कैसे मैं हो सकती हूं अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई, अभी तक सारी जिम्मेवारियां उठा रही थी, अब मतलब एक और जिम्मेवारी उठा रही थी वो ये कि मुझे मेरी जिम्मेवारी भी उठानी है। नहीं तो अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि चलो मेरी माँ उठाएगी, मेरे बच्चे उठाएंगे, मेरे हस्बैंड उठाएंगे, कोई ना कोई तो होगा, या फिर अल्टीमेटली
2: जो वो जिम्मेवारी

0: हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन मतलब हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा. सो आई एम सेइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट. लेट्स से मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये मौसम ऐसा क्यों है? मौसम रिस्पॉन्सिबल है मेरी तकलीफ के लिए. मौसम जैसा है वैसा है, मेरी तकलीफ का जिम्मेवार मैं हूं और मैं जितना इजिली चाहूं उसको मैं हल्का कर सकता हूं. सो जब भी रिएक्ट करें तुरंत स्टॉप करें, अपना वो 1 मिनट ब्रेक वहीं पर ले लें और अपने आप को याद दिलाएं कि ये जो मैंने रिस्पॉन्स अभी अभी क्रिएट किया, आई एम रिस्पॉन्सिबल. सो लेट मी बी केयरफुल विद व्हाट आई एम चूजिंग एज माय रिस्पॉन्स. अब दूसरी चीज हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इवन वो जो बिलीव्स, वो जो परसेप्शंस जो मेरे अंदर पहले से ही डीप रूटेड हैं, उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं. क्योंकि विच मीन्स दैट आई कैनॉट इवन ब्लेम द पास्ट.
1: ये सब कॉन्शियस. ओहो, आजकल तो इतना ज्यादा बार बात ही करती है कि हाउ आई माई सबकॉन्शियस रिएक्ट. मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता. yes. मुझे पता ही नहीं चलता हाउ आई रिएक्ट.
0: yes. क्योंकि हमारा जो एक्शन और रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा उस पर बेस्ड होता है कि जो मैंने पहले अपने अंदर भरा हुआ है, कल की इन्फॉर्मेशन जो भरी है, 10 साल पहले जो हुआ था, बचपन में जो हुआ था. हमारी आज जो पर्सनालिटी है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ जो यू नो इन माय चाइल्डहुड क्या मेरे अंदर फीड हुआ, कौन से मेरे बिलीव्स, मेरे परसेप्शंस बचपन से जो बने हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पर आज मेरी पर्सनालिटी पर वर्क करते हैं. तो फिर हम तुरंत कहते हैं कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं. यू नो फॉर एग्जाम्पल, आपका चाइल्डहुड किस वातावरण में था, आपके पेरेंट्स ने कैसे आपको ब्रिंग अप किया, तो वो सब चीजें आपके बिलीव्स और परसेप्शंस को बनाता है. लेकिन इसका मतलब भी हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं और कुछ नहीं तो अपने ही पास्ट को ब्लेम कर रहे हैं. लेकिन सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही ये है कि टू बी अवेयर कि ये सारी चीजें मेरे अंदर पास्ट में अक्यूमुलेट हुई हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है. वो जो आपने कहा ना सबकॉन्शियस, मतलब जो अनकॉन्शियस लेवल पर भरा हुआ है उसको मुझे अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा बिलीफ है, और फिर उसको चैलेंज करके उसको चेंज भी करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अगर मेरी जो आज व्यवहार है इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो भी तो बाय ब्लेमिंग द पास्ट देन आई एम कंटिन्यूइंग टू लिव इन द पेन. कि आज मैं दर्द में इसलिए जी रही हूं क्योंकि बचपन से मेरे साथ ऐसा हुआ. आई मेट अ लेडी हु वॉज फिजिकली अब्यूज इन हर चाइल्डहुड एंड लगभग आई थिंक 25 या 30 साल उसने वो बात को पकड़ कर रखा हुआ था. एंड Whatever she is today, she feels it's because of her past. And वो कहीं ना कहीं उसमें से निकलने का तो प्रयास ही नहीं किया क्योंकि सोचा कि इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है. तो जो bitterness है अंदर, जो दर्द है, हर एक को किस पर ब्लेम कर दिया कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ. तो मेरे अंदर ये bitterness है कि ये जो दुनिया है ये अच्छी नहीं, रिश्ते जो है ये अच्छे नहीं. So now my present and my future वो भी तो दर्द में ही चल रहा है. लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ भी है जिसने मेरा कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नाउ टू चेंज. एंड रियली वाइल वॉचिंग दिस प्रोग्राम रेगुलरली, बिकॉज वो अपने ऊपर बहुत अच्छा मेहनत कर रही है इस प्रोग्राम को देखकर, और जिस दिन उसको ये समझ में आया कि मेरा जो दर्द है वो मैं क्रिएट करता हूं, नो वन एल्स कैन हर्ट मी, शी जस्ट लेट इट गो लाइक दैट. Just like that. And after the program, she got up and she said, after 25 years, today I'm free. अब जो वो पास्ट में इंसिडेंट हुआ था वो तो 25 साल पहले की बात है, लेकिन आज एक मिनट में आपने अपने आप को उस दर्द से मुक्त कर दिया जब आपने रियलाइज किया कि ये क्रिएट कौन कर रहा है.
1: मैंने किया क्रिएट. लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं ऐसा शिवानी? अगर ये इतना आसान है तो हम उसको पकड़े, और हम में से हर कोई पकड़े रहता है आज का नहीं तो आने वाले का डर या पास्ट का कोई ना कोई चीज को, और अगर हम टटोले तो हमने अभी भी पकड़ी हुई होंगे वो. हम क्यों नहीं छोड़ते?
0: कहीं ना कहीं हमें ये भी तो नहीं पता कि हमने पकड़ा हुआ है.
1: हाँ.
0: हमने सोच रहे हैं कि ये जो मैं दर्द, दैट इज वाई हम वो बात, मतलब भले वो बहुत रेपिटेटिव हो रही है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट एंड फीलिंग, ये आप दिन में जितनी बार भी अपने आप को बोलोगे वो कम है. क्योंकि बार बार बोलने के बावजूद भी हम रिएक्ट करते हैं. तो अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया है लेकिन आज जो मैं दर्द क्रिएट कर रही हूं वो तो फिर भी मेरी क्रिएशन है. अभी क्या हो रहा है जो आपने कहा हम क्यों

0: छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं नहीं क्रिएट कर रहे हैं। आपने किया ही ऐसा
1: कि मैं कुछ दर्द हो ही रहा है, मैं छोड़ ही नहीं सकती।
0: इट्स जस्ट दैट इट हैज टू हिट कि ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ लेट गो।
1: और मैं क्रिएट कैसे कर रही हूँ, उस थॉट को बार बार याद करके, उस इंसिडेंस को याद करके।
0: एब्सोल्युटली,
1: एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, अगर हम देखें अपने साथ तो बार बार उस एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, फिर वो सब कुछ जो हुआ उस टाइम पे वो सब,
0: तो हम बार बार उस दर्द से गुजरते हैं एंड कहीं ना कहीं फिर हमारे वो यू नो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो दर्द का पैटर्न, और वो एक होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे लाइन आपने बनाई, फिर उसके ऊपर बनाते गए, तो फिर वो कितना डीप हो जाता है वो, तो फिर वो लगता है कि अब ये हील नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसी थॉट को फिर क्रिएट किया। अब वो जो एक मिनट हमें स्टॉप करके पॉजिटिव करना है, तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, और उसको तो आप कितनी बार भी क्रिएट करते रहो, इट इज हेल्दी फॉर यू। लेकिन वो बार बार पास्ट का इंसिडेंट जो हम पकड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को भी कि नहीं मेरा बचपन ही ऐसा था, या मुझे तो कई बार कहते हैं मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है ना, सी सो वट एवर आई एम टूडे इट इज बिकॉज मुझे बचपन में यही सिखाया गया है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी वो बिलीफ्स हैं जो बचपन से बने हैं, आज उनको चेक करें, अगर उनमें से कोई ऐसा बिलीफ है जो दर्द के लिए जिम्मेवार है, स्टॉप, चेक, चेंज। इवन एज सिंपल एज टेंशन तो नॉर्मल ही है ना, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि वो नॉर्मल नहीं है, भले मुझे बचपन से सिखाया गया था कि एग्जाम से पहले टेंशन तो होती ही है, रिजल्ट से पहले, तो ये मैंने सोचा नॉर्मल है, बट एक्चुअली नो।
1: लेकिन
0: Yeah, many people say this, no pain, no gain, because they feel कि जब तक वो दर्द का अनुभव नहीं करेंगे तब तक उनको खुशी का महत्व नहीं पता चलेगा। But it's a choice. I always ask those people कि क्या आपको स्वास्थ्य का महत्व तब पता चलता है जब आप बीमार पड़ते हैं? So do you want to say कि मैं हेल्दी भी रहूं लेकिन मैं बीमार भी पड़ती रहूं बीच बीच में, तभी मुझे पता चले? डज एनीबडी एवर से दैट? तो फिर तो आप अपने शरीर का मत ध्यान रखो उतना, ताकि बीच बीच में बीमार पड़ते रहो। डू यू एवर वर्क इन लाइफ विद दिस फोकस कि नहीं कभी कभी तो बीमार पड़ना चाहिए? हूएवर वर्क्स लाइक दैट, वी ऑलवेज से कि नहीं हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। तो अगर शरीर हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, ये भी तो हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। हाउ कैन वी से कि जब तक दर्द नहीं होगा
1: तो पता ही नहीं चलेगा? अच्छा, अनदर थिंग विच सम पीपल से, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द में रहना अच्छा लगता है, बट आई डोंट माइंड पेन।
0: या दैट्स बिकॉज आई डोंट सी एनी अदर वे टू कम आउट ऑफ इट। से वही बात होती है ना, जब कोई चीज से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो हमने अपने आप को उसी के अंदर फिट कर लिया है, और हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, और उस दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है। एंड इट्स नॉट सम, आई थिंक लॉट ऑफ अस, हम में से मेजोरिटी ने दर्द के साथ जीना ही सीख लिया है। और कहीं ना कहीं आई फील विद अ प्रोग्राम लाइक दिस, दिस कम्स एंड हिट्स कि रियली इज देयर अ वे कि हम दर्द से भी बाहर निकल सकते हैं? हमने तो सोचा था ये बीमारी हमारे साथ एंड तक चलने वाली है, यू नो, हमने उस बीमारी को स्वीकार कर लिया था। अब क्या होता है, जैसे हम ऐसे कोई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओ यस, बट देन द अदर थिंग दैट हिट्स इज कि वो सारा काम मुझे करना पड़ेगा,
1: वो चेंज मुझे होना पड़ेगा। आई मेट समबडी एंड शी सेड मुझे पता है मैं बहुत दर्द में हूं, लेकिन मैं इस थॉट को भेज जाने नहीं दे सकती। तो what we can do is maybe create a positive thought.
0: That's all that we have
1: Let
0: to do.
1: That thought also stay. जो thought आपके पास है जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई है उसको भी रहने दे, लेकिन एक हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें।
0: इसलिए नेगेटिव को खत्म नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, आप पॉजिटिव क्रिएट करो। इट्स लाइक यू नो, वो कहते हैं कि एक बर्तन गंदे पानी से भरा हुआ है, आप उस बर्तन को खाली नहीं कर पा रहे, आप ऊपर से अच्छा पानी डालते जाओ, फाइनली
1: गंदा पानी
0: वाला निकल जाएगा। सो यस, और परमात्मा आकर यही तो करते हैं, परमात्मा शिव बाबा ज्ञान की बूंद बूंद बूंद डालते जाते हैं, थोड़े समय के बाद वो बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो जाता है। अगर हम पहले वेट करें कि बुद्धि से सारे जो वाइसेस हैं, सारी जो नेगेटिविटी है वो पहले खाली हो और फिर ज्ञान उसके अंदर भरे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ज्ञान जितना भरता जाता उतना ये जो नकारात्मक और व्यर्थ बातें हैं वो अपने आप खाली होती जाती। तो जैसे वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स, वी कैन नॉट

0: ब्लेम पास्ट ऑल्सो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है। और तीसरा जो आपने पहले ही कहा कि नो पर्सन इवेंट और सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस, अपनी खुशी की जिम्मेवारी, नहीं तो कोई ना कोई कंडीशन हमेशा बनी हुई है जिस ये होगा तो मैं खुश रहूंगा। इवन इन यू नो व्हेन पीपल सी देयर पर्पस ऑफ लाइफ तो वो कहेंगे मुझे ये गोल अचीव करना है, ये मेरा एम्बिशन है, मुझे ये बनना है, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। व्हाट डज दैट मीन? मतलब आप इतना टाइम दर्द में रहेंगे और फिर एक साल के बाद या पांच साल के बाद जब आप उस एम्बिशन को अचीव कर लेंगे तब आप खुश होंगे? इट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपने पूरा प्रोसेस ही दर्द में बिताया एंड फिर आप खुश होंगे? सो परमात्मा कहते हैं खुश होंगे नहीं, खुश रहकर आप उस गोल को अचीव करेंगे। दर्द में जाके सीढ़ी नहीं चढ़नी है, सीढ़ी के एंड पर पहुंच तो जाएंगे आप अपने लैडर में जो आपने अपने लिए सेट किया, लेकिन इमेजिन अगर आपको एक एक स्टेप दर्द में चढ़ना पड़े तो हाउ विल बी द क्लाइंब?
1: ओहो, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट। इन फैक्ट इट जस्ट वन चेंज ऑफ थॉट, एक परसेप्शन ही तो चेंज करना है।
0: That I have to be happy and do this. अब अगर ये जो हमारा ladder है of goals and ambitions, अगर हम एक एक step दर्द में चढ़े तो शायद जब हम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे how will the feeling be?
1: We'll be too tired to enjoy that.
0: So we will not really enjoy. और फिर वहां पहुंचने के बाद तब तक हम अपना next goal set कर देंगे और फिर दर्द में चलेंगे। और इसीलिए हमने इस सीरीज की, इस प्रोग्राम की शुरुआत ही इस बात से की थी कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज द जर्नी। तो खुशी को व्यक्तियों पर भी नहीं डिपेंडेंट करना है, इवेंट्स पर, सिचुएशंस पर। हम लोग आज अगर सारा दिन में चेक करें ना, हमने बहुत चीजों पर डिपेंड किया हुआ है। मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो खुशी होगी, प्रमोशन होगा तो खुशी होगी, या छोटी, इवन छोटी छोटी बात, अगर बहन ने सारा दिन में खाना बनाया, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, रात को मेरे हस्बैंड आएंगे वो आकर अप्रिशिएट करेंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो द होल डे वाइल कुकिंग द फूड शी क्रिएट्स दैट सीन, यू नो दैट माई हस्बैंड विल कम इन द नाइट, ही विल अप्रिशिएट द फूड एंड शी इज वेटिंग कि जब ये सीन होगा शी विल बी वेरी हैप्पी। अब वो आए, वो अपने किसी मूड में है या अपने किसी टेंशन में है, चुपचाप खाना खा लिया, कुछ बोला ही नहीं, खुशी कहां गई?
1: और वो वेट ही चलती रहेगी फिर।
0: देन और अब वो दर्द हो गया तो आपने सारा कुछ तो किया।
1: अच्छा, सबसे बड़ी बात है आप उनको ये तो कह नहीं पाते कि आपने अप्रिशिएट नहीं किया, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि खुद को ही नहीं पता चली ये बात।
0: वो भी कह देते हैं, हम तो कई बार आपने बोला भी नहीं, मैंने सारा दिन इतनी मेहनत की, आपने ये भी नहीं बोला कि खाना अच्छा है। तो आप देखो मेरी खुशी कितनी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है कि जब तक आप नहीं ये बोलोगे कि ये खाना अच्छा बना, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, लेकिन जब तक चार लोगों ने ये नहीं बोला कि आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, तब तक वो खुशी का अनुभव नहीं हो रहा। सो आई कीप वेटिंग वेटिंग कि कौन अप्रिशिएट करेगा, कितने डिपेंडेंट। और फिर अगर चार लोगों ने बोल दिया बहुत सुंदर है, लेकिन किसी एक ने बोल दिया
1: कि नहीं सूट खराब है, ओफो,
0: यस, हाउ मच माई स्टेट ऑफ माइंड इज एवरी टाइम डिपेंडेंट।
1: और कितने क्षण भंगुर है, मतलब कितनी देर के लिए है, इट्स जस्ट देयर एंड देन गॉन, टच एंड गो।
0: सो दिस इज नॉट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अगेन डिपेंडेंसी, कि हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये कि जैसे हमारी मन की स्थिति का कोई भी जिम्मेवार नहीं है, औरों की मन की स्थिति के हम जिम्मेवार नहीं है। दिस इज वेरी वेरी very important.
1: And we get into so much of guilt.
0: Yes.
1: कि मेरी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, कि मैं ये कर देता हूँ या मैं कुछ ऐसे भी। उफ, yes, so many times even children. कितनी बार देखा गया है grown up children सिर्फ ये कि मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि मैं ऐसे act करूँ, वो act करते हैं। Especially लड़के और mother के जो relationship में देखा है, मतलब जो कितनी बार की उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने हमारे इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया, तो मैं उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ये।
0: सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज के अगर कोई हमारे सामने दर्द में है, परिवार का, फैमिली, कोई मेंबर या ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं वो यू नो इमोशनल ब्लैकमेल जो वर्ड हम यूज करते हैं, कि वो अपने इमोशंस के साथ हमें थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, आपकी वजह से मैं ये दर्द में हूं, आपकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। और जब मुझे कोई बार बार ये कहता है कि आपकी वजह से मैं दर्द में हूं, आपकी वजह से मैं दर्द में हूं, मैं दर्द में चले जाती हूं।
1: अरे मैं सोचने लग जाती हूं, मैं मान लेती हूं, इवन इफ आई नो कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ, इट्स जस्ट

0: thinking ki shayad I am responsible, you know.
1: So I am not responsible for anyone else's pain or for anyone else's happiness. Like no one else is responsible for my pain and my happiness, I am not responsible for anyone else's pain or anyone else's happiness. Haan, bhale hum apne sambandhon mein jitni hamari capacity hum sab kuch karein, lekin is baat se dard mein chale jayein ki dusra meri wajah se dard mein hai, kyunki sirf wo aisa keh rahe hain. Wo isliye keh rahe hain kyunki wo khud nahi jante.
0: Unko nahi pata hai, bilkul.
1: Wo khud nahi jante, lekin unko help karne ki bajaye hum hi victimize ho jate hain ki wo dard mein isliye hain kyunki maine aisa kuch kiya. Again we'll have to remember, मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन उनका दर्द किसने क्रिएट किया? वो उन्होंने किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमारी जो कहे ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत हल्की हो जाती है. दिस डज नॉट मीन कि हम इनसेंसिटिव हो जाएं. अगेन देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन. लेकिन हम दर्द में ना चले जाएं ये सोचकर कि औरों का दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम दर्द में चले गए ये सोचकर फिर हम उनको क्या ट्रांसमिट करेंगे.
0: जहां हम खुद दर्द में चले जाते हैं और वो दर्द में है तो हम उनकी हेल्प ही नहीं कर पाते बिल्कुल.
1: एब्सोल्युटली,
0: क्योंकि हम तो गिल्ट में चले गए.
1: तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस चीज के लिए नहीं है. अब आप देखो वी एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड सारा दिन. हमें लगता है हम अपनी मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन औरों की मन की स्थिति के लिए हम रिस्पॉन्सिबल.
0: मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसको खुशी दी, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ.
1: द होल फ्लो ऑफ एनर्जी गोज द अदर वे अराउंड. हम समझते मेरे मन की स्थिति के जिम्मेवार और लोग हैं और औरों की मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं हूं. वेयर इज द इक्वेशन इज टोटली द अदर वे अराउंड. अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार मैं. आई हैव टू रिमेम्बर दैट एंड आई हैव टू रिमेम्बर कि औरों की मन की स्थिति के जिम्मेवार वो है. तो अगर वो किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं उनको उस पर वर्क करना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी देयर जर्नी. मैं उसमें क्या हेल्प कर सकती हूं उनके लिए, दैट इज ओके. बट फाइनली मैं किसी को दर्द से मुक्त नहीं कर सकती. दे विल हैव टू डू दैट. फॉरगेट एनीवन एल्स. आई माय पर्सनल एक्सपीरियंस वुड से कि इवन गॉड कैन नॉट फ्री मी फ्रॉम माय पेन जस्ट बाय मैजिक. आई कैन यूज हिज पावर, यूज हिज नॉलेज टू फ्री माय सेल्फ फ्रॉम माय पेन. बट इफ ही वांट्स कि ही शुड फ्री मी फ्रॉम माय पेन, नो ही कांट. नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी.
0: ओ, अगर मैं पकड़ के बैठी हुई होंगी उस थॉट को, सिस्टर शिवानी, अगर मैंने छोड़ना ही नहीं है उस पूरे थॉट प्रोसेस को, तो कोई सचमुच में भगवान भी आके नहीं कर सकता.
1: एग्जैक्टली. तभी कहा जाता है कि भगवान भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो और मनुष्यात्मा क्या करेगी. भगवान भी ना हमें दर्द से मुक्त कर सकता है और ना परमात्मा हमें खुशी दे सकता है. परमात्मा हमें शक्ति दे सकता है उसको जेनरेट करने की. परमात्मा हमें नॉलेज दे सकता है कि मुझे कैसे क्रिएट करना है, लेकिन परमात्मा ऐसे ही दे दे, इट डजंट हैपन. व्हाई? बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट एंड फीलिंग, नॉट गॉड एंड नॉट एनी अदर ह्यूमन बींग. जिस दिन ये लाइन पूरे यहां पर अच्छी तरह से फिट हो जाए, द वे ऑफ लुकिंग एट एवरीथिंग चेंजेस. एब्सोल्युटली. एंड फिर सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ जाता है.
0: अच्छा, लेकिन अगर हम सिचुएशन देते हैं, अगर हम देखें कि हमें खुशी जो हमारा क्रिएट, मैंने ही क्रिएट किया, अगर अब मैं देखती हूं तो, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी थी और उसने मुझे खुशी दी या मुझे दुख देना शुरू हुआ, मेरा ये मन करता है कि सिचुएशन बदल जाए तो मैं जो है खुश हो जाऊंगी. तो यहां मैं परमात्मा से ये एक्सपेक्ट कर रही होती हूं कि वो सिचुएशन बदल देगा.
1: परमात्मा से भी जो मदद लेनी है वो सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं लेनी.
0: बेसिकली तो यही करते हैं.
1: हाँ, तो सारा दिन भगवान के आगे अर्जी कौन सी डालते हैं, यही तो करते हैं. मेरा ये ठीक कर दो, मेरा ये, उनको ठीक कर दो, ये भी अर्जी डालते हैं. मुझे शक्ति लेनी है और मुझे अपने ऊपर काम करना है. तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो परमात्मा की मदद हमेशा साथ में है. सिर्फ अर्जी डालेंगे कि सिचुएशन चेंज कर दो, इट विल नॉट हैपन.
0: और इनफैक्ट मैं तो ये कभी समझ ही नहीं पाती थी कि अपनी मदद कैसे करनी है. मदद तो हमेशा दूसरों की करनी होती है. तो ये यू नो दिस इज लाइक आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे कि अपनी मदद मैं कैसे करूं, मतलब अपनी मदद क्या करनी है. मदद तो हमेशा दूसरे के लिए करनी होती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये, जिसको समझना बहुत जरूरी है. सबसे पहली मदद तो अपनी करनी है.
1: अपनी ही, हर एक अपनी ही कर सकता है. क्यों

0: कह रहे हैं कि दूसरों की करनी है, क्योंकि हमने सोचा कि हम दूसरों की थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट करते हैं. यू नो, इवन सिंपल लाइक सपोज मैं किसी बात से हर्ट हूं, तो मैं जाकर दो चार लोगों से बात करती हूं, आपको पता है मेरे साथ ये हुआ, एंड आई फील कि वो जो मेरे से फॉर अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी. लेकिन उन्होंने मुझे नहीं ठीक किया, उन्होंने जो शेयर करना है वो किया. अब मैंने क्या किया? इफ आई हैव द पावर, आई टेक दैट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एंड देन आई वर्क विद इट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इवन दिस प्रोग्राम या परमात्मा का हर एक महावाक्य जो हम इस पर शेयर कर रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं ना, लाखों की संख्या में सारे विश्व में आत्माएं इस ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन हरेक के ऊपर मैजिक तो नहीं हो रहा ना कोई कि सुनने से ही वो काम हो जाएगा. अब हरेक उसको लेकर अपने साथ क्या करता है, क्रिएट तो उसी को करना है. तो ऐसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं कि मुझे राय दो कि हाउ टू आई कम आउट ऑफ दिस, वो सिर्फ राय दे सकते हैं, बाकी काम वो तो मुझे करना होगा. हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं कि दे विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. नो वन कैन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई पेन. दे कैन से व्हाट दे वांट, दे कैन शेयर व्हाट दे वांट, दे कैन ट्रांसमिट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो, बट फाइनली आई विल हैव टू कम आउट ऑफ माई पेन. तो अनलेस आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ माई पेन, the whole world put together cannot do anything. ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और ये काम बहुत ईजी हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा आई एम द क्रिएटर. आई एम द क्रिएटर, सो आई एम द डिस्ट्रॉयर. ये दर्द मैंने क्रिएट किया था, तो इसको खत्म भी
1: मैं मुझे मेरे अपने ही हाथ में है. तो आप में से जितने भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, कई बरसों से, कई सालों से या कुछ टाइम से, अभी वक्त है कि आप अपने आप से कहें कि मैंने क्रिएट किया है तो मैं खत्म भी कर सकता हूं, और आज ही प्रयास करें कि हम उसे खत्म कर देंगे. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. जो आज हमने बात की है, जिस तरह से बातें क्लियर होती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी अपनी है. कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस जिम्मेवारी को उठाना है, मदद जो लेनी है मुझे वो अपनी लेनी है. और जो बहुत आपने आज जो बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई हमारे सभी दर्शकों के साथ, कि दूसरे के दर्द के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मुझे जिम्मेवारी अपने दर्द की उठानी है या अपनी खुशी की उठानी है. इसीलिए दूसरे की को ना मैं खुशी दे सकता हूं ना मैं उसको दर्द दे सकता हूं, उसका दर्द भी अपना क्रिएट किया हुआ है. तब हम दूसरों की मदद कैसे करेंगे, इस पर हम आगे आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत अपने होते हैं. तो आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: आप सबसे भी बार बार हम यही आग्रह करते हैं, ये प्रोग्राम आपका अपना है. जहां कोई ऐसी बात लगती है कि जो नहीं समझ में आ रही, लगता है कि ये कैसे संभव हो सकती है, या फिर आपको लगता है नहीं बात तो अच्छी है, सही बात है, पर मैं इसको लागू कैसे करूंगा, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आप ही का जो रिस्पॉन्स आता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप जरूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपको कहां लगता है कि बात समझ में नहीं आई है, या प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी साथ साथ कोशिश करती हूं, जैसे हम कोशिश करेंगे जहां जहां रुकते जाएंगे वहां हम उसको आगे लेते जाएंगे. बहुत सी बातें अभी और करनी है, लेकिन आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप अपना फीडबैक भेजें. आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999334555 0 9873 666 555 0 9999974555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमार, इसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और सेल्फ मैनेजमेंट की पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी कि मैं स्वयं के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूं, जिम्मेवार हो जाता हूं. ये जिम्मेवारी आप उठाना चाहते हैं? बिल्कुल आप उठाएंगे, तभी वो परिवर्तन संभव हो पाएगा. आज आपसे हम विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: कोयल हड़क के मस्त करे, जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे, तबले की थाप।
1: शामे पुर का झलक।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है, मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, सन 1923 भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे। भाई परमानंद जैसे प्रखर राष्ट्रवादी शिक्षक की छत्रछाया में देशभक्ति के संस्कार उनके मन में पल रहे थे। कॉलेज में गपशप भी होती, विचार मंथन भी होता और ड्रामा क्लब के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियां भी। इन सब गतिविधियों के मूल में था भारत की आजादी का विचार। अध्ययन और विमर्श दोनों साथ साथ जारी थे, पर घर में कुछ और ही माहौल था। भगत सिंह के दादाजी अपने पोते की शादी की चर्चा कर रहे थे। भगत सिंह का कोई भी तर्क उन्हें स्वीकार्य नहीं था। आखिर हार कर भगत सिंह ने अपने पिताजी को पत्र लिखा, मेरी जिंदगी मकसदे आला यानी आजादी ये हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। ये पत्र लिखकर भगत सिंह कानपुर आ गए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। विद्यार्थी जी ने उनका छद्म नाम रखा बलवंत सिंह। इस नाम से भगत सिंह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में विचार उत्तेजक लेख लिखा करते थे। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं इन्हीं लेखों से कुछ अंश। 15 नवंबर 1924 को कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला में उनका एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने विश्व प्रेम की व्याख्या की थी। वो लिखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जिस कवि सम्राट की ये अमूल्य कल्पना है, जिस विश्व प्रेम के अनुभवी

ये हृदयोद्गार है। उसकी महत्ता का वर्णन करना मनुष्य शक्ति से सर्वथा बाहर है। विश्व बंधुता, इसका अर्थ मैं तो संसार में समानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। कैसा उच्च है ये विचार, सभी अपने हों, कोई भी पराया न हो। कैसा सुखमय होगा वो समय जब संसार से परायापन सर्वथा नष्ट हो जाएगा, जिस दिन ये सिद्धांत समस्त संसार में व्यावहारिक रूप में परिणत होगा, उस दिन संसार को उन्नति के शिखर पर हम कह सकेंगे। विश्व बंधुत्व के सपने को साकार करने के उपाय बताते हुए वो आगे लिखते हैं, हमें प्रचार करना होगा समता समानता का, अत्याचार करना होगा उन पर जो इससे इनकारी हों, अराजकता फैलानी होगी उन राज्य साम्राज्यों के स्थान पर जो शक्ति मद से अंधे होकर करोड़ों की पीड़ा का कारण हो रहे हैं। क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? हमें समस्त संसार को इस सिद्धांत के स्वागत के लिए तैयार करना होगा। उस आशामयी खेती के लिए हमें खेतों में से सब कुछ उखाड़ फेंकना होगा। आगे वो भारतवासियों को ललकारते हुए लिखते हैं, ऐ विश्व बंधुता चिल्लाने वालों, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि नहीं तो आज से इस ढोंग को छोड़ दो। हमें उस विश्व प्रेम की देवी के चरणों पर तुम्हारा भी बलिदान देना होगा, क्योंकि तुम मिथ्यावादी हो। यदि सचमुच उस कल्पित समय को लाने की चेष्टा है तो आओ, पहला काम भारत का उत्थान करना होगा, गुलामी की जंजीरों को काटना होगा।

तर्क और विचार भगत सिंह की दो सबसे बड़ी खूबियां थीं, जो उन्हें दूसरे क्रांतिकारियों से अलग करती थीं। वो कहते थे कि क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। नई पीढ़ी के युवकों को ललकारते हुए बलवंत सिंह नाम से उनका ये लेख मतवाला के 16 मई 1925 के अंक में छपा था। इसमें भगत सिंह ने लिखा, युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्रधारा होकर फूट पड़ती हैं, जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, षड्यंत्री की असटी में भरा भराया तमंचा, रणरस रसिक वीर के हाथ में खड्ग, वैसे ही मनुष्य देह में युवावस्था। 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक ये झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसीलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही मार्ग हैं। वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधःपात के अंधेरे खंडक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वो देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। युवाओं को सही दिशा दिखाते हुए वो आगे लिखते हैं कि संसार के इतिहासों के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, चौकी संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहासपूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है, जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है, काल कोठरी के अंधकार में धंसकर ही वो स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। भारतीय युवाओं को जगाते हुए वो आगे कहते हैं, ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख, प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा, उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से वंदे मातरम।

में 6 बब्बर अकाली वीर फांसी पर लटका दिए गए। भगत सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए 15 मार्च 1926 के प्रताप में एक पंजाबी युवक के नाम से ये लेख लिखा। होली के दिन 27 फरवरी 1926 जब हम लोग खेलकूद में व्यस्त हो रहे थे, उसी समय इस विशाल प्रदेश के एक कोने में भीषण कांड किया जा रहा था। सुनोगे तो सिहर उठोगे, कांप उठोगे। लाहौर सेंट्रल जेल में ठीक उसी दिन 6 बब्बर अकाली वीर फांसी पर लटका दिए गए। किशन जी गड़गज, संता सिंह, दिलीप सिंह, नंद सिंह, करम सिंह और धर्म सिंह लगभग 2 वर्ष से अपने इसी अभियोग में जो उपेक्षा, जो लापरवाही ये लोग दिखा रहे थे, उसी से जाना जा सकता है कि वे इस दिन की प्रतीक्षा कितने चाव से करते थे। महीनों बाद जज महोदय ने फैसला सुनाया। 5 को फांसी, बहुतों को काला पानी अथवा देश निकाला और लंबी लंबी कैदें। अभियुक्त वीर गरज उठे, उन्होंने आकाश को अपने जय घोषों से गुंजायमान कर दिया। अपील हुई कि 5 की जगह 6 मृत्यु दंड के भागी बने। उस दिन समाचार पढ़ा कि दया के लिए अपील भेजी गई है। पंजाब सचिव ने घोषणा की कि अभी फांसी नहीं दी जाएगी। प्रतीक्षा थी, परंतु एकाएक क्या देखते हैं कि होली के दिन शोकग्रस्त लोगों का एक छोटा सा समूह उन वीरों के मृत शवों को शमशान में लिए जा रहा है। चुपचाप उनकी अंत्येष्टि क्रिया समाप्त हो गई। नगर में वही धूम थी, आने जाने वालों पर उसी प्रकार रंग डाला जा रहा था। कैसी भीषण उपेक्षा थी। यदि वे पथभ्रष्ट थे तो होने दो, उन्मत्त थे तो होने दो, वे निर्भीक देशभक्त तो थे। उन्होंने जो कुछ किया था इस अभागे देश के लिए किया था। वे अन्याय न सहन कर सके, देश की पतित व्यवस्था को न देख सके। निर्बलों पर ढाए जाने वाले अत्याचार तो उनके लिए असह्य हो उठे। आम जनता का शोषण वो बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने ललकारा और वे कूद पड़े कर्म क्षेत्र में। वे सजीव थे, वे सदृश थे। भगत सिंह तड़प कर आगे लिखते हैं, हम कायर नर पशु एक क्षण के लिए भी आनंद विलास छोड़ वीरों की मृत्यु पर आह तक भरने का साहस नहीं करते। कितनी निराशाजनक बात है। उन गरीबों का जो अपराध नौकरशाही की दृष्टि में था, उसका उन्होंने पर्याप्त दंड क्रूर नौकरशाही की भी दृष्टि में पा लिया। इस भीषण दुखांत नाटक का एक और पर्व समाप्त हो गया। भगत सिंह की बेचैनी उनके लेखों से शब्द शब्द टपकती थी। उनके विचार पढ़ने वालों के भीतर एक तूफान खड़ा कर देते थे। दरअसल विचार वही सार्थक होते हैं जो कहने वाले के जीवन में उतर जाएं। और भगत सिंह ने जो कहा वो किया भी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तारीख 24 मार्च तय थी, लेकिन जनता के आक्रोश के भय से उन्हें एक दिन पहले ही 23 मार्च की शाम को चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया और उनके शव रावी के तट पर छोड़ दिए गए। उस एकांत निर्जन में लहरें पछाड़ खाकर उनकी शहादत पर सिसकती रहीं। यूं लगता है कि जीवन में आने वाले इस पल की आहट भगत सिंह ने बहुत पहले ही सुन ली थी। शायद इसीलिए भगत सिंह ने अपनी जेल की डायरी में रूसी क्रांतिकारी वीएन फिग्नर की एक कविता लिख रखी थी। मारे गए हैं सर्वश्रेष्ठ वीर, दफना दिए गए वे चुपचाप एक निर्जन भूमि में। कोई आंसू नहीं बहे उन पर, अजनबी हाथों ने उन्हें पहुंचा दिया कब्र में। कोई सलीब नहीं, कोई घेरा नहीं, न कोई समाधि लेख जो बता सके उनके गौरवशाली नाम। घास उग रही है उन पर, एक दुर्बल पत्ती झुकी हुई जानती है इस रहस्य को। बस एकमात्र साक्षी थी उभनती लहरें जो प्रचंड आघात करती हैं तट पर, लेकिन वो प्रचंड लहरें भी नहीं ले जा सकती अलविदा के संदेश उनके सुदूर घर तक। अलविदा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये आते हैं तो कौन क्रिएट कर रहा है। बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो सिचुएशन है जो हम याद करते हैं या हमारे सामने आ रही है और फिर हम उन थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्रिएटर हूं तो मैं चेंज भी तो कर सकता हूं। कैसे करना है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, इट्स क्वाइट यू नो लाइक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं। और एक और बात जो हम पिछली कड़ी में अगर जाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने आई थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं मेरी जिंदगी में, वो रिजॉल्व कोई व्यक्ति है या नहीं, वो सिचुएशन दोबारा होती है या नहीं, मैं कर सकता हूं। इट्स अ बिग एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी सजग होनी शुरू हुई अपने शरीर के बारे में भी, बॉडी के बारे में भी और थॉट के बारे में। आगे क्या करें?
1: मूल बात तो ये समझने की है कि थॉट्स का महत्व क्या है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि विचारों पर विचार किया है ना, थॉट्स ऑन थॉट्स। हम सब ये तो जानते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं, परंतु आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि भी विचार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि विचारों में भी जीवन है ना, थॉट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ। तो इसलिए उसको कोई ऑर्डिनरी

0: चीज हम न समझे
1: थॉट्स हैव अ लाइफ
0: लाइफ आई फील
1: एनर्जी
0: आत्मा से निकले विचार
1: हाँ.
0: तो सोल इज एनर्जी तो उसकी थोड़ी तो एनर्जी उसमें भी होगी नहीं एक सचमुच एक सटल एनर्जी है थॉट्स भी और वो थॉट्स जैसे है वैसे ही वातावरण भी बनता है और थॉट्स उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे हैं उसी प्रकार के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और फिर उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं इसलिए कहा गया है कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स जो आप बार बार सोचते हो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हो
1: तो मतलब हम बार बार कई बार डर रहे होते हैं तो वो हो भी सकता है
0: बिल्कुल हो सकता है ना
1: क्योंकि हम बार बार अगर आप थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना हमें डर है फियर है तो वो हम संभव भी करते
0: हाँ वो सचमुच होता है आज व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है और वैसे बीमार होता है ये भी माना गया है कि आज लोग एक्सीडेंट्स के बारे में जो बार बार सोचते हैं वो सचमुच एक्सीडेंट से मीट करते हैं नहीं उसी प्रकार का क्योंकि थॉट्स आर रियल वो वातावरण उस चीज को क्रिएट करते हैं कहते हैं कि थॉट्स हैव अ मैग्नेटिक पावर जैसे मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है ऐसे थॉट्स है वो परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है
1: तो पाता पलट दिया। आपने तो हमारे ऊपर डाल दिया सारा कुछ
0: नहीं सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात दूसरी बहुत ही जरूरी चीज है कि जो भी आपको फीलिंग्स होती है अच्छी या बुरी आप दुख की फीलिंग करते या सुख की फीलिंग करते उसका फाउंडेशन आपके थॉट है कई लोग ऐसे मैं गुस्से में आ गया ऐसे मैं डिप्रेस्ड हो गया एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो थॉट था
1: पर अब सब पता नहीं चलता अगर आप मतलब बार बार हमने इस बारे में बात की है कि आप थॉट्स को देखो थॉट्स के प्रति सजग रहो अब जैसे अभी मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मैं सजग हो जाऊंगी कि ठीक है मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठी हूँ इसके बारे में सोच सकती हूँ लेकिन जैसे ही वो फीलिंग आई वो जो बिल्कुल ठीक है कि जैसे डिप्रेशन आ जाता है एकदम से हार्ट सिंक करने लगता है दुख आ जाता है या गुस्सा चढ़ना शुरू होता है उस वक्त ये तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था कि गुस्सा आया गुस्सा होने के बाद हमें वो थॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि गुस्सा आया है अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और चढ़ता जा रहा है या कम होगा वो मेरे थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है
0: लेकिन कम से कम ये भी कि जो आपको हार्ट जैसे सिंक होने की आपने बात कही कई बार हो सकता है कि पता ही नहीं क्यों सिंक हो रहा है लेकिन ये तो एक्सेप्ट करो कि भी कोई ना कोई विचार है भले आज से 10 साल पहले जो घटना हो गई उसका कोई विचार है एक अर्ध जागृत रूप में वो विचार आ रहा है पर विचार जरूर है वह जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको ढूंढ भी सकेंगे तीसरी बात है कि विचार आपके कंट्रोल में है जो हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि भी हम उसको चूज करते हैं जो आमतौर पर लोग कहते हैं विचार आ गए ऐसी बात नहीं वह हमारे कंट्रोल में है चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एक एप्पल में कितने बीज आप गिन सकते हैं मैं आपको एक एप्पल दूं आप उसको कट कर लो गिनती करो तो गिनती हो जाएंगे परंतु एक बीज में कितने एप्पल गिन सकते हो
1: नहीं आई कांट आई डोंट थिंक सो नो वे क्योंकि एक बीज से अगर कितने सारे एप्पल्स हुए तो उन एप्पल्स के भी तो कितने सारे बीज के हो सकते हैं
0: वो भी और बात है आगे तो लेकिन फिर भी एक बीज से हजारों एप्पल हो सकते हैं ऐसे एक विचार भी बीज है एक विचार आपके जीवन में बहुत आनंद भी ला सकता है सुख भी ला सकता है साथ साथ वही एक विचार आपको दुखी दुखी कर सकता है न केवल आपको और हजारों लोगों को भी वह एक ही विचार दुखी कर सकता है
1: खुशी भी दे सकता है
0: हजारों को दे सकता है हाँ। तो वह सीड है मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक विचार है वह सीड है और एक जिस पर मैंने गहराई से सोचा कि भी विचार क्या करते हैं जैसे जब नदी बहती है जमीन से तो है ना वो अपनी जगह क्रिएट करती है ग्रूव्स क्रिएट करती है वास्तव में तो ऐसे विचार भी कॉस्मोस में एक सटल ग्रूव्स क्रिएट करते हैं
1: और अच्छा, विचारों की नदी बहती जा रही है
0: हाँ बस विचारों की नदी है और वो वातावरण के अंदर उस प्रकार से ग्रूव्स क्रिएट करते हैं और फिर जो सारी कॉस्मोस में एनर्जी है जैसा आपने ग्रूव क्रिएट किया उसी प्रकार की एनर्जी वहां पर फ्लो होगी
1: अच्छा आकर्षित हम
0: हाँ, उसको आकर्षित करेगी तो ना इतना महत्व सबसे पहले अगर इस महत्व को हम समझ ले तो फिर आगे के स्टेप्स भी सहज होंगे
1: ओके शिवानी विचारों का ये जो एक अननोइंगली हमने क्रिएट किया कि जो अभी बताया डॉक्टर पटेल ने कि इट्स सो पावरफुल मतलब वो लेकिन अभी तक तो हम पता नहीं कितना कुछ पावरफुल क्रिएट कर चुके हैं और जैसा कि बात ये हो रही है

0: कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने भी लगता है। तो मैं तो बहुत अच्छा भी सोचती हूँ, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ, वो बहुत कुछ तो नहीं होता। फिर
1: अब इसको भी चेक करना है, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, वेरी गुड थॉट। फिर मैं सोचती हूँ हो जाऊंगी ना, लेकिन तैयारी है ना मेरी पूरी, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है। लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मेरी फेयर चेकिंग करेगा या नहीं करेगा। ऑल दीज आर ऑल्सो थॉट्स ना, नॉट दैट ओनली वन थॉट। नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं मैंने पॉजिटिव थॉट क्रिएट किया है हा? कि मुझे ये करना है, ये चाहिए। हम वो नहीं सोचते कि उसके साथ साथ कई बार हमने बहुत सारे ऑर्डिनरी थॉट्स और कई बार तो थोड़े नेगेटिव फियर के थॉट्स भी क्रिएट कर लिए, तो वो भी तो एनर्जी है। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अचीव इवन इन द आउटर वर्ल्ड जो हम अचीव करना चाहते थे, बिकॉज एनर्जी बहुत सारी फ्लो की है। अगर आप कोई एक थॉट को ले लें और उस पर ही अपनी एनर्जी को फोकस करें, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए।
0: अब एक ऐसे कैसे, सी इट कम्स एज अ फैमिली, सी थॉट्स विल ऑलवेज कम, एक थॉट थोड़ा रह पाएगा।
1: एक थॉट इन द सेंस आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या, अगर आपने क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किए सक्सेस की, जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फियर, फियर के साथ डाउट, डाउट के साथ एंग्जायटी, ये सारी फैमिली नहीं आनी चाहिए ना। एक ही परिवार को चूज करो, एंड दैट परिवार शुड बी द पॉजिटिव सक्सेसफुल हैप्पी परिवार, चूज दैट, डोंट मिक्स द टू थिंग्स। एंड क्योंकि बहुत समय से आदत है ज्यादा नेगेटिव,
0: आई कांट इवन इमेजिन,
1: नहीं, व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्क क्या है। सी पॉजिटिव थिंकिंग आज हम लोग अवेयर हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे कल्टिवेट कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग सो कॉल्ड ऑटोमेटेड मोड में गई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा, आ रही है, तो हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम एक पॉजिटिव थॉट तो एनवायरमेंट में भेजते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ जो नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स है वो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव थॉट्स से। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग। जैसे गिरीश भाई ने कहा ठीक है हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या सचमुच ये हो जाएगा, देन व्हाट हैपेंड,
0: बट डाउट तो रहता ही है।
2: शिवम ने बहुत अच्छा कहा कि वो एक थॉट है कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन डाउट, एंग्जाइटी, फियर, उसके बदले पॉजिटिव फैमिली क्या हो कि आई कैन डू इट, है ना, मेरे में वो क्षमता है।
0: लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठ देखे, एक बात है, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप को गलत फहमी में रख रहा हूं कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये सारी चीजें भी तो होती हैं, एग्जामिनर जो है ये मेरे पास नॉलेज, ये भी तो, जैसे आपने कहा कि नॉलेज से आप, जैसे आपको नॉलेज मिलती है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। आई हैव द नॉलेज कि एग्जामिनर जो है वो सही तरीके से कई बार नहीं देखते हैं, एग्जामिनर जो है वो, या बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज जो नेगेटिव है। सो आज मैं अपने आप पे ये थॉट तो क्रिएट किया कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मार्क्स लाने, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो मेरे फियर्स हैं अगर मैं उनको वो आते मतलब जो मैं क्रिएट करूं तो वो नहीं क्रिएट करूं तो मैं अपने आप को धोखे में भी तो रख रहा हूं ना।
2: पॉसिबिलिटी थॉट है कि भी आप जो सोच रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि मैं अगर थॉट करूंगी कि मैं पास होने वाले हूं, अच्छे अच्छे मार्क आने वाले, यहां तक मनोविज्ञान में मानने लगे कि आपका पेपर ऐसे ही एग्जामिनर के पास जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा।
1: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जैसे उन्होंने कहा कि जो आप थॉट क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन है, वो एनवायरमेंट में है, वो अट्रैक्ट करेगी उस सिचुएशन को आपकी तरफ। अभी पर्सनली आई टेल यू, एग्जाम तो नहीं आते अभी कोई ऐसे, लेकिन सपोज आई गो टू अ शॉपकीपर जहां सब्जी तोली जा रही है, कई बार कुछ लोग सब्जी अपने तुलवा रहे हैं लेकिन ये तो करते हैं चीटिंग, इनका वेट सिस्टम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ये पता नहीं अच्छी क्वालिटी की सब्जी दे रहा है कि नहीं, दैट पर्सन इज बाउंड टू चीट यू।
0: नॉट
1: जस्ट गो नेक्स्ट टाइम, एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली, चाहे आप वो शॉपकीपर के पास हैं, चाहे आप टैक्सी में बैठे हैं, कोई आप ऑटो रिक्शा में, हम बैठते ही हैं ऑटो रिक्शा में, आजकल के तो ऑटो वाले सब ऐसे ही हैं, सब चीट करते हैं, किसी का मीटर भी ठीक नहीं हो, यू नो वी आर सो मच फिल्ड विद ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी। वो आप यहां बैठे हैं, वो यहां बैठा है, आप उसके प्रति ऐसी सारी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुंचेगी, उसने चीट करना है फिर। अब आप बैठे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ, बट मेक इट प्योर, 100% क्लीन,
0: झूठ बोल रहे हैं।
1: हमें ये समझ में आ गया कि जैसी थॉट मैं क्रिएट करूंगा आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी,
0: बट उसकी मैं उसकी नेचर को बदल सकता हूँ अगर
1: ग्रेविटेट दैट सिचुएशन।

0: शिफ्ट टुवर्ड्स मी मतलब लोगों की सोच और परिस्थितियां मेरी सोच के अनुसार मोल्ड होती जाएंगी ना. सिचुएशन नहीं तो है ही क्या, बिना लोगों के तो कोई सिचुएशन नहीं.
1: अभी तो मैं एक तरफ ये कह रही थी कि लोग तो कभी चेंज नहीं होते. एक तरफ आपने बड़ी मुश्किल से हमें ये समझाया.
0: हम पहले ये सोच रहे थे कि लोग चेंज हो जाएं.
1: हाँ,
0: सो वी वर क्रिएटिंग अ नेगेटिव थॉट फॉर देम. अगर मैं आपके लिए ये सोचूं कि ये चेंज हो जाए, मतलब मैं आपके प्रति क्या सोच रही हूँ,
1: ये अच्छी नहीं है अभी.
0: व्हाट क्वालिटी एनर्जी इज दिस. तो जैसे ही मैंने आपको नेगेटिव भेजी, रिटर्न आपसे भी क्या आएगा, ये चेंज
1: तो
0: हो जाए.
1: हाँ, मैं तो कभी चेंज नहीं हूँ.
0: सी दैट इज द एनर्जी. तो अगर मैं आपके चेंज होने के बारे में न सोचकर अपनी थॉट्स को थोड़ा सा प्योरिफाई करने लगू, क्लीनिंग करने शुरू, तो मेरे से आपको कौन सी एनर्जी जाएगी? पॉजिटिव जाएगी. जैसे ही मेरे से आपको पॉजिटिव जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड. एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड.
1: But then you see your change was able to change me.
0: Because it's vibration. जो energy ऐसे जाएगी वही energy ऐसे आएगी. हमें मुझे जब अपनी thoughts की awareness नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं awareness नहीं है, तो मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी. ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहां से जा रहा है. यहां से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते. हमारी सारी स्ट्रगल किस पे थी? आपने कहा मेहनत क्यों लग रही है. हम वो आते हुए तीर को चेंज करना चाहते थे, चेंज चेंज, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो. नहीं, इस तरफ नहीं चेंज होगा. आई चेंज व्हाट आई सेंड. That I have to change and very powerful. ये नहीं एक positive thought उसके साथ 10-15 negative thought, then तो कौन से तीर फेंके. फिर वो ही वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा था उनके बारे में. चेक करना कितना अच्छा सोचा था और कितना कुछ कुछ और सोचा था.
2: इट वो बातें इसके अंदर, एक तो है कि जब हमने टैक्सी की बात की ना कि भी टैक्सी वाला ऑटो वाला आप अच्छी वाइब्रेशन दो तो जो टैक्सी वाला आपके पास आएगा ना अच्छा ही होगा.
0: No, and I yes, absolutely, yeah. Personally experienced. I was staying in another city pehle. Huh? About 8 years back, we shifted to Delhi. But the kya information milti hai yahan shift karne se pehle? Delhi mein na, bahut log cheat karte hain. Delhi mein jo behan aapke ghar kaam karne aayegi, wo bhi aise hi hogi. Taxi to bahut cheat karti hai. Auto, fill yourself. 8 years, I haven't found anyone cheating me. Simply because aap apni thought ko change karo. Kyun wo hamari tarah hain wo log? लेकिन हम उनको इस तरह की एनर्जी देते हैं, वो वाइब्रेशन नेगेटिविटी हरेक के अंदर ऑलरेडी काफी सारी है. आप जैसे ही स्टिम्युलस भी नेगेटिव भेजोगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप ट्रिगर करोगे. लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि इनहेरेंटली हरेक बहुत प्योर और पॉजिटिव सोल है. अब आप उसके पास वो वाला तीर फेंको तो उसकी पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी. ये चॉइस हमारे पास है, ये पावर भी हमारे पास है.
1: मतलब हम
2: करके देखना चाहिए. मैंने
0: बहुत वर्क
2: कई बार देखा, एयरपोर्ट पे जाते हैं, देखा टैक्सी वाला सामान उतार के ट्रॉली तक रख देता है, उसकी ड्यूटी नहीं है वो.
1: इसका मतलब हमने ये किया कि मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि आप आंख मूंद के फिर जी रहे हो, कि आप देख ही नहीं रहे. कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, कि आई नो सामने वाला करप्ट है, मतलब मुझे पता भी चल गया अगर, एंड आई हैव टू डील विद हिम. सपोज मैं कोई काम करवाने भी जा रही हूँ और सामने वाला करप्ट है, पता है, तब मैं क्या ये वाइब्रेशंस उसको दूं कि नहीं आप प्योर हैं, आप सच्चे हैं. तो ये मैं अपने आप से झूठ नहीं कर रही.
2: पहले तो दो, उसमें कुछ तो चेंज आएगा.
0: मतलब बट हैव द फेथ इन योर सेल्फ फर्स्ट. ये नहीं कि अच्छा मैं बोल तो रही हूँ ये प्योर है, लेकिन वैसे तो ये करप्ट है.
1: हाँ,
0: तो फिर क्या, फिर कौन सी सोच क्रिएट.
1: एक तरफ है फैक्ट, एक तरफ है मेरी सोच.
0: हाँ,
2: अभी ये फैक्ट नहीं है. देखो, आपने कभी एक नदी में दो बार स्नान किया है?
1: हाँ, कभी सुबह और शाम.
2: एक्चुअली देखो, आपने जो दो बार स्नान किया सवेरे शाम, लेकिन नदी तो बह रही थी, पानी तो बदल गया था, बदनाम हुआ था, परंतु पानी तो सेम नहीं था.
1: हाँ,
2: तो कहते आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते.
1: एक पानी में. हाँ, मतलब
2: नदी कहो.
1: हाँ,
2: तो ऐसे कहते आप एक व्यक्ति को दो बार नहीं मिलते हो.
1: व्यक्ति बदल गया.
2: हाँ, आज मैं आपको मिला हूँ, कल मिलूंगा तो यू आर डिफरेंट. आपके विचार बदल गए.
1: हाँ,
2: है ना, मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया. तो इससे जो आपने वो कहा ना कि वो फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट,
1: पीपल चेंज.
2: हाँ, वो व्यक्ति को कल शायद ठीक है, भी दो दिन पहले वो करप्ट था, आज उसमें परिवर्तन आ गया. तो क्यों उसी नजरिए से देख रहे हो, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो.
0: एक्चुअली कोई है, किसी में कोई थोड़ी सी कमजोरी है, जैसे करप्शन है कोई भी, हम सब

0: उसी के ऊपर चिंतन कर करके उसको सभी लोग ये एनर्जी भेजेंगे कि ये तो करप्ट है, ये तो करप्ट है। तो जितनी उसके पास वो एनर्जी जाएगी, उनका वो संस्कार
1: स्ट्रांग
0: और स्ट्रांग होता जाएगा। दैट इज वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली बी फोर्स विद ईच अदर हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। कि इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हरेक की विशेषताओं को देखो। दो बातें हैं, जितना आप कमजोरियों को देखेंगे, पहली बात तो वो कमजोरी आपकी बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसका चिंतन करते गए, ये तो ऐसे हैं, ये तो गुस्से वाले हैं, ये तो करप्ट है। तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? वही भेज रहे हैं, मेरा भी नुकसान उनका भी नुकसान। विशेषताओं को देखो, विशेषता मेरी भी बनती जाएगी वो, और वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उनकी विशेषता पक्की होती जाएगी।
1: तो शिवानी, आपने कहा कि विशेषताएं देखें हर एक की और नेगेटिविटीज ना देखें, लेकिन मेरे सामने है वो नेगेटिविटी, मैं चलिए एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा, पर दिख तो रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं भी कर रहा, बट क्या मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल, क्योंकि आप जिसे विचार करेंगे वहां तक पहुंचेंगे, एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो रहा है। और तीसरी बात है कि उसे हम लेबल न करें। आज जब बोलते हैं कि ये करप्ट है तो आप उसने लेबल लगा दिया, तो फिर सदैव के लिए बोले वैसा ही रहे। आप और सोच लिए, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, आपने उन्हें लेबल लगा दिया कि ये स्मार्ट नहीं है, तो ऑलवेज उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचे वैसा ही रहेगा। विशेष बच्चों के लिए कभी नहीं करो। आज अधिकतर माता पिता बच्चों को लेबल कर देते हैं कि छोटा वाला स्मार्ट है, बड़े वाला बुद्धू है, वो कभी ठीक काम से नहीं करता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है। इवन क्लासरूम में रिसर्च स्टडीज भी की गई है,
1: लेकिन वो तो कर ही रहा है ना वैसा।
2: नहीं, आप देखिए, रिसर्च स्टडी को आप समझिए तो भी आप कन्विंस हो जाएंगे इस बात के लिए कि एक क्लास में नए टीचर आए और सभी बच्चों के जो उनके मार्क्स थे पिछले क्लास के, उनको दिए गए, किसको भी इसकी फर्स्ट ग्रेड है, इसकी सेकेंड, इसकी थर्ड है, ऐसे बच्चों को दिया। और फिर एक साल के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा तो ये पाया कि भी जिसको बताया था कि इसकी फर्स्ट ग्रेड है तो उसको फर्स्ट ग्रेड ही आई, कहा कि भी थर्ड ग्रेड का है उसके करीब करीब थर्ड ग्रेड ही आई। और प्रैक्टिकली रिसर्चर्स ने क्या किया था, पूरा उल्टा कर दिया था। जिसकी फर्स्ट ग्रेड आई थी उसको कहा था इसकी थर्ड ग्रेड है, जिसकी थर्ड थी उसको फर्स्ट बना दिया था। तो उसका कंक्लूजन यह हुआ कि भाई टीचर का जो इंटरप्रिटेशन है, तो टीचर ने ये सोचा था कि ये लड़का स्मार्ट है भले वो था बुद्धू,
1: ओ, और वो सोचता रहा और उसकी थॉट्स ने, उसके पूरा लेबलिंग ने उसको फर्स्ट ही बना दिया।
2: न केवल लेबलिंग, हाँ, लेकिन अप्रोच भी,
0: हाँ, आपका पूरा थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, बात करने का तरीका,
2: समझाने का तरीका
0: कैसे चेंज हो जाएगा। हाँ। ना देखो, कोई आपको लगे ये तो बुद्धू है तो हाँ। आपका थॉट कैसे चलेगा, हाँ। इसको तो कितना भी समझाओ इसको तो समझ में नहीं आने वाला, ये तो बुद्धू। सो यू डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एफर्ट। लेकिन एक आप स्टूडेंट को देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, यू नो, यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट लुक ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है, और एनर्जी, थॉट एनर्जी तो जाएगी।
1: अच्छा, अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क इज कि आपने कहा कि दूसरे की विशेषता देखोगे या कमजोरी देखोगे तो वो आप में आ जाएगी, यू सेड समथिंग लाइक दैट। हाउ इज दैट पॉसिबल?
0: बिकॉज मैं चर्न कर रहे हो उस थॉट के ऊपर। सपोज आपके अंदर गुस्से का नेचर है, आपके गुस्सा करने के, एंड मैं बार बार ये थॉट क्रिएट करती हूँ, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं, इनको बात करने का तरीका भी नहीं आता। वट काइंड ऑफ एनर्जी एम आई क्रिएटिंग? सी, अब ये एनर्जी क्रिएट करते करते मैं आपसे कैसे बात करूंगी, अब मैं भी आपको गुस्से से बात करूंगी, ऑटोमेटिकली वो होगा ही, इट विल बिकम, बिकॉज आई हैव बीन चर्निंग ऑन दैट नेचर ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये गुस्से वाले हैं, चाहे इनसे कैसे भी प्यार से बात करो, ये तो ऐसे ही बात करते हैं, अगली बार तो ना मैंने बात ही नहीं करनी इनसे, ऑल दिस इज माई थॉट गोइंग ऑन, सिर्फ क्योंकि मैंने आपकी वो एक कमजोरी देख ली है। तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया, फिर व्यवहार चेंज हो गया, फिर एक बार मैंने आपसे इस तरह से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बनता गया, और धीरे धीरे मेरा संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सबके साथ ऐसा बनता जाएगा।
1: लेकिन मुझे आप गुस्सा करते हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन वो मैं अपने अंदर कैसे इनकलकेट कर रहा हूँ?
0: क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना बाद में, नहीं, अनोइंगली नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपकी उस आदत के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये फील करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके जिम्मेवार आप हो, और मैं आपके क्रोध के संस्कार पे चिंतन कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी कैसी क्रिएट हो रही है? दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल ली, क्रोध की आपकी पेंसिल ली, मैंने कहा ये पेंसिल टूटी हुई है, अब इससे मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे एक डायग्राम

0: हमें बन रहा है ना, सारा दिन कंटिन्यूसली हम ग्रूव क्रिएट करते रहते हैं। कौन सी पेंसिल लेके क्रिएट किया था? ये गुस्से वाले हैं। व्हाट एनर्जी व्हेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, हाउ एम आई गोइंग टू फील, एंड फिर ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, फिर मैं किसी और से आपके बारे में बात करूंगी तो कैसी एनर्जी क्रिएट करूंगी। तो गुस्सा तो आपका संस्कार था, यू नो, जब हम किसी को बोलते हैं तो बहुत गुस्से वाले हैं, कैसे बोलते हैं? आपको पता है ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते, आपको पता है ये बहुत गुस्से वाले,
1: रिजेक्ट करते हैं।
0: नो नो, माय वे ऑफ टॉकिंग आल्सो बिकम्स लाइक दैट बिकॉज आई एम टॉकिंग नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स अ वेरी सटल वे, हमें अवेयरनेस भी नहीं होती कैसे वो हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता जाता है। जो आपने अभी पूछा था ना कि कमजोरी है उनके अंदर, तो हम क्या करें? एक है अवेयरनेस कि किसी के अंदर ये कमजोरी है, इवन अगर आपको ये दिखाई दे रही है, डोंट कीप इट हियर। परमात्मा कहते हैं उसकी कमजोरी अपने चित्त पर मत ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अवेयरनेस है आपके अंदर ये कमजोरी है, ओके, मैं आपको वो वाला शायद काम नहीं दूं थोड़े दिन या कुछ भी, आई टेक स्टेप्स, लेकिन मैं उसको अपने चित्त पर नहीं लूं, मतलब मैं उसके बारे में चिंतन ना करूं ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कौन सी एनर्जी भेजूं। तो अगर मेरे से आपको डिफरेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे गिरीश भाई ने कहा इन द फैमिली, यू नो, एक व्यक्ति लेबल लगाता है कि ये तो बुद्धू है, बहुत जल्द बहुत लोग वही लेबल लगा देते हैं, सब लोग कहते हैं इससे तो वो हो ही नहीं सकता। अब वो एक और 8-10 लोगों से उसको वही एनर्जी मिल रही है, क्या होगा? वही संस्कार और पक्का होता जाएगा।
2: शिवानी बिन जो कहते हो ठीक है कि बिल्कुल नहीं, इम्पोर्टेंट चीज हो तो भले उसको कुछ समय वो काम नहीं दो, लेकिन पॉसिबल हो तो मैं तो कहूँ तो काम भी दो, एडिशन
0: विश्वास रख के,
2: नहीं एडिशन
0: के लिए सिर्फ रेडी एंड प्रिपेयर्ड के, यू नो, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करो, यू टेक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, यू नो, कल्टिवेट दिस थिंग इन टू योर सेल्फ। हम कई बार देते भी हैं तो हम कहते हैं देते हैं, फिर थोड़ा पहले थॉट होता है पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर थोड़ा सा उसने 1% भी उसमें कुछ गलती कर दी, इमीडिएट थॉट, मुझे पता था इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं उसका और डैमेज कर देती हूँ। मुझे करना है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके करना है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस हैबिट। उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा थोड़ी देर, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो हैबिट कल्टिवेट कर देगी। हम एक बार करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, फिर हम उनको 4 बार सुनाते हैं, मैंने आप पर पिछली बार विश्वास रखा था, क्या किया आपने, क्या रिजल्ट आपने उसका दिया, देन इट जस्ट गेट्स वर्स एंड देन वी थिंक हमने उस पर फेवर की, हमने उसको ट्राई किया, ही इज नॉट वर्थ इट, फिर हम कहते हैं फायदा नहीं इस पर विश्वास, तो फिर वो बहुत सारी एनर्जीज और भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो अपनी पूरी तैयारी करके फिर उनके ऊपर काम करना, पहले काम अपने ऊपर करना।
2: एडिसन के लिए कहते हैं कि जब उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहे थे, तो कहले पहली बार जब जा रहे थे तो जो व्यक्ति कैरी कर रहा था तो बल्ब गिर गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बड़ा डेंजरस चीज थी, तो रात भर जाग करके एडिसन ने नया बल्ब तैयार किया, फिर सवेरे वो डेमोन्स्ट्रेशन होना था, तो फिर से उसको उस ट्रे में दिया कि तुम वहां तक ले, सबने कहा नहीं नहीं नहीं सर आपको नहीं मालूम है, कल शाम को तो इसने तोड़ दिया है बल्ब, फिर से तोड़ दिया, कहा नहीं नहीं यही बल्ब को ले जाएगा, उसने कहा कि देखो बल्ब फिर से भी टूट गया ना तो नया बन जाएगा, पर इसका दिल टूट गया तो नया नहीं बन सकता,
0: तो इसलिए मैंने उसी को दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना सामने वाले,
2: तो उसी को दिया कि तुम संभाल के ले जाओ।
1: बिल्कुल, और आज अपने ही विचारों से, उनकी शक्ति से हमें वाकिफ कराया आपने, अब इन स्किल्स को और आगे हम देखते जाएंगे। डॉक्टर पटेल, प्रोफेसर शिवानी, थैंक यू सो मच। बहुत बार सुना था और बड़े बड़े लोग बहुत सी बातें भी करते हैं कि थॉट में जो है वो बहुत पावर है, आपके अपने विचार जो हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत सी किताबें, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे थे। अब जब छोटी छोटी तरह से ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैं सोचता हूं, मतलब जाने अनजाने ही अभी तक ये हो रहा था कि कोई भी विचार आता था हम उसके साथ ही बहने लग जाते थे, एक थॉट आया, अभी तक हम कहते थे आया, अब सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल ने हमें बहुत क्लियर किया है, हमने क्रिएट किया वो एक थॉट, उसके साथ हमने बहुत सारा एक समा बांध दिया थॉट्स का ही, एक पूरी जर्नी की, देखना ये है कि हमने किस फैमिली के थॉट्स लिए, और परिवारों की हम बात करते हैं, ये परिवार अवेकनिंग का है, तो साथ ही अब

चलिए विचारों के परिवार पर चलते हैं कि हमने वो पॉजिटिव थॉट्स के विचार क्रिएट किए, पॉजिटिव थॉट्स की फैमिली क्रिएट की या नेगेटिव थॉट्स की, ये हम देखते जाएंगे। थोड़े थोड़े अवेयर होते जाएंगे तो शायद हम उन स्किल्स को इनकल्केट करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@vkmail.org। अवेकनिंग विद रमा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे बहुत कुछ अभी बाकी है। मुलाकात होगी। ओम शांति।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इन हाथों में हैंडल होते, पैरों के तले पैडल होते, दबती उठती सैडल होते,
1: भर जाती मुरादों की झोली, भर जाती मुरादों की झोली।

सड़कों पे परेड ये फैशन की एक शक्ल है इनविटेशन की। गत कुछ भी बनाओ नेशन की, तुम जान हो उस जनरेशन की। जो दिल पे चलाती है गोली, जो दिल पे चलाती है गोली।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहेत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कृष्ण राध मिल गाए, खुशी में देवी देव सब रास रचाए, आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुग स्वर्णिम जग मुस्काए। कृष्ण राध मिल गाए, खुशी में देवी देव सब रास रचाए, आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुग स्वर्णिम जग।

0: चीरी देखो तमा सुहाना कैसा यारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती अरे हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती
1: आँख ना चुराओ
0: ना चुराओ रूठ कर
1: न जाओ आँख ना चुराओ
0: ना चुराओ रूठ कर न जाओ
1: ए न जाओ आँख ना चुराओ।

0: ए तीर मार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लूटा
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। वेलकम सिस्टर।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
3: थैंक यू।
2: काफी इंटरेस्टिंग था आपका ये सोल का ज्ञान। आपने कहा था कि मैं शक्ति हूं, मैं इस इंद्रियों का मालिक हूं, आई द सोल, मेरी मर्जी के बिना मुंह में कुछ न जाए न मुख से निकले। लेकिन क्या हो रहा ना, ये कुछ बोल देने के बाद, कर देने के बाद याद आ रहा है।
3: कोई बात नहीं।
2: फिर रिग्रेट होता है, फिर लगता है कि छोटा सा, अरे मैं इस बात में फेल हो गया।
3: नहीं।
2: थोड़ा बुरा लग रहा है।
3: 10 में से 9 times गलती हो सकती है।
2: वो भी सिर्फ साइलेंस हो रहा है। बोलना चाहता हूँ लेकिन मन से बोल रहा हूँ।
3: कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
2: अंदर से तो पूरे वो निकल गए ना, इमोशन सारे वही आ गए।
3: इसका मतलब इधर तो मालिक बन गए।
2: मालिक मतलब
3: मालिक बन गए।
2: फुल मार्क्स नहीं दे सकते ना, 1 out of 10 में।
3: 1 out of 10 बार मालिक बन गए।
2: 1 बार बना बस।
3: अनेक जन्मों से हार रहे थे और आज एक बार जीत गए, तो अपने आप को क्या करेंगे?
2: शुरुआत तो ही,
3: अपने आप को अप्रिशिएट करना है।
2: वही तो कहूँ, शुरुआत तो होगी।
3: इमेजिन,
2: एबीसीडी का ए तो आया।
3: एक क्रिकेटर है, वो आज तक जितने मैच खेला 0 पे ही आउट हुआ। जब जब खेला 0 पे ही आउट हुआ। हर बार 0 पे आउट हुआ। उसने कभी कोई स्कोर ही नहीं किया है। आज वो खेलने गया और उसने 5 run बना लिए, फिर आउट हुआ, तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे क्या? आज उसने खेला है, आज उसने अपना बैरियर तोड़ा है, आज उसने इतने समय का जो एक चल रहा था रिकॉर्ड वो तोड़ा है, किया है कुछ जो उसने पहले नहीं किया था। तो व्हाट डू वी नीड टू गिव? लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस। 1 out of 10 इज अ वेरी गुड स्कोर।
2: ये झूठा झूठा अप्रिसिएशन तो नहीं है?
3: ये कैसे झूठा झूठा अप्रिसिएशन?
2: जैसे छोटे बच्चों को हम
3: नहीं,
2: कोई बात नहीं है।
3: नहीं, आप एक विजुअलाइज करें। एक चलो बच्चे को देखें जो इतने दिनों से आप उसको सिखा रहे थे, वो नहीं सीख रहा था। पहले तो उसको पता ही नहीं था, तो वो कर नहीं रहा।

0: फिर आप सिखा रहे थे वो सीख नहीं रहा था, आज फाइनली उसने थोड़ा सा कर दिया।
1: जैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलता हूँ अभी आप बड़े हो गए हो अपने हाथ से खाओ, मैं अपने हाथ मैं नहीं खिलाऊंगा,
0: ठीक है।
1: तो पहले वो ऐसे इधर कर लेते इधर करते 10 बार गिराते, फिर एक निवाला मुंह में डाल
0: जब
1: लेते।
0: वो एक निवाला मुंह में सही डाल लेते हैं
1: तब मैं क्लैप करता हूँ।
0: वो झूठा झूठा होता है?
1: नहीं।
0: आपको अच्छा लगता है? यू रियली फील दैट दे हैव डन समथिंग, या वो झूठा झूठा होता है?
1: अच्छा लगता है।
0: क्यों अच्छा लग रहा है?
1: कि सीख रहा है बच्चा,
0: जो वो नहीं कर पा रहा था पहले अब उसने कर लिया, तो झूठा झूठा कैसे हुआ? ये झूठा झूठा नहीं, इज अ जेन्युइन अप्रिसिएशन। अब ये जैसे ही आपने उसके लिए अप्रिशिएट किया, ताली बजाई या उसको मोटिवेट किया, उसको प्यार से कहा कि ब्यूटीफुल लुक व्हाट यू डन, अब क्या होगा उसका प्रभाव उस बच्चे पर? क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा उसका प्रभाव?
1: एनकरेज होगा।
0: तो वो क्या होगा, वो कर्म वो क्या करेगा?
1: और करेगा, दोबारा करेगा, बेटर करेगा, और उसको कॉन्फिडेंस आएगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि इट्स डिफिकल्ट।
0: सिंपल, नाउ वी नो एवरीथिंग। जो हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, वो हमें अपने साथ करना है। अगर हम एक बार भी ये कर पाए कि कुछ मन में आया था लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं निकला, वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। परमात्मा सिखाते हैं कि जो पाप हम करते थे, मतलब गलत बोलना, गलत सुनना, हाथों से गलत करना, ये पाप कर्म बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर कर्म इंद्रियों से पाप होना बंद हो गया, मन में अभी चल रहा है, तो भी आपने बहुत अचीव कर लिया, तो भी बहुत अचीव किया है। फिर हम ग्रो करेंगे ना, स्टेज वाइज जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में कर्म इंद्रियों से बंद होगा, सेकंड स्टेज में मन से बंद होगा, और परमात्मा सिखाते तीसरी स्टेज में स्वप्न से भी चला जाएगा।
1: बहुत अच्छा है।
0: या मतलब यहाँ से पूरी तरह से वो
1: डिलीट हो गया। सही बात है,
0: डिलीट हो गया, लेकिन फर्स्ट स्टेज हमने अचीव कर ली, सो इट्स सो ब्यूटीफुल। अब लेकिन इसको क्या करना है, रोज करना है। अब जो हमने मेडिटेशन लास्ट टाइम की, सिर्फ इतनी लाइन, मैं आत्मा शरीर की मालिक हूं, ये लाइन को रोज सुबह चिंतन करना है, फिर इसको सारा दिन में करते जाना है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जितनी बार भी याद आता जाए कॉन्शियसली, वो लाइन अंदर क्रिएट करके फिर उस काम को करते हैं। मैं आत्मा ये कर रही हूं, मैं आत्मा ये कर रही हूं, हम इसको याद दिला रहे हैं फिर से। तो इसको पूरा दिन अभ्यास करते जाना है, ये एक बैकग्राउंड में अंदर चलता जाना चाहिए अब शुरू, ताकि एक नई प्रोग्रामिंग क्रिएट होनी शुरू हो रही है। कैन वी डू दैट नाउ, नेक्स्ट स्टेप?
1: श्योर।
0: नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में किया, फिर उसको सारा दिन में क्या करते जाएं, हाँ सारा दिन में जो काम आप कर रहे हैं उसमें करते जाएं। मैं आत्मा ये कर रहा हूं, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रहा हूं, मैं आत्मा अभी बाहर जा रहा हूं,
1: दूसरी आत्मा से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं।
0: ये भी एक कॉन्शियसली अगर हम करें कि अभी मैं बेटे से मिलने जा रहा हूं,
1: नहीं, बेटा एक सोल जो मेरे बेटे का रोल प्ले कर रहा है उससे मिलने,
0: मेक्स अ कंप्लीट कंप्लीट ह्यूज डिफरेंस।
1: लेकिन फिर उसकी क्वालिटीज याद आ जाती है ना, अच्छे बुरे बुरी वाली। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर समझो मैं किसी एक्स वाई जेड से मिलने जा रहा हूँ, रिश्तेदार से, और मैं बोलूँ कि आई द सोल मीटिंग अनदर सोल, और जो कि मेरे भाई का सपोजिट रोल कर रहे हैं, बहन का कर रहा है, यहाँ रिश्तेदार का कर रहा है, फिर सारी उसकी लिस्ट लंबी आती है, ये बोला उसने, ये बोला उसने, ये बोला उसने,
0: सेकेंड स्टेज पे करेक्ट करेंगे। अभी उसके लिए और नॉलेज चाहिए, ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज है। आप एक
1: तो मिलूंगा ही कैसे सोल समझ के, जब उसके उसका उसके एकदम एक्सरे सामने दिखता है?
0: कोई
1: तो
0: बात नहीं, आप ये एक थॉट क्रिएट करके जाना है, फिर अभी हम सेकंड नॉलेज लेंगे ताकि ये वाली बात भी कट हो जाएगी। फिर पहले फर्स्ट, फिर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चले तो नहीं वर्क करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। जब तक ए नहीं आता तो हम बी पे नहीं जाते, तो ए को रोज करेंगे, बी की नॉलेज जैसे ही मिलेगी ना वो भी हो जाएगा। अभी ये स्टेप कि जिससे भी मिले, मैं दुकानदार से बात कर रहा हूं, नहीं, मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, मेरे घर जो आया है गाड़ी चलाने, वो आत्मा आई है गाड़ी चलाने के लिए, आत्मा है।

0: ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये प्रैक्टिस। ये शुरू में लगेगा कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन हम किसको चेंज कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे हैं। यू जस्ट सी, इवन सेइंग द लाइन, ये ड्राइवर है, ये आत्मा है, डिफरेंस। शुरू में ये फोर्सफुल कंडीशनिंग लगेगी, थोड़े दिन में ये नेचुरल कॉन्शियसनेस बन जाएगी। आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, ये ड्राइवर है, ये आत्मा है, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा?
1: बहुत आएगा।
0: अभी क्या डिफिकल्ट है इसमें? बहुत सिंपल है ये। जो आपके अभी सपोज आप कमरे में बैठे हैं, आपका स्टाफ आया, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है, ये आत्मा है, क्योंकि है ना, वो है ना, रोल अलग अलग प्ले कर रहा है, ये आत्मा है। बजाय कि हम पहले ये क्रिएट कर देते थे, नौकर है, कुक है, चपड़ासी है, क्या क्या बोलते हैं।
1: मेरे गुरु मुझे कहते थे कि जो तुम लोग गटर के सामने मुंह पे कपड़ा रख के और इस तरह देखते हो, चार दिन वो अगर नहीं आएगा तो आपका क्या हाल होगा? थैंक दैट पर्सन एंड वो आत्मा का आप शुक्र करो। सबसे पहले उसको रेस्पेक्ट करो, उसको कि आपका वो काम कर रहा है सफाई। जो आप क्या करोगे, आठ दिन नहीं आएगा, वो नहीं करेगा तो आप करोगे?
0: वो उसका रोल है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है।
1: हाँ।
0: लेकिन हम अभी
1: हाउ मच यू बेनिफिटेड बाय दैट,
0: राइट ना, दैट इज गिविंग अप्रिसिएशन फॉर द रोल। नाउ वी वांट टू गिव अप्रिसिएशन टू द सोल फर्स्ट। ये अप्रिसिएशन तो उस रोल के लिए कि वो नहीं करेगा तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है।
1: जैसे हम बोलेंगे द सोल प्लेइंग द रोल ऑफ दिस,
0: मैं तो फिर रोल भी छोड़ दो, आप सिर्फ एक लाइन क्रिएट करो हर एक को मिलने के टाइम, ये आत्मा है बस। रोल तो कर ही रहे हैं सब अलग अलग, हम अक्नॉलेज भी करते हैं लोगों के रोल को। आप अक्नॉलेज करेंगे कि आपका ड्राइवर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: पहले एक्नॉलेज कहाँ करते थे सिस्टर्स?
0: हम डिपेंड,
1: वॉचमैन बराबर दिखता नहीं है, ये सब बराबर
0: डांट रहे हैं, वो व्यवहार है, उनके रोल को हम अक्नॉलेज करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट।
1: एक्नॉलेज क्या करते, उनको रोल वाइज बात करते थे, उनके साथ रोल वाइज बिहेवियर था मेरा। रोल ये है, तू चुप कर, तू बैठ जा, तू छोटा है, तू बड़ा है, हाँ हाँ जी नमस्ते।
0: अब हम क्या कर रहे
1: अलग अलग,
0: अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से नहीं करेंगे, हम अंदर से करेंगे।
1: मतलब
0: हम सिर्फ ये थॉट क्रिएट करेंगे, ये आत्मा है, वेट एंड सी हाउ द बिहेवियर विल चेंज।
1: अंदर से हो तो बाहर से तो ऑटोमेटिक होगा, एज एन एक्टर आई कैन अंडरस्टैंड।
0: कॉन्शियसनेस शिफ्ट, तो कॉन्शियसनेस से थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी चेंज। सिर्फ आज ये होमवर्क है, कुछ भी करे, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, किसी से भी मिले, ये आत्मा है, एक तीन वर्ड है सिर्फ, ये आत्मा है बस। सिर्फ सोचते जाए, बोलते जाए, अंदर बोलते जाए, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, करते जाए, लिखते जाए, ये आत्मा है। आपके बेटे का नाम विवेक, आप सिर्फ एक पेपर पे लिखो, विवेक आत्मा है, विवेक आत्मा है। यू विल चेंज इंटरनली व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट पर्सन। दिस हैज टू बी डन, टू बी एक्सपेरिमेंटेड, टू सी व्हाट मिरेकल हैपेंस। क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू लुकिंग एट दैट पर्सन विद द कॉन्शियसनेस, ये मेरा बेटा है, तो मेरा बेटे के लेबर के थ्रू बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं।
1: लेकिन एज एन एक्टर जब मैं एक किंग का रोल करता हूं तो मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, कितनी बार बोलता हूं अपने आप को,
0: मैं राजा
1: उठने में, बैठने में, राजा ऐसे बैठते, राजा ऐसे करते हैं। लेकिन जैसे शूटिंग खत्म होती है फिर वापस सुरेश ओबेरॉय बन जाता हूं।
0: हाँ, तो कितनी देर, लेकिन एक पूरा दिन करेंगे अगर शूटिंग, सपोज वन मूवी की आप शूटिंग 8 घंटे कर रहे हैं, तो आप 8 घंटे मैं राजा हूं कर सकते हैं ना?
1: 100%।
0: अब वो मूवी की सपोज 6 महीने चल रही है शूटिंग,
1: हाँ, तो रोज वापस
0: और 6 महीने रोज आप जा रहे हैं, तो 6 महीने रोज आप मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, वो कॉन्शियसनेस कर सकते हैं ना? 6 महीने कर सकते हैं, तो 6 साल भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इट ऑल डिपेंड्स हमें कितना टाइम करना है। वो तो आपको पता होता है कि ये खत्म हो गया, सो यू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस।
1: हाँ, हियर जो ओरिजिनैलिटी पे मैं आ जाता हूँ, वैसे फादर का रोल प्ले करके आई शुड बी ओरिजिनैलिटी पे मुझे आना चाहिए,
0: आना
1: एज अ सोल।
0: यस,
1: आई एम अ सोल प्लेइंग
0: फादर का रोल प्ले करके नहीं ओरिजिनैलिटी में आना है। ओरिजिनलिटी में होकर फादर का रोल प्ले करने जाना है.
1: आई सोल.
0: एक्चुअली अभी रोल को नहीं देखो,
1: सिर्फ सोल.
0: रोल कॉन्शियसनेस तो बहुत डीप इनग्रेन्ड ही है. आप सिर्फ सामने बैठो अगर बात करते हैं, आई एम टॉकिंग टू दिस सोल. रोल तो हमें पता ही है, हमें याद नहीं दिलाने की जरूरत है अपने आप.
1: जब आपकी बॉडी मुझे दिखती है तो सोल कैसे देखो आपको?
0: तो बॉडी तो दिखती है, तो ड्रेस भी तो दिखती है.
1: हाँ तो ड्रेस पे तो कमेंट करता हूँ मैं.
0: हाँ कोई बात नहीं,
1: जींस कैसे पहने मैं
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि आप ड्रेस पे कमेंट कर रहे हैं, मेरे पे नहीं कर रहे हैं.
1: तो आप पे ही आ गया ना, उसको अकल नहीं है कैसे कपड़े पहनता है.
0: मेरी ड्रेस पे.
1: हाँ
0: आप किससे बात कर रहे हैं? ये ड्रेस है, ये भी ड्रेस है,
1: लेकिन जो फेस है.
0: हाँ?
1: जो फेस मुझे दिखता है,
0: दिखता है.
1: फेस देखते हुए मैं आत्मा कैसे बोलूं उसको?
0: फेस दिखते हुए ये फेस मैंने पहना है,
1: इतना सोचना पड़ेगा मुझे.
0: ये आत्मा है, ये ड्रेस भी पहनी है, ये ड्रेस भी पहनी है. दो ड्रेस पहनते हम, एक ड्रेस रोज चेंज होती है, एक ड्रेस कुछ सालों के बाद चेंज होती है.
1: मैं नहीं बोलूंगा ये डिफिकल्ट.
0: इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स द ट्रूथ. इज इट नॉट द ट्रूथ?
1: सत्य तो है.
0: ये ड्रेस हम रोज बदलते हैं.
1: लेकिन आंख जो देख रही है सिस्टर,
0: आंख तो ये भी देख रही है, लेकिन आंख को पता है कि ये पहनी हुई वाली ड्रेस
1: okay.
0: है.
1: मैं साड़ी से बात नहीं कर रहा हूँ.
0: आप साड़ी से नहीं बात,
1: चेहरे से कर रहा हूँ. तो अब साड़ी से, चेहरे से नहीं, आत्मा से.
0: यस
1: ओके ओके.
0: इट्स नॉट सिंपल.
1: थोड़ा सिंपल हुआ. हाँ
0: है ही सिंपल, वो है ही सिंपल, क्योंकि वो सत्य है ना, तो वो सिंपल है. हमने सिंपल को सारा भूल के कॉम्प्लिकेटेड किया है. नाउ वी जस्ट गोइंग बैक टू व्हाट द ट्रूथ इज. तो आज ये अभ्यास, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ये एक थॉट भी क्रिएट करने से, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, बिहेवियर, हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ अलग फैल रही है. वी आर इन द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज ए ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस. जर्नी हैज बिगन. अब हमें इस यात्रा को सिर्फ आगे लेकर जाना है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ नॉलेज, मैं शरीर का मालिक आत्मा एनर्जी हूं. सेकेंड पॉइंट ऑफ नॉलेज, मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर को कहां से बैठकर चलाती हूं. वेयर एम आई इन दिस बॉडी?
1: आपने बताया था ना इसके अंदर.
0: राइट right. अब ये भी मुझे याद रखना है, ये भी मुझे याद रखना है कि यहां हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में सेंटर, क्यों मैं वहां बैठा हूं, क्यों मैं आत्मा वहां हूं, क्योंकि आई हैव टू बी नियर द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इस बाकी पूरे शरीर को चलाएगा. जैसे एक मशीन है, सपोज एक रोबोट है, उस रोबोट को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, तो रोबोट ये शरीर है, विजुअलाइज करें, एक रोबोट है, वो ये शरीर है. उस रोबोट को चलाना, कंट्रोल करना किससे किया जाता है? कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन से किया जाता है. तो वो कंप्यूटर कौन है? वो ब्रेन है. लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कोई बैठता है,
1: लाइक रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है.
0: yes.
1: और जो भी चैनल मुझे टीवी में चाहिए,
0: दैट्स इट,
1: दबाने वाला मैं हूँ.
0: जैसे आजकल गेम्स नहीं होते कि हाथ में रिमोट कंट्रोल है, प्लेन क्या है? वो शरीर है. जो रिमोट हाथ में है वो क्या है? वो ब्रेन है. वो जो दबाने वाला है
1: वो मैं हूँ,
0: वो मैं हूँ. तीन,
1: तो मैंने कुछ नहीं अब नहीं किया बोलने की चांस ही नहीं अब तो.
0: कैसे चांस?
1: ये ज्ञान मिलने के बाद
0: कैसे पॉसिबल है?
1: मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी.
0: अब वो प्लेन वहां पड़ा है, वो सडनली ऐसे उड़ जाता है, तो हम कहेंगे क्या प्लेन अपने आप उड़ गया? अपने आप उड़ ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता. मैंने कोई बटन दबाया है तो वो वैसे उड़ा है. अब क्या हो रहा था? सिर्फ अनअवेयर बटन दब रहे थे. तो वो प्लेन इधर उधर उधर उधर उधर कुछ कुछ हो रहा था. अब अवेयरनेस से बटन दबाना है कि कौन सा बटन दबाना है, किस डायरेक्शन में उस प्लेन को लेके जाना है. अवेयरनेस से कई बार नहीं होता, अनअवेयर बटन दब जाते हैं. तो ये आजकल हम पहले अनअवेयर चल रहे थे, कोई भी बटन दब रहा था. तो क्या हो रहा था?

0: मुख कुछ बोल रहा था, हाथ कुछ कर रहा था, कुछ भी हो रहा था। मैं बटन दबाऊं नहीं तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, और अगर कंप्यूटर कुछ करे नहीं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो बटन दबाने वाला मैं।
1: सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे ही आ रही है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग।
0: इट्स नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम दी ओनली वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग। ब्रेन क्या है? जड़ है।
1: हाँ, दिस अ बेटर वर्ड।
0: ब्रेन जड़ है।
1: इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द पावर।
0: आई एम द पावर।
1: ओके,
0: आई एम दी ओनली वन हु कैन डू इट। बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। ब्रेन कैन नॉट गिव इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी विदाउट मी। तो ये रोबोट, ये कंप्यूटर, ये मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं आत्मा इंस्ट्रक्शन दूंगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर वो सिग्नल फिर उस रोबोट को देगा, रोबोट ये काम करेगा। अगर रोबोट क्या कर रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, ना रोबोट की गलती ना कंप्यूटर की गलती, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन को चेंज करना
1: है। आपके पास है रिमोट, आपके पास है हाथ में कंट्रोल्स, आपके पास है, चेंज कर दो डायरेक्शन।
0: दैट इज ऑल दैट वी आर डूइंग, दैट इज ऑल वी आर डूइंग। तो मैं आत्मा, सेंटर ऑफ द ब्रेन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स क्रिएट करने के साथ साथ हमें विजुअलाइज भी करना चाहिए।
1: क्या?
0: जो भी थॉट हम क्रिएट करेंगे उसको हमें साथ साथ विजुअलाइज करना चाहिए। अगर हम विजुअलाइज नहीं करते तो ध्यान कभी कभी इधर उधर चला जाता है। तो जैसे हम थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा हूं, हमें उसको विजुअलाइज कर लेना चाहिए। विजुअलाइज मतलब मैं आत्मा यहां, सेंटर ऑफ द फोरहेड, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द ब्रेन में विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, इस प्रकृति के बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा पॉइंट नहीं है, आत्मा एनर्जी है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हमें उसको एक वो सिंबॉलिक फॉर्म देना है। तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी कैसे लगाते हैं, वैसे हमें यहां देखना है कि मैं आत्मा शरीर का मालिक, यहां विजुअलाइज करें, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। यहां से एनर्जी इस पूरे शरीर को चलाती है, यहां से हर थॉट जो मैं क्रिएट करता हूं वो चारों तरफ फैलती है, हैपनिंग फ्रॉम हियर। सो माय सेकंड स्टेप कि मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, विजुअलाइज। थर्ड स्टेज, मैं आत्मा सारा दिन क्या करती हूं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना ये आत्मा की फंक्शनिंग कैसे है। जैसे ये शरीर है, हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि ये इसके अंग हैं, ये इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ऐसे ये चलता है तो ऐसे ये बनता है, हमें पूरी नॉलेज है इस शरीर की। इसी तरह आत्मा सारा दिन क्या करती है उसकी भी नॉलेज चाहिए। जैसे इस शरीर को चलाने वाले ये सारे अंग हैं, वैसे आत्मा के भी अंग हैं।
1: अच्छा।
0: आत्मा के भी फंक्शंस है कि आत्मा क्या करती है। जब मैं आत्मा सोचने का काम करते हो, वी कॉल इट द माइंड। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूं, व्हेन आई द सोल आई एम क्रिएटिंग थॉट्स, इट्स कॉल्ड द माइंड। मैं आत्मा सोचती हूं, हम सब ने अनुभव किया है कि हम सोचते हैं, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन,
1: हजारों लाखों थॉट्स
0: सारा दिन में। थॉट्स दिखाई नहीं देती,
1: नहीं देती।
0: थॉट्स कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं दिख सकती है, लेकिन हम सारा दिन का अनुभव है कि हम सोचते हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि वो सोचता है, उसको बोलना, चलना, लिखना सिखाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता। सोचना तो वो कर रहा है, ये सोच जो रहा है ये एनर्जी है, ये फिजिकल है। सोच दिखाई नहीं देती, फील होती है, इट्स एनर्जी। ये जो एनर्जी है थॉट्स की, ये एनर्जी मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूं। तो मैं आत्मा ही जब सोचती हूं उसको मन कहते हैं।
1: ओके।
0: हम आत्मा वर्ड यूज नहीं करते थे आज तक, डेली सारा दिन में, लेकिन मन वर्ड यूज करते थे,

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जा रहा था?
1: नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
1: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
0: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
1: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई छुट्टी बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लगता वो छपता, मैं ऊपर वो नीचे, वो आगे मैं पीछे, अरे मेरे से वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल वो पान पान, मैं पसीना वो दाल दाल, मैं सुर में वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। मेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और कई बार हम लोग जो है सैटरडे के दिन शाम में आपसे मुलाकात होती है सभी हमारे युवा साथियों से, और खास करके हम लोग जिस विषय को लेकर बात करते हैं वो विषय ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने करियर को बहुत अच्छा बनाए। और करियर को बनाने के पहले जो है हमारी अपनी अगर पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, हम अपने पर्सनालिटी को अच्छा कर लें, तो फिर हम किसी भी करियर को चुन लेते हैं तो उसमें बेहतर बना सकते हैं, उसमें बेहतर काम कर सकते हैं। तो आइए बिगनिंग ऑफ द करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बात करते हैं आज। और हमारे साथ सोनिया जी दिल्ली से जुड़ी हुई है और आप रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं और अलग अलग आपने विशेष मोटिवेशनल टॉक्स दिया है, लोगों को मोटिवेट किया है, रेडियो पे बात की है और गाने और संगीत के साथ भी आपका रुझान बड़ा अच्छा है और आप गीत भी गुनगुनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आज हमारे सभी युवा साथियों को करियर डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पे पर्सनालिटी अगर हमारी अच्छी हो जाती है तो बेहतर करियर का चूज करना भी आसान हो जाता है। तो आइए युवा साथियों, आज हम लोग हमारे साथ हमारे खास मेहमान सोनिया जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप सभी की तरफ से सोनिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच
0: जी। सोनिया जी कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ
0: जी। जी जी, मैं चाहूंगा कि आज हम लोग जिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो ये शब्द बड़ा कॉमन है और लोग चाहते भी हैं कि ये चीजें इस तरह की बातें हो और हम अपना करियर को या अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये क्या बला है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताए।
1: जी देखो, युग बदलता है, समय बदलता है, तो उसके साथ बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। आज भी अगर हम 50 साल पहले मुड़ के देखें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं गया। क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि नहीं था, आबादी नहीं थी, जॉब फील्ड में लोग नहीं जाते थे, ज्यादातर लोग दुकानदारी या अपने घर के बिजनेस को ही अपना सोर्स ऑफ इनकम समझते थे, तो उसमें पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट प्रति नहीं पड़ी। पर आज का सिनेरियो तो हम सब जानते हैं, छोटी से छोटे फील्ड में भी हम अगर जाएं तो क्या देखते हैं कि भर भर के कंपटीशन है ना। तो जब और जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो क्या चूज करता है, उसके पास बहुत ऑप्शन है ना। उसके पास 100 कैंडिडेट हैं और उसमें उसको 10 ही चूज करने, तो आप समझ सकते हैं वो 10 किए जाएंगे। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट यहां मतलब अपने व्यक्तित्व सुधार लाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपका व्यक्तित्व है या आप उसको बहुत चेंज करना चाहते हैं, नहीं, छोटी छोटी बातों को दूसरों से बेहतर समझना ये भी कोई नहीं कहा जाता अपने आप को मैं बहुत बड़ा हूं या मेरे में मैं ऊपर नीचे हूं, नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को निखारना, अपने आप को और बढ़कर बनाना। जो आप हैं सुधार तो सबको अच्छा लगता है ना। तो जिस चीज में आप काम करते हैं उस चीज को अगर आप और निखार लाते हैं तो आपका चूज किया जाना निश्चित है। तो इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना, अपनी कमियों को दबाना। ये नहीं कहती कि कुछ कमियां ऐसी हैं जिसको आप नहीं कर सकते, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत

0: है, देखो अगर आपकी नाक टेढ़ी है या आपके कान वैसे हैं ना, तो आप सोचोगे कि इसको मैं कैसे बदलाव लाऊं, नहीं, उसको एक्सेप्ट करना है। पर पर्सनैलिटी का मतलब है अंदरूनी आपका वर्चुअल जो हैबिट्स है ना, उन चीजों में बदलाव ला अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना। जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, ठीक है वो खिलाड़ी।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि पर्सनालिटी क्या है, उसके बारे में आपने जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने क्लियर किया कि जो हमारा फिजिक्स है, जो चीजें हमको ईश्वर ने दी है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उसे हम स्वीकार करते हुए उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो पर्सनालिटी की बात है, जो हमारी सोच की बात आपने बताया, जो हमारा इनर पर्सपेक्ट है, उन चीजों में हम बदलाव ला सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी भावनाएं रख सकते हैं, रचनात्मक सोच सकते हैं। तो ये एक्चुअली में हमारा जो है इनर पर्सपेक्ट की बात आती है, पर्सनालिटी की बात आती है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, हम वैल्यूज को अपने लाइफ में लाते हैं, तो वो चीजें हमें जो है बहुत ज्यादा काम आती हैं हमारे लाइफ में। ऐसा कहा जाता है कि आप कौन हो ये जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैसे हैं ये बहुत मायने काम करता है। इसलिए दोनों का जो कॉन्सेप्ट है हमें क्लियर से समझना चाहिए। हम ये नहीं बताएं कि मैं इसका लड़का हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, लेकिन दूसरे आपके लिए ये कहें कि ये बंदा ऐसा है। तो क्या हम लोग इस चीज पे कभी काम नहीं कर पाते? शायद ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसी विषय को लेकर काम करा जाता है। तो आइए मैं सोनिया जी से एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जो सवाल बहुत ही सिंपल है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम समझ गए कि पर्सनालिटी क्या है, किसको कहा जा रहा है, तो अब ये पर्सनालिटी को कैसे हम लोग डेवलप करें, कैसे हम लोग इन चीजों को समझे और विकसित करें अपने पर्सनालिटी को। जी
0: जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने कि पर्सनालिटी में हम सुधार कैसे लाएं। क्या है पर्सनालिटी? अंदर बाहर का नहीं, बाहर का आवरण जैसा भी स्वीकार करें, ठीक है ना। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो हाइट के साथ भी जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज सर किया, उसके बाद भी वो बहुत सक्सेसफुल हुए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड में आपका जो बाहर का आवरण है, यानी हाइट और कलर, ये इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर आप अंदर के गुणों को विकसित करके आगे बढ़ते हैं ना, तो वो आपको करिश्मेटिक पर्सनैलिटी का लुक देता है। तो ये जो आपने तीन सवाल पूछा कि हम कैसे ग्रो करें, ब्यूटिफुल क्वेश्चन। तो पहला, इसका एजेंडा मैं तीन बात करूंगी। सबसे पहले, हमारी पर्सनालिटी में जो रुकावट है ना, वो हेजिटेशन है ना। तो लैंग्वेज, जैसे आज हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पर क्या है ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना भी, मैं ये नहीं कहती इधर इंग्लिश बोलो, फ्लुएंटली आप बात कर दो ना, आपने जिंदगी में बात ही नहीं की तो इतना जल्दी कवर अप कर पाना ईजी नहीं है, पर फिर भी उस लैंग्वेज पे कमांड आप हेजिटेशन को दूर करेगा, यानी कुछ कुछ इंग्लिश आपको सीखना हेल्प करेगा। उसके लिए आप अच्छी वोकैबुलरी बुक्स पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। जैसे मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं में, तो धीरे धीरे जब मैं देखती थी अपने क्लासमेट्स को कि वो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, टीचर करते हैं, तो मोटिवेट होती थी, तो मैंने डिक्शनरीज पढ़ना स्टार्ट किया, रोज के 10-10 वर्ड लिखना स्टार्ट किया, फिर उसके मीनिंग सेंटेंस में फ्रेम करना, ऐसे करते करते ना आपका खुद का एक वोकैबुलरी सेक्शन मेंटेन होता है, तो उससे हेजिटेशन दूर होता है। क्योंकि चार लोग बात कर रहे हैं तो आपको बात करने के लिए लैंग्वेज है ना, हिंदी है तो बहुत अच्छी हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश है तो उसमें भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं एक्सपेक्ट बात कर स्किल एंड रीस्किल, यानी अगर आपको करिज्मेटिक पर्सनैलिटी को इनकल्केट करना है तो सीख है ना। तो जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, अपने आप को रीस्किल सीखेंगे नहीं, तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, कोई फील्ड बुरी नहीं होती, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, तो किसी भी फील्ड में आप सीख कर बहुत कमाल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मौके सर उन्हीं के पास आते हैं जो कोशिश करते हैं उस चीज के लिए, है ना। प्रकृति आपको भर भर तैयार है ना। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब बस देखता है ना कि आप किसी चीज के लिए बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो यूनिवर्स खुद

0: आकर आपको है वो अपॉर्चुनिटीज, तो आप स्किल करना और रीस्किल करना इसका दूसरा एजेंडा है। तीसरा मैं कहूंगी अंडरस्टैंडिंग करना, यानी कि किसी चीज की डीपली जाकर उसको समझना। यानी देखो ना, कहते ना एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी, क्या अनाड़ी क्या करता है, बिना सीखे चला मैदान में उतरता है ना, तो हथी का पास। और खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग पे जाए, ट्रेनिंग करके पूरा सीख कर जाएगा। देखो अब जैसे कमांडोज होते हैं ना, एक शार्प ट्रेनिंग के बाद ही उतरते हैं ना मैदान में, तो अगर वो कमांडोज बिना ट्रेनिंग के उतर जाए तो, या फिर एक डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के सर्जरी करने लगे तो क्या रिजल्ट होगा, है ना, तो पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखने के साथ अंडरस्टैंडिंग करना, ये अंडरस्टैंड करना कि मेरे लिए वो कौन सी चीज अच्छी है जो मैं सीखना चाहता हूँ, जिसे मैं 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। क्योंकि जिसको आप अपना 100% नहीं दे सकते ना, उस चीज में आप चाहकर भी ना बेस्ट नहीं दे पाते हो, तो किसी के करने या उस चीज में जाइए जिसमें आपको बहुत इंजॉय करते हो, तो सीखना ही हो जाता है। तो इसका मैं पहले बात कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला रोल क्या निभाता है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म से हमारा मतलब है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिविटी को एक्वायर करेंगे ना, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तभी तो कहते ना इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, है ना। कोई चीज अगर एक एक पैर का आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, तो हमें क्या करना है, मॉडल्स अपने आगे अपने आंखों के सामने रखने हैं। यानी पॉजिटिविटी तब आएगी ना, हम ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो इतने एफिशिएंट नहीं थे, पर फिर पॉजिटिविटी के दम पर और अपनी स्किल्स के दम पर उन्होंने वो कर इम्पॉसिबल था, है ना। तो अपनी एबिलिटीज को फिगर आउट करना है कि मतलब मेरे में 20% है, तो 80% वो मेहनत से आएगा, बिना मेहनत से कुछ नहीं आएगा, पर निरंतर प्रयास। वो बोधराज की कहानी सुनते थे ना हम क्लास 2 में, शायद एनसीईआरटी की बुक में आपने भी सुनी होगी, है ना। तो उसके टीचर ने क्या कहा, तुम निकम्मे हो, तुम कर नहीं सकते, तो तुम क्या करो, बेहतर है घर चले जाओ।
1: बिल्कुल,
0: है ना वो कहानी। तो उसने जब देखा कि एक मटके को बार बार सीमेंट पे रखा जा रहा है तो भी निशान आ गया उसके, तो उसने कहा अगर निशान आ गया तो मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूं कि मैं भी प्रैक्टिस से सीख सकता हूं। तो वापस गया और बहुत बड़ा विद्वान पंडित बना। तो ऐसी चीज इंस्पायर करती है, यानी अपनी एबिलिटी को फिगर आउट करो कितने परसेंट है, 10%, 20% और 80% निरंतर प्रयास से वो आ जाएगी। उस क्या हेल्पफुल है, बुक्स, है ना। जितना टाइम हम मोबाइल, आजकल की जनरेशन, अगर आधा समय बुक्स में देंगे तो हमारे टारगेट को पूरा करने में कोई नहीं रोक सकता। यानी कुछ बुक्स हैं, जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं बहुत, तो आप उन अमीर लोगों की कहानी पढ़िए। जैसे एक बुक है मेरे पास, द रिचेस्ट मैन इन बेबिलोन, ये मेरा बेटा पढ़ता है, ये जॉर्ज क्लेगन ने लिखा है, ये बहुत अच्छा बुक है, है ना। एक द रिच डैड एंड द पुअर डैड, ये कहानी हुई, एक गरीब बच्चा बहुत अमीर बना, है ना, क्योंकि उसने रोल मॉडल रखा। एक सैपियंस है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, बहुत अच्छी बुक है, वो कैमलरी की बुक है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अच्छी बेहतरीन किताब है। यानी कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हैं। जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, वैसा बनोगे। तो मतलब आप ज्यादा फोकस करते हो ना, वो चीजें आपके अंदर इनकलकेट होने जाती है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे ना, ये तो गीत है, है ना। जैसा सोचोगे तुम वैसा जाओगे, यानी सोच से शुरू होता है हमारा कामयाबी का पहला पड़ाव। यानी सोचो दिन रात कि मैं कामयाब। तो दूसरा इसका एजेंडा है यानी ऑब्जर्वेशन। पहला मैंने बताया ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी, अच्छी किताबें सुन पढ़ो और अच्छे लोगों से मिलो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। नेगेटिव लोगों से कितना जितना किनारा करेंगे उतना अच्छा। जो आपको ये जतलाएं कि तुम कमजोर हो, ये नहीं कर सकते, उन लोगों से कोसों दूरी बनाए रखें, उनके पास भी ना जाएं, है ना। तो नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं क्योंकि उनका सर्कल भी नेगेटिव है। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप जुड़ाव रखें जो आपको प्रोत्साहित करें, जो पॉजिटिव हो। तो ऑप्टिमिज्म पहला पड़ाव है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करना, जो आप बनना चाहते हो। अब एक डॉक्टर साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करेगा तो फिर कैसे डॉक्टर बनेगा, है ना, एक खिलाड़ी डॉक्टर को ऑब्जर्व करे तो कैसे डॉक्टर बने।

0: यानी जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में आपको कार्य करना है, रोल मॉडल आप चाहें तो अपने ना कमरे में एक तो पिक्चर्स लगा दीजिए, जैसे विराट कोहली क्रिकेटर बनना है तो विराट कोहली या धोनी, महेंद्र सिंह या आपको इंटरनेशनल स्टार, उनकी पिक्चर्स लगाएं, उनको बार बार देखें कि ये कैसे बने, है ना, उनकी बुक्स पढ़े, उनकी हिस्ट्री को जाने, तो मतलब वो रोल मॉडल तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे लोगों को देखने से आप क्या मतलब अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश में जुट जाते हो, बार बार आपको ना हिम्मत आती है ये बने हैं तो मैं भी जरूर बन के दिखाऊंगा, हाँ या दिखाऊंगी। तो ऐसे डॉक्टर अपने उसको रखें जिनमें वो क्वालिटीज हैं, है ना, मुझे MD करनी है या मुझे बहुत बड़ा सर्जन बनना है तो उनको देखिए, साइंटिस्ट को देखिए, कलाम को देखिए, है ना, तो वो भी बहुत छोटे बैकग्राउंड से थे तो कहाँ पहुंचे, है ना। तो इसलिए ऑब्जर्व करनी है क्वालिटीज को और फिर उनको अपने में धारण करना है, और जब क्वालिटीज आएंगी आपके अंदर तो फिर मेहनत उतनी मुश्किल नहीं रहती। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ऑब्जर्वेशन, मतलब रोल मॉडल को देखना, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसे देखिए, उनके बारे में जानिए वो कैसे बने, तो अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए, आर्टिकल्स या अच्छे सेंटेंसेस को देखना, ना वोकैबुलरी को शामिल करना। तीसरा है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल पर्सनैलिटी, शो ऑफ नहीं करना है ना। लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कोई हीरो हीरोइन को देखते हैं ना, आजकल कॉपी बहुत है, है ना, क्या करते हैं ना, शाहरुख खान ऐसे हाथ खोलता है ना, कैटरीना कैफ जो ऐसे कपड़े पहनती है तो वो उन्हें कॉपी करते हैं, है ना। आपका फिगर वैसा नहीं है, अगर आपकी पर्सनैलिटी वैसे नहीं है तो लोग आपका उल्टा ना, आप एक कहते हैं ना एक फनी कैट बन जाते हो, है ना, मजाक का विषय बन जाते हो, तो लोग आपसे मिलेंगे पर आपसे दूर भागेंगे। तो वो दिखावा नहीं करना है जो आप नहीं है, है ना, दिखावे से दूर रहना है, रियल बनना है। जैसे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बात करूंगी, धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, है ना, तो पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी को जानती है, अनिल और मुकेश अंबानी जी के स्वर्गीय पिताजी। तो उनका इनकम तब नहीं था, वो गांव से थे, एक नॉर्मल बैकग्राउंड के थे, बट वो ना 5 करते थे महीने में एक बार, और वहां एक कप चाय पीकर आते थे। तो उनके फ्रेंड्स कहते थे, तुम इतनी कम इनकम में इतना पैसा तुम चाय वीकली जाते हो, चाय में उड़ा देते हो ना, इसका क्या मतलब है। कहता, मैं वहां चाय पीने नहीं जाता हूँ, मैं वहां उन अमीर लोगों को देखने जाता हूँ कि उनका स्टाइल, उनका हाव भाव, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, और उनकी मैं बात सुनने की कोशिश करता हूँ कि वो उस फील्ड में कैसे आगे बढ़े, है ना, क्या मुझे सीखने को मिल सकता। सीखने के पर्पज से जाते थे, शो ऑफ करने नहीं जाते थे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना चाय पीना। तो यानी अपनी जिंदगी की पॉपी कहते ना एनर्जी को में जितना लगाएंगे उतना पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। इसमें आपका यूट्यूब भी हेल्प कर सकता है ना, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाके पैसा खर्च करना, तो यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग में आपको हेल्प करते हैं। तो बी रियल, रियलिस्टिक, है ना, आर्टिफिशियल और फेक नहीं बनना है, वो नहीं पहनना है जो हमें सूट नहीं करता, और वो नहीं खाना है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, है ना। तो एक हमारा डाइट भी बहुत डिपेंड करता है, डाइट से भी कहते हैं ना, डाइट से क्या नहीं, डाइट भी हमारी पर्सनालिटी को निखार लाती है, डाइट पे फिर हम कभी बात करेंगे, पर ऑथेंटिसिटी, हाँ, रियल बनिए और आर्टिफिशियल मत बनिए। और तीसरी बात है कि सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। वो पता है क्यों, पूछे क्यों?
1: क्यों?
0: क्योंकि ईश्वर ने हमको दो कान दिए हैं और एक ही मुख दिया है, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्यों दिए हैं दो कान? ईश्वर ने दो कान इसलिए दिए हैं कि हम अच्छे लोगों की बातें ज्यादा सुने, और जहां बोलने की जरूरत है उतना बोलें और वहीं बोलें। गलत जगह पे और गलत बात कहना आपको बहुत है, कहते ना भारी पड़ जाता है, क्योंकि लोग कहते ना मार तो भूल जाते हैं ना पर बात नहीं भूलते। तो इसलिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, है ना। थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचिए कि आप जो बात बोलने जा रहे हैं ये किसी को हर्ट तो नहीं करेगी, क्योंकि जब लोगों को आपकी बातें हर्ट करेंगी लोग आपसे अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे,

0: आपसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को भी अपलिफ्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट फेज है हमारे लाइफ का। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विशेष लिसनर्स को अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। और चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारी बातें हो रही सोनिया जी से और काफी अच्छा उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी क्या है वो तो हम समझे, लेकिन उसको डेवलप करना हर व्यक्ति को अपने आप पे काम करना होता है, क्योंकि यही एक बड़ा मुश्किल सा काम हमें लगता है कि हमें आज के समय में आज के जो चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई आज लोगों को बस सिर्फ चीजें हाथ में मिल जाए। एक बड़ी हमारी बुरी आदत सी हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो हम लोगों के अंदर जो है एक पॉजिटिव चेंज के बजाय एक नेगेटिव चेंज आता जा रहा है। हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी को हम लोग एज ए टूल यूज करना चाहिए, लेकिन हम डिपेंडेंट हो रहे हैं और हम कंप्यूटर और ये सारी चीजें लगाकर लोग भी काम कर देते हैं और एक बंदे को कंप्यूटर पे लगा देते हैं, उनको बता देते हैं ये चीजें करो और हम बैठे रहते हैं। तो इस वजह से चीजें जो है थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं धुलमिल हो गई है, तो फिर से उसे झटकना चाहिए। जैसे किसी आईने को अगर हम रखे एक ही जगह पे और उसको अगर हम लोग क्लीन नहीं करते हैं तो उसपे धूल जम जाती है और जब आप चेहरा देखेंगे तो आपको साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है कि आईना साफ हो तो चीजें दिखाई दे। तो अब बात करते हैं कि सोनिया जी, आपको जब पर्सनालिटी के बारे में आपने किस तरह से अपने ऊपर काम किया, वो कहाँ से शुरू किया आपने, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर कीजिए।
1: थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो मैं कभी सोचती थी कि कोई कभी मेरे से ये पूछेगा कि तुम्हारी पर्सनालिटी में सुधार कैसे आया, कि तुम आज मतलब जहां जाती हो तो जैसे मुझे कहा अब कि तुम जहां जाती हो ना वहां रौनक छा जाती, तो तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है, चांसेस मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सेंटर पे भी जाती हूँ तो वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, है ना, वहां के। तो जहां भी मतलब आप जाते हो तो वो पर्सनालिटी को मैंने कैसे किया या कैसे ग्रूम किया वो मेरी सीखने की ललक थी। तो जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था, और ज्वाइंट फैमिली में जब मैं कुछ इंग्लिश में बात करती थी, मुझे अच्छा में बात करना, तो वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बोलते थे बड़ी अंग्रेज आई है। तो उसको भी मैं पॉजिटिव सेंस में लेती थी कि अच्छी बात है पूरी फैमिली में मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। तो फिर भी मेरा सीखने का ना वो जो एक पैशन था वो कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। उसके बाद कि मेरे को बचपन में टैलेंट तो था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बिना किसी गाइडेंस के, मुझे ईश्वर का ऐसा सपोर्ट था भगवान का, मैं पूजा पाठ बहुत करती थी और बातें करती थी अपने परमात्मा, तो वो मुझे वो टैलेंट वो देते थे कि बचपन से मैं किताबें बहुत पढ़ती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, ये जो भी

0: रहा है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज क्यों बच्चे हमारे पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत एक ऐसा गैजेट उनके हाथ में है जिसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी गार्बेज, कहते हैं ना गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, दूसरों की वीडियो देख देख कर सिर्फ फालतू आ रहे हैं और कुछ नहीं। तो हमारे टाइम जब अच्छा ही गैजेट्स नहीं होते थे तो हमारा खाली टाइम ना कॉमिक बुक पढ़ने में, या फिर चंपक होती थी, या फिर वो स्टोरी बुक्स होती थी ना बड़ी अच्छी अच्छी तरह की, जिसमें से मोरल, हाँ तो वो साबू और वो मतलब ऐसी कॉमिक्स भी होती थी, ऐसी स्टोरी बुक्स भी होती थी, वंदना ऐसी तरह की। तो वो मैं एक एक दिन में, मैं मेरे पास जो पॉकेट मनी आती थी तो वो पॉकेट मनी मैं ये किराए पे लेती थी, यानी एक शॉप थी मेरे स्कूल के पास, वहां ये रेंट पे देते थे एक रुपया एक दिन का। तो मुझे रोज के, हमारा अपना थिएटर था तो ऐसी इनकम की कमी नहीं थी, फिर भी हमारे पापा हमें 5 रुपए देते थे रोज के, तो जिसमें से 3 रुपए की ना मैं कॉमिक बुक किराए पे लाती थी घर पे। और एक ही दिन में, पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था, बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं वो बुक्स बहुत पढ़ा करती थी, इतना पढ़ा करती, कहीं से मिल जाए बुक, मिल जाए बुक, मिल जाए स्टोरी बुक मिल जाए। तो वो पढ़ते रहने से तब मेरा जो ब्रेन है, मेरा जो राइटिंग स्किल बढ़ता गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने शायरी करना स्टार्ट किया, पोइट्रीज लिखना स्टार्ट किया, पोइट्रीज मुझे पढ़ने की बड़ी आदत थी ना, किचन में काम करते मैं गुनगुनाती रहती थी कुछ ना कुछ। तब शायद मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी, जो परमात्मा पिता इस मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत चेंज नजर आया मेरी वॉइस में भी, तो वो इतना पहले नहीं था, पर गुनगुनाने की आदत बहुत थी। तो इस तरह गाने लिखना शुरू किया, गाने कंपोजिशन भी कब मैं करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। ये वो बुक्स पढ़ने का एक पॉजिटिव जो रिजल्ट मेरी लाइफ में आया, और वोकैबुलरी की बुक पढ़ने से वो मेरी अपनी एक डिक्शनरी मेंशन होती गई, तो बोलने का मुझे, फिर जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होते सभी टीचर्स के पास भागते थे और मैं अपना डिबेट का कंटेंट खुद लिखती थी, यानी विदाउट कोई, और हमेशा मेरा प्राइस फर्स्ट आता था। और मैं हैरान होती थी, हमारे हिंदी टीचर बोलते थे कि सोनिया तुम्हारा कंटेंट तो होते हो, जब आपको टीचर आपका कंटेंट मांग रहा है तो मतलब आपके कंटेंट में दम है। और जब मैं बात करती थी, डिबेट बोलती थी, तो तालियां बहुत बजती थी, तो उससे मेरा हौसला बहुत बढ़ गया, है ना। इस तरह मेरे बोलने का भी ये जो मेरा टैलेंट है बिल्टअप होना स्टार्ट हो गया ना, जिस चीज पे आप काम करते हो लगातार निरंतर करते हो, कुछ ना नहीं किया कभी जिंदगी में, ना नहीं होता मेरे से। तो जैसे कभी कुछ था कि तुमको ना, अभी जैसे ऑनलाइन भी कभी क्लास लेने का मौका मिलता है तो सोनिया बहन अच्छा सब ना आपकी क्लास एंजॉय करते हैं, तो अभी 1 घंटे में क्लास ले लोगे? कोई ऐसे रेडी नहीं हूँ, कुछ नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा तो कहते थे कि मतलब हो जाए, तुम्हारी डिक्शनरी में ना नहीं होता कभी कि नहीं हो पाएगा ना, मैं रेडी नहीं हूँ। तो ना नहीं करिए, मौके के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी आपको मौका दे देगी, और वो मौका आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। हमारी सिस्टर शिवानी, ये मेरे लिए सिस्टर शिवानी रोल मॉडल है, मॉडल है कि जब उनको पहला चांस मिला रेडियो पे बात करने का तो उन्होंने ना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी तैयारी नहीं है और मैं क्या बोलूंगी, है ना, यस के साथ आगे बढ़े। और आनी तो इंटरनेशनल लेजेंड है, उनको कौन नहीं जानता, है ना। इस तरह ये मतलब मेरी एग्जाम्पल वो है, मेरे लिए रोल मॉडल वो है, कोई भी हो सकता है। जब आप ना करते हो ना तो जिंदगी आपको हर मौके के लिए ना करने लगती है। तो वो बुक मेरे को हेल्प करी, वो जो मैं गुनगुनाती रहती थी हर समय, उससे ज्यादा नहीं सीखा म्यूजिक मैंने, साल भर ही सीखा होगा, पर फिर भी ठीक गा ले। फिर डांस मैंने सीखा 1 साल का। तो जब मैं जॉब टीचर बनी, पहले सिर्फ डांस टीचर से करियर स्टार्ट किया, और मुझे याद है कि मुझे मौका मिला कि आपने 12 बच्चों की, यानी 11, 12 के बच्चों की टीम लेकर आपने इंटरनेशनल, नेशनल प्रोग्राम रेड क्रॉस का, वहां आपको जाना है और प्रेजेंट करना है हमारे जेएनके को। तो जेएनके से सिर्फ हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ था जहां मैं जॉब करती थी, और मैं ना नहीं किया कि मैं कैसे जाऊंगी कैसे नहीं, फिर भी पूरी हिम्मत से ठीक है राइट सर आई गो। तो पूरा अरेंजमेंट करके गई 12 बच्चों की टीम के साथ, उनकी संभाल करना एज ए काउंसलर, और रोज हमें एक नया कंपटीशन आता था कि ये 2-3 घंटे में आपको बच्चों, अपने 2 बच्चों को प्रिपेयर करके लाओ, आज डिबेट लाओ, आज डांस लाओ, आज सिंगिंग लाओ, तो आज आपको पोइट्री सेक्शन करना है ना, ऐसे ऐसे हमारे 12 कॉम्पिटिशन जो थे वो 5 दिन का था हमारा प्रोग्राम, जिसमें पूरे इंडिया से, हर स्टेट से स्कूल जब कंपटीशन पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ पांचवें दिन, तो हमारा जो स्कूल था हमारा सेकंड नंबर पे आया, यानी 14 अवार्ड हमें मिले थे, 14 अवार्ड, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और डिबेट में हमारे बच्चे जीते, सिंगिंग में हमारे बच्चे जीते, पोइट्री में हमारे बच्चे जीते, है ना, रिपोर्ट कंपटीशन में जीते। और मेरा जो सेक्शन था, मुझे रिपोर्ट प्रेजेंट करनी थी, मेरा फर्स्ट प्राइज आया, जबकि मुझे कोई तैयारी नहीं थी। तो वो नेशनल अवार्ड लाना, और फिर मुझे जब मैं वापस आई वो 14 अवार्ड लेके, स्कूल ने बहुत अप्रिशिएट किया और सीधे मेरी प्रमोशन हो गई कल्चरल कोऑर्डिनेटर। और फिर गवर्नर साहब ने स्पेशली इन्वाइट किया हमें, वो 12 बच्चों की टीम के साथ मुझे इन्वाइट किया, प्रिंसिपल भी गया, चेयरपर्सन भी गया, और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। वो आज भी मेरे पास फोटोग्राफ है। वो मेरी जिंदगी का ना एक बहुत खुशनुमा पल था, जब गवर्नर साहब ने स्पेशली हमारे लिए स्पीच रखा था शाम को, और सम्मानित किया बच्चों को और मुझे। तो इस तरह नेशनल अवार्ड के साथ इंटरनेशनल अवार्ड भी मैंने जीते, बिना किसी ट्रेनिंग के। मतलब मैंने कोई ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली, सिर्फ मैंने सीखा जिंदगी से, अपने आप से, किताबों से, और कभी कुछ सर्च करके मिल गया या कोई एक्सपर्ट्स हैं उनसे, सीखने की लगन। तो मुझे जो आज मेरी जिंदगी में जो भी अवार्ड्स हैं या जो मैंने सीखा या मेरे को बहुत अप्रेस, मुझे तो लकी चाम भी कहा जाता था, लकी चाम है जिस कॉम्पिटिशन में होती, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी बहुत पॉजिटिव रहती थी मैं कि ये मुझे बेस्ट देना है, मुझे बेस्ट देना है, उसके लिए मेहनत करती थी। जैसे मेरे बच्चे भी किसी कॉम्पिटिशन में जाते थे तो टीचर्स पूछते थे हु रोट दिस कंटेंट फॉर यू, तो कहते माई मॉम, तो कहते थे आई ग्लैड टू मीट योर मॉम, तो टीचर बोलते थे आपकी मम्मा से अच्छी, वही सोनिया है जो इतना अच्छा कंटेंट। फिर ऐसे आरजे बनने का हुआ, मैं गई वहां पर तो मुझे बहुत सारे मौके मिले वहां शो करने के, कि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, और प्रेजेंटेशन के बाद जो गुण मुझे ईश्वर ने दिया उस परमात्मा का तो मैं जितना धन्यवाद है, पर परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, है ना। कहते ना मैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 100 कदम बढ़ाऊं, ये गलत नहीं है, ईश्वर करता है मदद, वो 100 नहीं 1000 कदमों से आपके साथ है, पर आप एक कदम तो उठाओ, आपको जुनून तो लाओ अपने जीवन में, करना है कुछ भाई, करके ही रहना, क्यों नहीं करना है, कर सकते हैं। छोटी हाइट है तो क्या हो गया ना, छोटी आंखें हैं तो क्या, नाक टेढ़ी है तो क्या हो गया, रंग काला है तो क्या हो गया, नहीं, इन सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा ऑरा, मेरी पर्सनैलिटी। अगर पर्सनैलिटी फेस पे जाते तो महात्मा गांधी का इतना नाम नहीं होता, महात्मा गांधी चेहरे से नहीं बने, चलन से बने, उन्हीं की तरह। तो ये मेरा छोटा था, थैंक यू इस क्वेश्चन को मेरे लिए पुट करने का और इस खूबसूरत बातचीत का।
1: जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और जो आपने विस्तार से अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की आपने और किस तरह से वो चीजें आपके बीच में आई, तो जीवन का यही खूबसूरती है कि जीवन आपको मिला है उसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी जैसे कि हमने अभी बहुत सारी कलाएं हमारे पास ईश्वर ने दे कर रखी हैं, उसको सिर्फ आप एक बार जो है कागज पेन से उतारने की कोशिश कीजिए, और उसे कागज पेन ये सेकेंडरी है, लेकिन आप उसको पहले अपने मन में लाइए, अपने भावनाओं में लाइए, अपने इमोशंस में एक अच्छे व्यक्ति का इमेज जो है आपको क्रिएट करना है। जब तक आप अपने इमोशंस और अपनी भावनाओं में खुद अच्छे नहीं बनेंगे, तो बाहर कितना भी आप अच्छा बोल के या फिर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उतना असर नहीं करेगा। इसलिए गांधी जी की वो कहानी शायद आपको याद हो कि बच्चा गुड़ खाता है, माँ उसको लेके जाती है कि ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसको मना करना है, तो गांधी जी बोलते हैं कि आप आ जाओ 5 दिन के बाद, या कुछ ऐसी स्टोरी है, बोलते 21 दिन के बाद आप आ जाओ, तो फिर 21 दिन के बाद सिर्फ गांधी जी ये बोलते हैं कि भाई आप गुड़ मत खाओ, गुड़ खाना ठीक नहीं है, तो माँ आश्चर्य हो जाती, बोले ये बात तो एक दिन पहले ही बता देते उसी दिन तो इतना दिन क्यों लगा है। तो उनका कहना ये था कि मैं भी खाता था गुड़, तो मैंने बंद किया, तो मैं बच्चे को बोल पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जो हमारी पर्सनालिटी के साथ हमें एडिशनल करना है। कई बार हम लोग जो है वो चीजें मिस कर देते हैं, और इसके वजह से लोग आज देखिए आपके पास व्हाट्सएप है, गूगल है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास चारों तरफ है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आदमी इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आदमी के
0: वो ये ना गार्बेज इन एंड गार्बेज।

0: और तो उसको
1: वही
0: जो
1: तो
0: है
1: कचरा
0: समझने
1: भरने
0: की बहुत जरूरी है। तो वो चीजें जो है आपको यहाँ इम्पोर्टेंट रोल करता है कि आपको कैसे अपने पर्सनालिटी को इम्प्लीमेंट करना है, डेवलप करना है। तो यहाँ अप्लाइड साइंस काम करता है कि आपने कितना ज्ञान को अपनी लाइफ में यूज किया है या धारण किया है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो आइए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर सोनिया जी से बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

गुजर रहा है तेजी से, अब वक्त नहीं है खोने को। जागो और जगाओ सभी को, अब वक्त नहीं है सोने को, अब वक्त नहीं है।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं और आशा करूंगा कि आपको जो बातें आपने सुनी और किस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में भी हमने देखा अच्छी एग्जांपल के साथ। सोनिया जी खुद अपना उदाहरण देकर हमें बताई है। तो जाते जाते मैं सोनिया जी चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपने पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे डेवलप करना है, उनके लिए क्या टिप्स एंड टेक्निक बताएंगे आप?
1: जी बिल्कुल, पर्सनालिटी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए करियर, क्योंकि करियर से पहले पर्सनालिटी आता है। यानी कि आपका पर्सनालिटी सिर्फ ये नहीं, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं ना, पर्सनालिटी का मतलब है ग्रो करना अपने वर्चुअल हैबिट्स को, अपने आंतरिक गुणों को और अपने स्किल्स को बढ़ाना, ये पर्सनालिटी है। तो जैसे एक इंसान तभी हटके लगेगा ना जब कुछ हटके सीखेगा, तो है ना। तो 10 लोग बैठे हैं एक पार्टी में बैठे हैं, यू नो, जैसे किसी प्रोग्राम चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उसमें एक ने अपने गले को तैयार किया है, अपने गले पे जरूरी नहीं है उसकी आवाज बड़ी मधुर है। कई ऐसे हैं जिनकी आवाज अच्छी नहीं है पर सुरताल और लय का बहुत उनको ज्ञान रहता है ना, तो जहां भी गाते हैं समा बांध देते हैं। तो 100 लोगों के बीच में जो होता है ना, तो कैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, होता है ना, वो डिफरेंट लगता है। ऐसे कोई एक प्रोग्राम है, किसी ने नृत्य कला सीखा है ना, उसने तो बिना सीखे तो नहीं उतरा होगा वो, है ना। तो तैयारी के साथ आया है, तो जब उसे देखते हैं तो तालियों से कितना उसका वेलकम होता है, तालियों से कितना अप्रिसिएशन मिलता है जो उसे मोटिवेट करता है, वो और आगे बढ़ता है, उसके रास्ते खुलते जाते हैं। तो इस तरह किसी कोई पेंटर है ना, पेंटिंग कॉम्पिटिशन में एक मास्टरपीस बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, नहीं भी जीत हो तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आप पहली बार में ही फर्स्ट आ जाए, पर निरंतर प्रयास से जीत दूर नहीं होती आपसे। दूसरा है कि पर्सनालिटी आपके, ये तो हो गया बच्चों की बात, पर्सनालिटी बड़े लोगों के लिए क्या है, आपका व्यवहार। जैसे देखो आप उस फेज से निकल गए, आपका करियर का टाइम निकल गया, पर आप अब बड़े हो गए हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे ग्रो,
0: बिल्कुल
1: तो वो उनकी पर्सनालिटी तो उनका आंतरिक गुण है, व्यवहार है, उनका बिहेवियर है। तो जैसे कहावत आपने सुनी होगी ना, आपको याद आए, तो जहां गुड़ होता है वहां पे मक्खियां आती है ना, वैसा ये सुना है ना आपने, तो मतलब उसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब मक्खियां हो गई और आप गुड़ हो गए, तो सिर्फ कहावत
0: सही बात
1: है। तो बोलेगा तो क्या मतलब आपका, बड़ी उम्मीद हम मक्खियां हैं, मतलब शहद की मक्खियां तो यूजफुल होती है ना, इसमें भी पॉजिटिव विचार लाया जा सकता है, शहद में काम आती है, यानी मीठा होता है वहां अट्रैक्ट होता है, मीठे में एडिक्शन भी होता है, आप कुछ मीठी चीज खा तो माइंड के ना हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो हमारा है बार बार मीठा खाने का। तो इसका मतलब जब आपका व्यवहार मीठा होगा तो आपके आसपास लोगों की भीड़ लगने में टाइम लगेगा क्या?
0: बिल्कुल
1: आजकल

0: जो सिनेरियो है ना, ये है, कितना पेन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, ये नॉर्मल है, पर मैं खुश रहता हूँ, खुशहाल हूँ, मेरे पास तो खुशी की कमी नहीं, ये नॉर्मल नहीं लगता किसी को, नहीं लगता ना। तो इसलिए करिज्मेटिक पर्सनालिटी के लिए सबसे पहले आपका बिहेवियर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के बीच में तभी अच्छे लगोगे ना जब आप किसी का भी गम पी जाओ, है ना, कोई परेशान भी आपके सामने आए वो हंसता हुआ जाए, इसको कहते हैं पर्सनालिटी। ये नहीं कि आपने या आपने 10,000 की घड़ी पहन ली, आपने 1,00,000 रुपए का मोबाइल पकड़ा, तो उसमें वो किसी के लिए क्या यूजफुल है किसी के लिए? कोई आपको अप्रिशिएट करेगा? आपने 2,00,000 का मोबाइल लिया, ठीक है, ओके, पैसा है, ले लिया, है ना, पर्सनैलिटी नहीं है। पर आप कितने रोते हुए लोगों को हंसा सकते हो, गाइड कर सकते हो, अगर पैसा है तो हेल्प भी कर, है ना, अगर आपकी आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपनी बॉडी से हेल्प कर सकते हो, पैसा अच्छा है तो कभी किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सकते हो, वो भी पर्सनैलिटी है आपकी। आज इतने बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जैसे अंबानी जी हैं, उनकी वाइफ कितनी चैरिटी करती हैं, नीता अंबानी जी, हर एक सोशल जो सर्विस में है उनका नाम रहता है। जैसे वो हैं मूर्ति की वाइफ हैं जो, वो भी काफी चैरिटी करते हैं ना, गांव गांव जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मूर्ति जी जो इंफोसिस के मालिक हैं उस कंपनी के, आज उनकी वाइफ का कितना नाम है ना, सोशल मीडिया पे छाई रहती है। वो पर्सनैलिटी उनकी बॉडी से नहीं बनी, वो पर्सनैलिटी उनकी चैरिटी, उनके गुड बिहेवियर से बनी। वो जाती हैं दूसरों को चैरिटी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती हैं या फिजिकली स्ट्रेंथन करने की कोशिश करती
1: हैं,
0: किसी को गिरे हुए को किसी की मदद करना, प्यार यानी आपके व्यवहारता लाइए, सबसे बड़ा गुण है मधुरता ना, तो परमात्मा कहते हैं ना कि मिश्री के जैसे बन जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इतना मिश्री बन जाओ ना कि कोई आपको मुख मीठा हो जाए उसका। तो मीठा व्यवहार सबको अच्छा लगता है, कड़वे बोल दुनिया को आपसे दूर कर देते हैं, पर समझदारी से भी चलिए, क्योंकि आजकल जमाना चापलूसों का भी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, तो हर चीज को युक्ति युक्त होकर चलना है, तो फूल नहीं जाना है, अरे मेरे चार लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, तुम बहुत मीठा बोलते हो,
1: एक बार
0: फूल जाते हैं कुछ लोग ना, तो ये उतना फूल नहीं जाना है, पर हाँ जहाँ आपकी जरूरत है वहां पर आपको हाथ अपने जरूर देने हैं। कहते हैं ना, हैंड्स दैट हेल्प्स आर होलियर देन द लिप्स दैट प्रेस, यानी वो जुबान जो आपके लिए प्रार्थना, उससे बेहतर है आपके मदद के लिए आगे बढ़े
1: जी,
0: तो वो बड़े लोग अगर आप किसी ना किसी की किसी तरह से मदद करें,
1: तो ये अच्छी पर्सनैलिटी है। सोनिया जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, और बहुत ही प्यारा सा संदेश भी आपने दिया। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, आशा करूंगा आपको आज का एपिसोड सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और करियर से ज्यादा हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आप काम करेंगे, और मैं चाहूंगा कि इसे डीले मत कीजिए, करियर से पहले इसके ऊपर काम कीजिए और उसके बाद आप जो है उन पर काम कीजिए, और करियर तो आपका बनेगा ही, जब आपने अपना पर्सनालिटी अच्छा बनाया तो करियर भी अच्छा बन ही सकता है। एक बार हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सोनिया जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और आप सभी विद्यार्थी मित्रों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
0: ओम शांति, थैंक यू सो मच।

झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख।

दुनिया तक मेरा रंग हुआ भक्त छोरी हो के ये हजामत कराए ये गंगा राम की।

नाचे छम छम मेरा निकले है दम, इसे भांगड़ा कौन नचाए, ये गंगा राम की।

0: मेरे चेहरे में वो जादू है।
1: रेशमा, शादी करोगी मुझसे?

प्रेम की नगरी मैं कुछ हमरा बिहक हो बेकरी प्रेम की नगरी मैं कुछ हमरा बिहक हो बेकरी नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कथक हो बेकरी प्रेम का चिट्ठी है।

0: होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की। बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: अरे शराबी क्या हो राजा,
1: गली में आ जाओ।
2: होली होली
3: भांग की गोली ओ नखरे वाली,
0: दूंगी मैं गाली।

0: इशारा
1: सुनो किसकी तरफ है इशारा
0: या तो जोगी है या पागल या तो बादल है या आंचल